मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

0: जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषध निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

भारत केवल एक देश नहीं बल्कि विविधताओं में एकता का अद्भुत उदाहरण है। जिस मिट्टी में राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर ने जन्म लिया, उस भारत पर हर भारतीय को गर्व है। भारत की शक्ति उसकी संस्कृति, संस्कार और एकता में निहित है। भारत की पहचान उसकी प्राचीन सभ्यता और आधुनिक सोच का सुंदर संगम है। भारत का भविष्य उसके जागरूक, शिक्षित और संस्कारी नागरिकों के हाथों में है।

श्री कृष्ण की मुरली का सबसे बड़ा संदेश है अहंकार का त्याग। मुरली भीतर से पूर्णतः खोखली होती है, उसमें अपना कुछ भी नहीं होता। इसलिए जब कृष्ण उसे अपने अधरों से लगाते हैं, तभी उससे मधुर संगीत निकलता है। यही शिक्षा मनुष्य के लिए भी है। जब तक हमारे भीतर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ भरे रहेंगे, तब तक जीवन में मधुरता नहीं आएगी। जिस दिन मन विनम्र हो जाएगा, उस दिन ईश्वर की कृपा का संगीत हमारे जीवन में भी गूंज उठेगा।

आज का मनुष्य सुख सुविधाओं की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास स्वयं के लिए भी समय नहीं है। जीवन में धन है, प्रतिष्ठा है, परंतु शांति नहीं है। ऐसे समय में भगवान शिव का जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक आनंद सरलता में है, संयम में है और संतोष में है।

भगवान के चरण कमल का अर्थ है भगवान के दिव्य चरण जो कमल के समान पवित्र, कोमल, निर्मल और सुंदर माने गए हैं। भक्त उनके चरणों में शरण लेकर अहंकार, भय और दुख से मुक्ति प्राप्त करने की कामना करता है। प्रभु के चरण कमलों में ही जीवन का सच्चा विश्राम है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शांति है, जहाँ समर्पण है वहाँ परम आनंद है। जो मन भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है उसके जीवन का प्रत्येक मार्ग स्वयं प्रभु प्रशस्त कर देते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए करें चिंतन, मानवता का सहज मार्ग। इस विषय पर आलेख किशोर कुमार श्रीवास का है, वाचक स्वर श्वेता झवर के।
1: मानवतावाद जैसे बड़े शब्दों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा सिद्धांत है। लगता है कि इसके लिए किसी इंसान को बहुत महान होना पड़ेगा या कोई बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। हम अक्सर मानवता को बड़े बड़े संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं से जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ठहर कर देखें, समझ आता है कि मानवता कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तो हमारे भीतर छिपी हुई एक बहुत ही साधारण और कोमल भावना है। भारत के प्राचीन चिंतन में इस बात को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। आचार्य चाणक्य ने अपने सूत्रों में एक बहुत व्यवहारिक बात कही थी। उनका मानना था कि किसी भी समाज या देश की असली ताकत इस बात में नहीं है कि उसके पास कितनी सेना है, बल्कि इस बात में है कि उसके नागरिकों के भीतर एक दूसरे के प्रति कितनी सहानुभूति है। चाणक्य जी कहते थे कि जो व्यक्ति के

0: केवल अपने बारे में सोचता है उसका जीवन बहुत सीमित रह जाता है। वास्तविक मनुष्य वही है जो दूसरों के कष्ट को देखकर अपने भीतर एक बेचैनी महसूस करे और उसे दूर करने का प्रयास करे। प्रकृति के नियम भी हमें यही सिखाते हैं। एक नदी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती और एक वृक्ष कभी अपने फल खुद नहीं खाता। वे बिना किसी भेदभाव के पूरी सृष्टि को जीवन देते हैं। प्रकृति का यह स्वभाव ही असल में मानवता का सबसे पहला पाठ है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ एक अजीब सी अघोषित दौड़ मची है, जहां तकनीक ने हमें स्क्रीन से तो जोड़ दिया है पर दिलों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं, वहां इस मानवीय भावना को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती का काम बन गया है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अकेले पूरे समाज को कैसे बदल सकते हैं। चाणक्य जी ने इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि घड़े में एक एक बूंद पानी भरने से पूरा घड़ा भर जाता है। ठीक इसी तरह हमारी छोटी छोटी रोज की आदतें ही मिलकर एक संवेदनशील समाज का निर्माण करती हैं। जब हम दफ्तर की तमाम व्यस्तताओं के बीच भी किसी परेशान साथी की बात को पूरे धैर्य से सुनते हैं, जब हम सड़क पर किसी अनजान राहगीर की बिना किसी स्वार्थ के मदद कर देते हैं, या जब हम अपने घर और कार्यक्षेत्र में काम करने वाले सहयोगियों के प्रति थोड़ा आदर का भाव रखते हैं, तो हम उस क्षण किसी बड़े मंच पर बिना जाए ही मानवतावादी आचरण जी रहे होते हैं। इसके लिए हमें किसी विज्ञापन की या किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। यह हमारे अंतःकरण का वह मूक निर्णय है जो हमें अंदर से एक असीम शांति देता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य, धन दौलत और भौतिक साधन समय के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। सदियों बाद दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने जाते जाते भी इंसानी चेतना को थोड़ा और सुंदर बनाया। उत्कृष्टता या मानवतावादी होना कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हमारी यात्रा रुक जाती है। ये तो एक बहती हुई साफ नदी की तरह है जिसमें हमें हर रोज अपने विचारों को साफ रखना होता है। जब तक हमारे भीतर यह संवेदनशीलता जीवित है कि सामने वाले का दुख भी मेरा ही दुख है, तब तक हमारे समाज की नींव सुरक्षित है। आज शाम जब आप अपने घर लौट रहे हों या दिन भर की भाग दौड़ के बाद विश्राम कर रहे हों, तो बस एक पल के लिए इस बात पर विचार कीजिएगा कि आज पूरे दिन में क्या हमने किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। हमारा यही बारीक आत्म मूल्यांकन हमें एक बेहतर नागरिक और एक सच्चा मनुष्य बनाता है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख किशोर कुमार श्रीवास का था, स्वर श्वेता झवर के। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं व्यावसायिक खेती के बारे में जानकारी दे रही हैं संध्या कोठारी।
2: किसान भाइयों, राम राम। आज का इना युग में हमारा किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं आवे ऐसा हमारा प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा छे। और किसान का जो हमारा खेती बाड़ी का काम छे, किसानी का काम छे, उना काम का लाभ को धंधो बनाणो या बहुत महत्वपूर्ण की बात है। तो हमारा सभी किसान भाई बहन का कोई समस्या नहीं आवे एक कारण कई सारी योजना ने छे ना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाले। और इन्हीं योजना की जानकारी अगर हम रखा अनों को लाभ उठावा तो निश्चित रूप से हम ऐसे कहूँगा कि हमारा किसान भाई बहन कभी भी किसी परेशानी में नहीं आवेगा। पर अब बात यह छे कि हमको जानकारी भी होनी चाहिए, हम उतनी पात्रता में आई राज, हम वो कारण काई काई करी सकान, हमारे पास कागज पत्र काई छे, सब न की जानकारी हमको होनी चाहिए तो निश्चित रूप से हम लाभ उठावांगा। किसान भाइयों, खेती बाड़ी का काम का हम अगर व्यवसायिक जैसे मन को नहीं कि धंधा का रूप में अपन अगर ओका समझांगा तो भी हम लाभ उठा ही सकांगा। आप कहे छे पारंपरिक खेती हम हमेशा करी रहा, हम जो सोचा कि चलो वावणी कर दी, जो अनाज निकलोगो वो ले आवांगा और अपनो काम चले लेवांगा, तो एकासी काम नहीं चलोगो। अब हमका

0: व्यवसायिक खेती का तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। एक कारण अब अपन किसान भाई सोच रहे हो कि अपन का काय करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई विशेष कई काम नहीं है, पर अपन यो ध्यान रखा कि हम कहाँ का बीज न की वावणी करी रहे, बीज हम प्रमाणित लावा कि भाई हमका हमारा जो बीज है 100 बीज बोवांगा तो कम से कम 95 जो पौधा है वो उगणू चाहिए, प्रमाणित बीज होए और वो को पक्को बीज होए, साथ ही में हम उनके बोई ने पहले देखी भी लेवा, उसका बाद हम उनका खेत में भी डालना। जब खेत में उनका डालना तो फिर यूँ हम तय करा कि हम काई काई में हमारी लागत हमका लगेगी, साथ में लागत में जैसे यो देखा कि हमको खाद कितो लगी रोज, खाद अगर हम प्राकृतिक बने राज और तो काम काई काई लगी रोज कितना पैसा लगी रहा या नहीं लगी रहा, हमको कहाँ से सारी चीज़ न के इकट्ठो करनो, अगर हम रासायनिक खाद डाली रहा तो उसकी लागत कितनी आवेगी, हमने कितना एकड़ में काई चीज़ बोई एक साथ वो कितना समय में आवेगी, कोई 2.5 महीना में आवज, कोई 90 दिन जैसा 3 महीना में आवज जो भी हमारी फसल आवेगी, ओका बाद हम हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था काई छे, कभी पानी की दिक्कत होए या पानी हमारे पास किस प्रकार से उपलब्ध छे, उन हिसाब से भी हम हमारी खेती बाड़ी का काम कर ही सकें। ध्यान रखा कि जब हम काम करा और जो बोनी करा वो को भी ध्यान रखा कि बीज कितो आयो, कितनी फसल लगी, कितना दड़किया हमको लग गया और कितो हमको पैसों इतनी लागत में हमको लगो। अब जब लागत हम निकाली सकांगा तब हम उसको मुनाफो भी निकाली पावांगा कि भाई हमने अगर अब 5 कुंटल गेहूँ आया या 20 कुंटल गेहूँ आया, उन 20 कुंटल को आज जब हम बेचने जाए रहे बाजार में हमारा निकलिया तो उसको पैसों हमको कितो मिलो और हमको लागत उसकी कहे लगी। लागत का साथ साथ ध्यान भी यू रखना पड़ेगा हमका कि हमने एक का बाद कितनी फसल हम साल भर का अंदर ले सकें, और हमको तो साल भर को रेशो निकालना पड़ेगा कि हमने इना साल हमारी कितनी लागत लगी और कितनी हमका कमाई हुई। मंडी को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मंडी कब कब कहाँ कहाँ कब उतार चढ़ाव हो कितो पैसों हमको लगे, अगर इन सब चीज़ न को ध्यान अगर हम रखांगा और इस प्रकार से खेती करांगा तो वाज हमारी जो है व्यवसायिक खेती कवाएगी, और व्यवसायिक खेती करांगा तो हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आज हमारा सब किसान भाई बंड यूज करनो छे।
1: खेती की बातें, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। व्यावसायिक खेती पर ये जानकारी आपने प्राप्त की संध्या कोठारी से। हम आकाशवाणी के इंदौर के केंद्र से बोल रहे हैं।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको कार्यक्रम विवरण में आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे आपका पत्र कार्यक्रम। आपका पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम प्रमुख राजेश और मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, प्रातः 8:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे खय्याम साहब के संगीतबद्ध किए हुए गीत और उनके संदर्भ में जानकारी।

0: प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के गाए लोकगीत। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 9:15 बजे, जिसमें आप सुनेंगे नियम कानूनगो की गाई रचनाएं। प्रातः 9:30 बजे सुना ना भूलें शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आशा खाडिलकर का गायन राग अहीर भैरव। प्रातः 10 बजे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आप सुनेंगे प्रातः 10:05 पर। और अब आपको जानकारी देते हैं आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करेंगी सुने। 12 बजे फिल्म संगीत। 12:30 बजे आप सुनेंगे संग्रहालय से। दिन में 1 बजे आपको सुनवाएंगे महिला कार्यक्रम। लोक संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 1:30 पर, और दिन में 1:45 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। फिल्मी गानों का आनंद लीजिएगा दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत में, और दिन में 2:30 बजे से। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आप सुन लीजिए। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज के इस कार्यक्रम में आरंभिक चर्चा में आप सुनेंगे विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस के संदर्भ में जानकारी। आज के क्रम में एक ही फिल्म से, इस क्रम में आज आप सुनेंगे फिल्म कच्चे धागे के बारे में जानकारी और उसके गीत। पांच 5:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुनेंगे संध्या 6 बजे। 6:30 पर सुगम संगीत में कलाकार हैं नियम कानून गो। लोक संगीत में विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे 6:45 पर। संध्या 7:20 पर सुनवाएंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण है आज की बात में आप सुनेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। भेंट वार्ता सुनवाएंगे हरित भारत मिशन राजेंद्र कुमार जैन से। इसके साथ ही घरेलू व्यंजन, घरेलू नुस्खे और लोकगीत मंडी के भाव भी सुन सकेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 बजे। चित्रगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 9:15 बजे, और रात्रि 9:30 बजे चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा।

0: अथ वार्ताः। झारखण्ड प्रशासनेन ह्यः रात्रौ छात्राणां विरोध प्रदर्शनस्य मध्ये अनियमितताभिः कारणैः निरस्तानां चतुश्चत्वारिंशत् नियुक्ति परीक्षाणां सूची प्रकाशिता। अष्ट अधिसूचनाः प्रकाश्य राज्य प्रशासनेन उक्तं यत् निरस्तासु परीक्षासु 14,2,000 वर्षात् झारखण्ड लोकसेवायोगेन तथा TPDL इति TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड इत्यनया बाह्य संस्थया आयोजिताः परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। निरस्तासु परीक्षासु औषध निरीक्षिकाणां, सहायक प्राध्यापकानां, उपसमाहर्तॄणां, दंत चिकित्सकानां, सहायकाभियंतॄणां, व्यवहार न्यायाधीशानां, अतिरिक्त लोकाभियोक्तॄणां अथ वनक्षेत्राधिकारिणां च नियुक्त्यर्थं आयोजिताः परीक्षाः अन्याश्च परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। अन्यासु प्रमुखासु निरस्तासु परीक्षासु प्रशासकीय पॉलिटेक्निक संस्थासु व्याख्यातॄणां, वरिष्ठ वैज्ञानिकाधिकारिणां, सहायक वन संरक्षकाणां अथ अन्येषां प्रशासनिक प्राविधिक पदानां च नियुक्त्यर्थं परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। अधिसूचनासु उक्तं यत् JPSC JSSC इत्येतयोः अनियमितता सम्बद्धानां प्रकरणानां शीघ्र विचारणाय उच्च न्यायालयं प्रति द्रुत न्यायालयस्य निर्माणाय अनुरोधः करिष्यते। तदतिरिक्तं JPSC JSSC इत्येतयोः आन्तरिक सतर्कता प्रकोष्ठस्य निर्माणमपि करिष्यते। ब्रिक्स देशैः पर्यावरण संरक्षण सतत विकासस्य क्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। नवदिल्ल्यां ह्यः सम्पन्नस्य 12 ब्रिक्स पर्यावरण मन्त्रिणाम् उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त मन्त्रिस्तरीये वक्तव्ये उक्तं यत् ब्रिक्स देशैः सतत विकासस्य 30,000 वर्षस्य कार्यविधिः जलवायु परिवर्तन सम्बन्धिनः संयुक्त राष्ट्रसंघस्य रूपरेखा प्रबन्धस्य अथ पेरिस सन्धेः च पूर्ण प्रभाविरूपेण कार्यान्वयनं प्रगतिशीलं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृता। देशैः बलं प्रदत्तं यत् विकसित देशेभ्यः वित्तीय सहायतायाः उपलब्धतया सह अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं सुदृढीकर्तुं विकासशील देशानां पर्यावरण सम्बद्धानां जलवायु सम्बन्धानां च आह्वानानां प्रभाविरूपेण समाधानम् आवश्यकमस्ति। भारतम् अस्मिन् वर्षे सहनशीलतायै, नवोन्मेषायै, सहयोगायै, सतत विकासाय च निर्माणम् इति विषय वस्तुना ब्रिक्स संघस्य अध्यक्षतां करोति। ब्रिक्स देशानां मन्त्रिभिः सतत विकासस्य साधनरूपां चक्रीयार्थ व्यवस्थां प्रवर्धयितुं भारतस्य नेतृत्वस्य अपि प्रशंसा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायं तमिलनाडुराज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायै चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। असौ श्वः चेन्नई नगरस्य समीपे कोवलम् इत्यत्र आयोज्यमाने दक्षिण भारतस्य मुख्यमन्त्रिणां सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलने तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी चेत्येतेषां प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रिय परीक्षणाभिकरणेन स्वस्य परीक्षादलस्य व्यापकं पुनर्निर्माणं कृत्वा 600 पुरातनान् विशेषज्ञान् निष्कास्य तेषां स्थाने नूतनाः विशारदाः संगृहीताः। शिक्षामन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जालीय पटले संसूचितं यत् परीक्षापत्राणां सूक्ष्म परीक्षणं सुदृढं विधातुं NTA संस्थया चतुःस्तरीय प्रश्नपत्र परीक्षण प्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्तमन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघैः प्रवर्तमान वित्तवर्षस्य ऋण प्रदान क्षेत्रे तीव्रवृद्धिः अंकिता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु, पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखण्ड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की भर्ती के लिए ली गई परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक व्याख्यात वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। झारखंड सरकार की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अल नीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा परिषदों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किए जाने के बाद जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया है जब होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका और ईरान के द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयान जारी किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म
5: दिल मेरा। बंद लिफाफा दिल मेरा, इसे खोल के पढ़ लो जी। बंद लिफाफा दिल।
6: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर।
7: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
1: युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म
2: दिल मेरा।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर सुन रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: नसंसनी
1: ना उत्तेजना
0: नशोर दिन रात
2: चोरी चोरी किया
0: ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने की योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री आज मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश में 2000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन। और नीदरलैंड में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पाइपलाइन से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये स्कीम अगले महीने की 1 तारीख से 6-6 महीने के लिए 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इस स्कीम का मकसद ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पाइप वाली गैस पहुंचाना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग एक परिवार की तरह हैं और सभी मिलकर देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ICAR की 97वीं वार्षिक बैठक में वैज्ञानिकों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के कृषि तथा पशुपालन मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा,
1: अपनी उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर हमें गर्व है। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं, किसानों को प्रणाम करता हूं। वैज्ञानिकों की मेधा बुद्धि, किसानों का पसीना और सरकार की नीतियों ने निश्चित तौर पर एक चमत्कार किया है। हम लोगों ने प्रयोग किया कि हम कैसे आमों को 35 दिन तक बचा के 35 दिन करने में सफलता प्राप्त हुई और उसके कारण हम सिंगापुर, दुबई, समुद्री मार्गों से भी अपना उत्पाद भेज सके।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के संदर्भ में संचालित गतिविधियों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि के प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यभार ग्रहण करने के बाद राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 2000 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित हुई हैं। गत 2 वर्ष में प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष में प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि के साथ पशुपालन और उद्यानिकी को भी बढ़ावा दे रही है। गुना जिले की धनिया और गुलाब उद्यान के गुलाब उत्पादन के क्षेत्र में विशेष पहचान है। किसानों को उद्यानिकी से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मुख्यमंत्री निवास से गुना में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुना जिले के कुंभराज धनिया को शीघ्र ही जीआई टैग प्राप्त होगा। प्रदेश में उद्यानिकी का रकबा 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में भी प्रदेश के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 12% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति का लाभ मिल रहा है, जिससे कृषि कार्य को और किसान और आसान बनाने में मदद मिली है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,25,13,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से कुल 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली

के अनुरूप सजग और जागरूक बनाए। राज्यपाल कल लोकभवन में सांदीपनी सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए लचीलापन और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, शिक्षा और जीवन मूल्यों से भावी पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा श्री कृष्ण पाथेय न्यास द्वारा भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति शुरू की गई है। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी। ये भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जित 14 विधाओं, 64 कलाओं, महर्षि सांदीपनी और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिहाज से मुकाबला अहम है। भारत ने अब तक वेल्स पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के दो मैचों से सिर्फ एक अंतर है। उधर इंग्लैंड पूल ए में अपने दोनों मैच जीतकर पहले ही अगले दौर में जगह बना चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के निसरपुर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की अध्यक्षता बबीता चौहान को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगर मालवा कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीणा ने कल हुई जिला स्तरीय कॉलोनी सेल की बैठक में जिले के विकसित वैध और अवैध कॉलोनियों की समीक्षा करते हुए संबंधितों को निर्देश दिए। नर्मदापुरम में जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में कल हुई जनसुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। कलेक्टर ने जनसुनवाई में 162 आवेदकों की समस्याएं सुनी। वहीं सतना में जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने 107 आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र कार्यक्रम के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान
1: और मैं राजेश पाठक,
0: आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: क्या मुकाम जी, घर से आते समय हल्की फुल्की बारिश तो हो रही थी
0: जी,
1: और आने में भी बहुत मजा आ रहा था।
0: बिल्कुल, हल्की फुल्की बारिश तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ अच्छी बारिश होनी चाहिए उसे ऐसा लगता है कि अभी भी दरकार है, अभी भी आवश्यकता है बारिश।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए अगर तेजी से बारिश होगी
0: हाँ
1: तो पानी जो है पूरी तरह से तुरंत बाहर चला जाएगा। हल्की फुल्की जो बारिश होती है वो जमीन में धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते वाटर लेवल बढ़ता है।
0: बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन श्रावण मास जो है अब धीरे धीरे धीरे करके समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है।
1: और आपको पता होगा
0: कुछ ही दिन बचे
1: जी, जब जब महाकाल की सवारी निकलती है
0: हाँ।
1: जब जब हल्की फुल्की
0: बारिश
1: तो होती है।
0: बिल्कुल,
1: अब हल्की सी बारिश ये

0: सुनकर ऐसा हमें लगता है पंकज उदास जी की जो प्रसिद्ध गजल है, हल्की हल्की सी बारिश, बारिश के सुहाने मौसम और रोमानी एहसास को बयां करती एक इनकी रचना है
1: जी।
0: हल्की हल्की सी बारिश हो, नर्म हवा के झोंके हों, निखरे निखरे से ताजा हरियाली के चेहरे हों, काश कभी ऐसा हो जाए, काश कभी ऐसा हो जाए, हल्की हल्की सी बारिश।
1: क्या बात है।
0: और देखिए इस मौसम में हम अपने श्रोताओं के धीरे धीरे हल्के हल्के से मेल और पत्र का इंतजार रहेगा। पत्र तो आ चुका है, मेल का इंतजार रहेगा।
1: ढेर सारे मेल भी प्राप्त हो रहे हैं। और
0: मेल आईडी आप बता
1: दें। बिल्कुल, सबसे पहले हमारे सुनने वालों को मेल आईडी बता दें। तो आप सुनिए, आपका पत्र यानी APKAPATRAAIR@gmail.com
0: और सभी स्मॉल लेटर्स में।
1: बिल्कुल, आपका पत्र AIR के माध्यम से आप हमें आपका पत्र मेल कर सकते हैं।
0: और जो मेल नहीं किया, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9993290063 एक बार पुनः सुन लें, 9993290063 आप इस पर आप जो है ये लाइव पत्र उत्तर के दौरान आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने विचार साझा कर सकते हैं और पिछले हफ्ता जो आपने कार्यक्रम सुना उसकी समीक्षा भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो
0: मेल के माध्यम से
1: जी समीक्षाएं मिलना प्राप्त हो चुकी है।
0: के पहले
1: हाँ जी,
0: मेल
1: जी,
0: पढ़ने के पहले आज 19 अगस्त है
1: जी,
0: और 19 अगस्त 2026 को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है
1: जी,
0: और ह्यूमैनिटेरियन डे और विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, और साथ ही साथ हिंदू पंचांग के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जयंती भी मनाई जाती है
1: जी जी जी जी।
0: अब देखिए, संकट और आपदाओं में मदद करने वाले लोगों को सम्मान देने के लिए ही विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, और फोटोग्राफी की कला और इतिहास को याद करने के लिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हम इसमें आज एक विशेष कार्यक्रम युवानी कार्यक्रम में प्रसारित करेंगे तनुजा जोशी जी की। देखिए फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी आनंद जोशी जी, तनुजा जोशी जी काफी अच्छा काम किए हैं, और किस प्रकार वर्तमान समय में जो है फोटोग्राफी के माध्यम से भी हमारे जो युवा हैं वो भी अपने भविष्य को संवार सकते हैं
1: जी।
0: और खास करके आज महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रकटोत्सव के रूप में आज है और तुलसीदास जयंती मनाई जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण,
1: बहुत महत्वपूर्ण, और श्री रामचरित मानस जो है उनकी एक सबसे बड़ी रचना है, और हमारे यहाँ प्रतिदिन 6:40 से 6:50 तक श्री रामचरित मानस गान का प्रसंग बजता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और हमारे ढेर सारे श्रोता इसका आनंद लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अब हम अपने श्रोताओं की मेल की ओर
1: ध्यान देना शुरू कर दें और देखें स्क्रीन की तरफ। तो ये पहला मेल प्राप्त हुआ है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा के श्रोताओं का, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बाई और बाबू दिव्यांश नागनपुरे लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 15 अगस्त 2026 का कार्यक्रम विकसित होता भारत बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में चर्चा के अंतर्गत विकसित भारत में AI की भूमिका विषय पर दी गई जानकारी बहुत ही लाभदायक लगी, और इसके लिए आराधना जैन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कही है।
0: आपने हमारे कार्यक्रमों का आनंद लिया और बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वर्तमान समय में AI का जो उपयोग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग होता है, वास्तव में हमारे जो काम करने का जो स्पीड है उसको फास्ट कर देता है
1: जी,
0: और धीरे धीरे समय के अनुसार हम अपने आप को ढाल लें। मशीनी युग आएगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो काम करने वाले हैं बेकार हो जाएंगे,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि उसमें एक नयापन आएगा, और इस नयापन के कारण हम नए नए टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी और फास्ट आगे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल,
0: हम लोग भी विकसित होंगे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और इसके लिए समस्त क्षेत्र, चाहे सांस्कृतिक का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ें। आपने हमारे कार्यक्रमों की सराहना की, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। एक और पत्र स्क्रीन पर है और बहुत खूबसूरत सा है, और एक तो जो शुरू की पंक्तियां हैं वो बहुत अच्छी है। ये लिख रहे हैं, मुझे तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, जब तक तुम साथ हो तब तक जिंदगी चाहिए।
0: क्या
1: और लिखने वाले हैं हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिदिवास खेड़े, दीपक सचिन, केपीएस चौहान, मिश्रा गोल्डन, बाबूलाल चौधरी, कृष्णा विराज अर्नव, काव्यांशी और प्रभा कटारिया सनावद से लिखते हैं। और अच्छा लिखा इन्होंने कि 12 अगस्त का आपका पत्र कार्यक्रम सुना, राजेश जी और मुकाम सिंह जी की प्रस्तुति बहुत लाजवाब रही, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, मतलब हम दोनों को। और ये लिखते हैं कि इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत 80वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा रैली के विषय में जानकारी सुनने को मिली, सूर्यकांत जी और मुख्यमंत्री जी के विचार सुने, ओंकारेश्वर में सावन महीने के दूसरे सोमवार की सवारी का आंखों देखा।
0: बिल्कुल, पिछले बार हमारे श्रोताओं ने फरमाइश किए थे कि ओंकारेश्वर में जो सवारी है इस पर भी एक कार्यक्रम करें,
1: तो ये आगे
0: लिख रहे हैं। आपने प्रस्तुत किया मकाम जी,
1: जी आगे लिख रहे हैं कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के विषय में पंडित जी
0: लंकेश्वर
1: जी लंकेश्वर दीक्षित जी ने जो जानकारी दी थी वो बहुत अच्छी लगी। साथ ही रेडियो श्रोता पप्पू सेन ने जो ओंकारेश्वर नौका
0: और इस कार्यक्रम में पप्पू सेन जी ने हमें बहुत सहयोग किया,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
1: तो अच्छे आयोजन का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आकाशवाणी इंदौर को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहरे पल कार्यक्रम में इस बार हमने माजिदा खान जी को सुना, उन्होंने 14 अगस्त को देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों को सुनाकर हमारे अंदर की देशभक्ति का रंग भर दिया। लाजवाब प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनहरे पल कार्यक्रम में रूपाली चौहान जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, एक से बढ़कर एक गीतों का समावेश किया गया था। गुड मॉर्निंग इंदौर में इस बार फोटोग्राफी के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और 18 अगस्त कार्यक्रम में हम तनुजा जोशी की हम सुनवाएंगे।
1: 18 अगस्त को मोना जोशी ने बहुत अच्छे लाजवाब गीत सुनवाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है।
0: बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। और इन्होंने जो कविता के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की,
1: हाँ हाँ,
0: तो मैं भी कुछ व्यक्त कर दूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जब तुम साथ हो, मैं कटारिया जी को बोल रहा हूँ, जब तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है, तन्हाई भी सुरीली सी एक पहचान लगती है,
1: हाँ।
0: रुक जाती है ए आंधियां, थम जाता है ये शोर, उम्मीद की किरणें देखें हर एक नई ओर, न कोई सिकवा न कोई भी गम, यूं ही चलता रहे ये प्यारा सा संग
1: है। क्या बात है, क्या बात है,
0: जब हमारे श्रोता हमारे संग है तो क्या दिक्कत है।
1: बिल्कुल राजेश जी, आज तो शायरी का जो अंदाज है वो हमारे श्रोताओं को बिल्कुल,
0: अब जब हमारे श्रोता
1: उनके दिलों तक पहुंच जाना होगा, आप
0: डुबा देते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी डूबना पड़ता है। और मुकाम जी यही है,
1: जी
0: जब श्रोताओं के साथ आपके जो विचार मिलते हैं और इसके साथ जो एक प्रसारण होता है, इसका एक अलग आनंद ही होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: और खुश
0: और ये लाइव प्रसारण में ये देखने को एक जो आनंद आता है, इसकी अनुभूति अलग होती है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया जी।
1: जी, और एक पत्र स्क्रीन पर दिख रहा है और ये लाबरिया भैरू इंदौर के श्रोताओं का है। अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन और कृष्ण कुमार बामनिया का। और ये लिखते हैं कि आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महोदय जी, मेरा सुझाव है कि रात के समय में जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उनमें फोन इन प्रोग्राम एक भी प्रसारित नहीं होता है, इसलिए रात के वक्त में जरूर इस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय लिया जाए, ताकि नौकरी और व्यापार वर्ग के जो श्रोता हैं वो जो रात में आते हैं वो भी आराम से सुन पाए और कॉल करके वर्तमान में यहाँ से जो भी कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे सकें और गाने सुन सकें।
0: आपका सुझाव बहुत उत्तम है, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। और अगला जो अस्थाई बिंदु तालिका बनेगी
1: जी,
0: हम इसमें अवश्य ही इसका स्थान देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आए हैं, लिखे हैं भाई साहब नमस्कार, सतीश कुमार चौहान भोपाल से मैं लिख रहा हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत बहुत आप भी अपने जीवन में तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है तो हिंदी में लिखें तो और अच्छा है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, कहीं को जिसमें
1: उनके भाव आप बता दें हिंदी में,
0: आपके भाव हम समझ गए हैं
1: जी।
0: और हमारे बीच एक और आनंद जोशी जी ये लिखे हैं
1: जी।
0: और इन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के खंडवा, इंदौर, सनावत, बरवाह, रतलाम, सागर, उज्जैन, भोपाल से सैकड़ों रेडियो श्रोता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है
1: जी।
0: और भारत में हर वर्ष 20 अगस्त को भारत के नियमित रेडियो श्रोताओं का सम्मेलन आयोजित होता है और इस वर्ष 2026 का अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन छत्तीसगढ़ राज्य के लोह इस्पात नगरी जो है भिलाई में आयोजित किया जा रहा है
1: जी। जी
0: मध्य प्रदेश रेडियो श्रोता कल्याण समिति के सरवन सिंह गिन्नारे जी एक सरकारी कर्मचारी भी हैं लेकिन बिल्कुल रेडियो से जुड़े हुए हैं एवं आनंद जोशी जी ने और आगे कहते हुए ये लिखे हैं, मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से सैकड़ों की तादाद में रेडियो श्रोता सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे श्रोतागण पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ 19 अगस्त को मां सरस्वती पूजन, राज्य की संस्कृति पर आधारित एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं श्रोताओं के पंजीयन और परिचय सत्र के साथ होगा। दिनांक 20 अगस्त को सुबह द्वितीय सत्र में दीप प्रज्वलन आकाशवाणी केंद्र के उद्घोषकों के संबोधन के साथ शुरुआत होगी और विभिन्न राज्यों से पधारे रेडियो श्रोताओं का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया जाएगा एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आकाशवाणी केंद्र के नियमित श्रोताओं में सर्वश्री सुभाष खंडाले, मोहम्मद सादिक, अब्दुल गफार डाबर, मोहम्मद रफीक पवार, विजय महोबिया, प्रवीण श्रीमाली, दुर्गा प्रसाद सैनी, योगेश गुजराती, संजय पंचोलिया, शेख मूसा मोहसिन, सुदर्शन शाह, राजेश सेन, चंद्रेश गोहर आदि सम्मेलन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अखिल भारतीय रेडियो सम्मेलन हमारे क्षेत्र पहले तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
1: एक ही था
0: हमारे यहाँ हो रहा है और इसमें देश पूरे देश के लोग आते हैं और जो इसमें जो रेडियो तरंग के माध्यम से जो जुड़े हुए होते हैं और उनकी वास्तविक जो आपस में जो मिलन है इस दिन होगा, इस दिन का आनंद कुछ और होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: ये
0: कुछ रेडियो खून के होते हैं, कुछ रिश्ते आसपास के परिवेश के होते हैं और कुछ रिश्ते जो ध्वनि तरंगों के माध्यम रेडियो से बनते हैं, इसकी एक अलग अनुभूति है।
1: बिल्कुल रेडियो परिवार का ये सालाना जलसा होता है।
0: रस स्वादन करने के लिए हमारे क्षेत्र के ढेर सारे श्रोता जा रहे हैं और इनके क्षेत्र में इंदौर संभाग में जो हमारा केंद्र प्राइमरी चैनल आकाशवाणी इंदौर है और वहां पर आकाशवाणी खंडवा और अभी आकाशवाणी उज्जैन भी खुल गया है, इन केंद्रों के जो प्रसारण है इसके भी साझा हमारे श्रोतागण करेंगे और वास्तव में ये जो मंच है हमारे श्रोताओं के लिए अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन है बहुत ही अच्छा मंच।
1: तो राजेश जी अभी भी वहाँ बहुत सारे श्रोता हैं जो इस वक्त हमारा आपका पत्र कार्यक्रम लाइव सुन रहे हैं, तो हमारे उन सारे जो रेडियो श्रोता है जो अभी भिलाई के श्रोता सम्मेलन में उपस्थित है,
0: मुकेश शर्मा जी भी
1: जी, तो उन सभी को हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से
0: केंद्र इंदौर आपके साथ है और ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं पूरे विश्व फलक पर सुना जा रहा है।
1: बिल्कुल उन्हें बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ देश भर के तमाम श्रोता जो आकाशवाणी इंदौर को सुन रहे हैं तो उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस साल भर के जो जलसा एक कार्यक्रम होता है आपका, जिस प्रकार से श्रोता सम्मेलन होता है और आप सभी की उपस्थिति हम सबको भी प्रेरणा देती है और आप हमें अलग अलग माध्यमों से बताते ही हैं कि ये कार्यक्रम कहां कहां आयोजित होते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो एक बार पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और राजेश जी अब स्क्रीन पर दूसरा पत्र आ चुका है तो ये पत्र है कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली का और ये लिखते हैं कि 14 अगस्त को इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम सुना जिसमें ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारी से मुकाम सिंह चौहान की बातचीत रोचक लगी। इसी दिन सुनहरे पल में विभाजन स्मृति दिवस पर केंद्रित यह कार्यक्रम मनमोहक लगा। अनूठी पेशकश के लिए माजिदा जी को धन्यवाद। 16 अगस्त को विविध भारती पर हमारे मेहमान क्रम में इंदौर शहर की पहली महिला पूर्व महापौर डॉ उमा शशि शर्मा से मुकाम सिंह चौहान की जो बातचीत थी वो उन्हें अच्छी लगी। और 17 अगस्त को गुड मॉर्निंग इंदौर में महाकाल की शाही सवारी व नागपंचमी पर उज्जैन के श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारियों से बहुत कुछ सुनने को मिला। साथ ही विश्व फोटोग्राफी दिवस पर भी बहुत सारे महानुभावों के विचार बहुत सटीक लगे। 18 अगस्त को सुबह 8:30 बजे विविधा के अंतर्गत लेखिका ओडिशी नृत्यांगना अनुषा जैन से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी की बातचीत अच्छी लगी और आपके यहाँ से मन भावन और चॉइस टाइम कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया और कंपेयर्ड फिल्म संगीत, चित्रपट संगीत जैसे कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: करीब करीब सारे कार्यक्रमों को इन्होंने पसंद किया।
1: जी जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोराना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। लिखते हैं, आप दोनों को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी किए हैं मोगाम जी।
1: जी जी।
0: और आकाशवाणी इंदौर से इस सप्ताह का सारे के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और इस सप्ताह मनभावन कार्यक्रम हमने बहुत ही आनंद लिया, सारे प्रोग्राम अच्छे लगे। और 9 अगस्त को वसुंधरा कार्यक्रम में मंगेश देश पांडे जी से वायु प्रदूषण और स्वच्छता अभियान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और इसी दिन 8:30 बजे फिल्म संगीत में पद्मश्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रमों को सराहा। और आगे लिखते हैं, 10 अगस्त को गुड मॉर्निंग इंदौर में चलाए गए इंदौर पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान पर जो है आधारित जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया, बहुत अच्छा लगा, महानुभावों के विचार सटीक लगे। और युवानी कार्यक्रम में सप्ताह के सभी प्रोग्राम सुना, सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखिए, खास करके हमारे नशा मुक्ति अभियान चलाने में हमारे पुलिस विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
1: जी,
0: नशा जीवन को नाश करती है। अगर हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे तो वास्तव में एक स्वस्थ विचार के साथ हम देश को आगे ले जाएंगे। और इसमें सभी श्रोताओं को हम यही निवेदन करते हैं कि आप अपने भी सतर्क रहें और दूसरे को भी नशा मुक्ति के लिए, जो नशा की जो आदत है इसकी लत से बिल्कुल छुड़ाएं और छुड़ाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, एक और पत्र मेरे हाथ में है और ये व्हाट्सएप पत्र है और ये आया है राजा राम नगर देवास से राजेश अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों का। ये लिख रहे हैं कि महोदय सादर प्रणाम और आगामी आने वाले सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये लिखते हैं कि मन भावन कार्यक्रम जो है सुबह 10 से 11 बजे करें तो अच्छा लगेगा। MH हॉटलाइन कार्यक्रम का समय कम कर दें या दिन कम कर दें। और विविध भारती पर जो हेलो विविध भारती कार्यक्रम आ रहा है प्रति मंगलवार और शनिवार को, वो बहुत अच्छा लगता है। और एक और निवेदन इनका है कि युवाणी कार्यक्रम में पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम की शुरुआत की जाए।
0: बिल्कुल, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है।
1: जी,
0: जैसा कि हम बताएं कि आनंद जोशी जी भी गए हुए हैं श्रोता सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
2: इस वर्ष का अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मित्रों, 20 अगस्त को हर वर्ष यह सम्मेलन नियमित रेडियो श्रोता आपस में मिलकर के मनाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा, इंदौर, सनावत, पड़वा, रतलाम, सागर, उज्जैन, भोपाल से सैकड़ों रेडियो श्रोता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 2026 का अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन छत्तीसगढ़ राज्य के 2 इस्पात नगरी भिलाई में आयोजित किया जा रहा है।
0: इस तरह देखिए हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं
1: जी
0: और काफी उत्साह के साथ गए हैं, तो हमारे क्षेत्र का भी एक नाम रोशन कर रहे हैं। और हम तो कहेंगे कि पूरे प्रसारण जो है अपने क्षेत्र के अलावा, इंदौर उज्जैन संभाग के अलावा, पूरे न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से पूरे विश्व फलक पर सुना जा रहा।
1: बिल्कुल, श्रोता सम्मेलन संदर्भित जानकारी के साथ मेल किया है संजय पंचोलिया ने घंटाघर चौक खंडवा से।
0: जी,
1: और ये लिख रहे हैं कि आदरणीय पाठक सर और मुकाम सर को नमस्कार। खंडवा में वृहत स्तर का रेडियो श्रोता सम्मेलन आयोजित हो चुका है। मुकाम जी के साथ हम स्टेज पर रहे हैं। श्रोताओं और लोकप्रिय उद्घोषक भाई बहनों के साथ पुरानी और सुनहरी यादें रही है। भिलाई यानी जो छत्तीसगढ़ में सम्मेलन के लिए हम दुर्ग पहुंच चुके हैं, हमारे साथ योगेश गुजराती, राकेश सेन और सनावत के शेख मूसा हैं। 31 अगस्त को आकाशवाणी इंदौर आ रहा हूं आदरणीय पाठक साहब की सेवानिवृत्ति के अवसर पर।
0: क्या बात,
1: हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपको बधाई संदेश देने के लिए यहां आना चाहते हैं।
0: आप बिल्कुल आमंत्रित हैं
1: जी,
0: हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके साथ रूबरू हूं
1: जी।
0: और आपके भी साक्षात दर्शन के हमें मौका मिलेंगे।
1: बिल्कुल,
0: आपने अपनी भावना व्यक्त किया, आपकी भावनाओं को कद्र करते हुए हम आपको आमंत्रित करते हैं। सारा कार्यक्रम 31 अगस्त को 1 बजे दिन में जो है यहाँ से।
1: राजीव जी, श्रोता सम्मेलन को लेकर कुछ श्रोताओं के बधाई संदेश हमें प्राप्त हुए हैं
0: जी।
1: और ये है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी और उनके परिवारजनों का, एरोड्रम रोड सोमानी नगर से बीआर नामदेव और साथियों का कहना है कि हमारे सभी श्रोता भाइयों को भिलाई जो सम्मेलन में पहुंचे हैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं लेकिन दिल से हम आपको बधाई दे रहे हैं और आपके इस कार्यक्रम की सफलता की कामना कर रहे हैं।
0: जो नहीं पहुंचे हैं
1: जी,
0: हम उम्मीद करते हैं कि वे आकाशवाणी के माध्यम से वहां पहुंच गए होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिए होंगे। तो पहुंचने और न पहुंचने की जो दूरियां हैं, ये दूरियां तो बिल्कुल आकाशवाणी पाटने की कोशिश तो कर ही रही है
1: जी, जी।
0: अब मुकाम जी देखिए, हमारे बीच एक और व्हाट्सएप के माध्यम से लिखे हैं
1: जी।
0: ये लिखने वाले हैं अस्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़।
1: अच्छा जी,
0: सोहन जोशी जी, अर्चना जोशी जी, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला जी, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका खंडवा मध्य प्रदेश, अब्दुल गफार डाबर जगदलपुर बस्तर से, पूनम नायडू जी लिखते हैं हम आपके नियमित श्रोता हैं और आपका जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है काफी अच्छा लग रहा है, हमें मनभावन कार्यक्रम काफी अच्छा लग रहा है और खास करके जो संगीत पर आधारित जो कार्यक्रम है ये भी काफी अच्छा लग रहा है। एक और हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र आया है, राजेश जी और मुकाम जी को प्यार भरी सुप्रभात, मैं विक्रम चौधरी गांव बगरी जिला धार से, मुझे कल 18 अगस्त जो सुनहरे पल में सावन के गीत फिल्म ये जो प्रसारित किया गया काफी अच्छा लगा, मन को जो है काफी सुगुन मिले।
1: क्या बात,
0: तो इस तरह वास्तव में जो है इन्होंने जो किया है बहुत अच्छा, अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं। और जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोरखे, श्रीमती नंदा बोरखे, हनुमान बोरखे, उत्तम जमदारे जी लिखते हैं हमें और आपको, उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है हम आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं और सम्मेलन में भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूं और 40-50 श्रोतागण बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने
1: जी,
0: के
1: जी।
0: पहुंच गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और देखिए माँ बमलेश्वरी देवी का दर्शन मैंने भी एक बार बिल्कुल किया है जब हमारी पोस्ट
1: हमने भी किया
0: बिलासपुर में थी
1: जी।
0: और वास्तव में एक बहुत अलग अनुभूति होती है।
1: बिल्कुल
0: शाहजी बोरखे जी, आपने हमें लिखा, व्हाट्सएप किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राजीव जी, स्क्रीन पर एक ऐसे श्रोता का पत्र है
0: जी,
1: और जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और पूर्व राजभाषा अधिकारी भी हैं।
0: कौन है?
1: जी हाँ, देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं और ये लिख रहे हैं कि मैं पिछले 54-55 वर्षों से आकाशवाणी इंदौर का नियमित श्रोता हूँ। मेरे दिन की शुरुआत आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून और वंदे मातरम से होती है। मुझे ये आदत बचपन से मेरे पिताजी ने डाली थी जब रेडियो पर लाइसेंस हुआ करता था।
0: क्या बात है,
1: 5 अगस्त
0: काफी लंबी अनुभव बता रहे हैं।
1: वो हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, उन्हें नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे एक अच्छी आदत डालकर चले गए हैं। ये आदत जीवन पर्यंत रहेगी। एक बार पुनः उन्हें स्मरण और आकाशवाणी का भी आभार जो मेरे जीवन शैली में एक अच्छे घटक की तरह साथ निभा रहा है।
0: बहुत बहुत
1: उनके पिताजी को भी नमन हम कर रहे हैं।
0: देखिए वास्तव में इन्होंने जो लिखा है
1: जी,
0: बहुत ही मार्मिक लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: और हम आपके साथ हैं, आकाशवाणी आपके साथ है, आप जीवन में उन्नति करें, धैर्य भी रखें। सबसे बड़ा धैर्य जो है, अगर आपके अंदर धैर्य है तो जीवन में जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: समस्याएं सभी की जीवन में आती है, सभी फेस करते हैं, समस्या पहले भी थी
1: जी,
0: आज भी है आगे भी रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इन परिस्थितियों को झेलते हुए आगे कैसे बढ़ना है, इसकी कला हमें आनी चाहिए, और जो कला सीख गए वही जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो पाते हैं।
1: अगला पत्र है हसीना भी मंसूरी, अमीना भी और मोहम्मद रफी मंसूरी का, पालदाना का, इंदौर से लिख रहे हैं। दिनांक 18 अगस्त का चॉइस टाइम कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और इसी दिन मन भावन कार्यक्रम भी हमने सुना, अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने वाले हैं, मैं राम अवतार जीराती ग्राम बगरी जीराधार से
1: जी।
0: लिखते हैं, आपका पत्र कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। मांडव के पास रहता हूं, मांडव में बारिश का यह मौसम बहुत प्यारा लग रहा है। वास्तव में इस समय मांडव का जो नज़ारा होता है अपने आप में एक अलग तरह का होता है मुकाम जी, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों के बीच में। और लिखे हैं, मांडव में बारिश का यह मौसम बहुत ही प्यारा लगता है, जिसमें रानी रूपमती एवं बाज बहादुर के प्रेम की गाथा आज महलों में भी सुनाई देती है। रानी रूपमती का मां नर्मदा के प्रति प्रेम, जिसमें रानी रूपमती ने अपना महल ऐसी जगह बनवाया है जहां मां नर्मदा के प्रतिदिन दर्शन हो सके एवं भगवान महादेव नीलकंठेश्वर मंदिर अति प्राचीन अति दुर्लभ है, और इस बारिश में जहाज महल का क्या कहना, चारों ओर से पानी के तालाब से घिरा जो है जहाज महल, मानो बाकी में हम जहाज में बैठे हैं ऐसा प्रतीत होता है। आप कभी मांडव आओ तो हमारा गांव बगड़ी मांडव से पहले आता है, तो हम आपसे मिलकर हमारा गांव देखकर यहां चाय पीकर ही जाना। 80वें स्वतंत्रता दिवस की इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं भी।
1: बिल्कुल, मांडव का जिक्र किया है, तो मांडव की तस्वीरें अभी भी हमारे आंखों के सामने तैरने लग जाती है।
0: हमने आपका सुझाव बिल्कुल नोट कर लिया है।
1: बिल्कुल,
0: और बिल्कुल जब भी गुजरेंगे मांडव जो है तो आपके यहाँ चाय पीकर जरूर जाएंगे।
1: बिल्कुल, और सावन की बात हो, नीलकंठेश्वर महादेव की बात हो और पर्यटन की बात हो, तो मांडव सच में सभी को याद आता है।
0: मौसम में मुकाम जी चाय छोड़ता कौन है।
1: बिल्कुल, तो मांडव की बहुत सारी खासियत इन्होंने बताई, और वैसे भी हम लोग कई बार मांडव गए हैं और बहुत अच्छा लगता है, और कोशिश करते हैं कि हर बारिश जो है एक बार मांडव के दीदार हो जाएं, ये सभी लोग चाहते हैं। और अगला पत्र आया है धर्मपुरी जिला धार के श्रोताओं का, शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान सुमेरा, कशिश साइमा, हसनैन और खुशी का। दिनांक 14 अगस्त को सुनहरे पल कार्यक्रम में भारत विभाजन से जुड़ी जानकारी के साथ देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति सुनी, बहुत अच्छा लगा। माजिदा खान ने बहुत ही शानदार देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण पेशकश श्रोताओं के लिए की, और इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और 16 अगस्त को सुनहरे पल कार्यक्रम में रूपाली चौहान ने अत्यंत उत्कृष्ट भावपूर्ण और प्रभावशाली प्रस्तुति के साथ गीत सुनवाए। रूपाली की प्रस्तुति बहुत ही साहित्यिक और मधुर अभिव्यक्ति श्रोताओं को पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुकाम जी, बात जब चाय की चल रही थी तो आपने जो है अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए तुरंत दूसरे श्रोताओं की ओर मूव कर दिया।
1: जी, जी,
0: हम
1: जी,
0: कुछ कहना चाह रहे थे।
1: बिल्कुल, आप कहिए।
0: चाय की आई तो चाय की जब बात आती है तो वास्तव में मेरा भी दिल जो है कभी कभी
1: मचलने
0: लगता है। दर्द उससे पूछो, दर्द उससे पूछो जिसकी चाय ठंडी हो जाए।
1: जी,
0: दर्द उससे पूछो जिसकी चाय ठंडी हो जाए। मोहब्बत उससे पूछो जिसका महबूब उसे चाय बनाकर दे जाए।
1: क्या
0: इंतजार उससे पूछो जिसका दूध वाले ना आए। खुशी उससे पूछो जिसको चाय के साथ बिस्कुट मिल जाए। और गम उससे पूछो जिसकी चाय उफन जाए।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सावन की ये रिमझिम बारिश का जो दौर है उसमें चाय तो सबको याद आती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगला मेल
1: है, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आया है, बेरड़ी नानाजी लामसे
0: जी,
1: मीना लामसे, तेजस जय, हर्षिता लामसे का। और ये लिखते हैं कि हम आपका पत्र कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं, इंदौर के प्रोग्राम हर दिन हम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और सुंदर प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता ने हमें व्हाट्सएप किया है
1: जी,
0: ये लिखते हैं, 12 अगस्त 2026 को साप्ताहिक आपका पत्र कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, और समय से रहते सभी पत्रों के उत्तर दिए गए। 14 अगस्त 2026 को इंदौर परिक्रमा में हमारे मुकाम सिंह चौहान जी ने श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की नगर भ्रमण को निकले बाबा भोलेनाथ की रिपोर्टिंग सुनवाई एवं मुख्य पुजारी जी से बातचीत सुना। साथ ही हमारे प्यारे नियमित श्रोता की भी बातचीत सुनकर बहुत खुशी हुई। वास्तव में डंकेश्वर जी से जो बात की पप्पू सेन जी काफी अच्छा था
1: जी,
0: और देखिए हमारे श्रोता भी उनसे संपर्क करके जानकारी सुनवाते रहते हैं। वास्तव में ये मिलन होता है उस समय, ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता ही हमारे विशेषज्ञ हो गए।
1: बिल्कुल,
0: और उतने ही चाहत के साथ वे हमारे जो डंकेश्वर जी से मिले, वास्तव में जब प्रसारित हुआ तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही अनुभूति है।
1: बिल्कुल सही,
0: जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, आसोता सम्मेलन भिलाई महाकुंभ में रेडियो श्रोता दिवस प्रोग्राम में जाने वाले सभी श्रोता साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिए हैं। और किसने लिखा है ये नहीं लिखा है इन्होंने, परंतु इनका मोबाइल नंबर है 9893632356। और एक लिखते हैं, ये भी पूरी मूड में आ गए हैं
1: जी, बहुत, बहुत
0: कभी खत्म नहीं होते
1: जी।
0: कभी खत्म नहीं होते बातों से छूट जाते तो आंखों में रह जाते हैं, और आंख से छूट जाए तो यादों में रह जाते हैं, और रिश्ते तो रिश्ते हैं साहब अपना निशा छोड़ जाते।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूँ, कभी खत्म नहीं होते बातों से छूट जाए तो आंखों में रह जाते हैं, और आंख से छूट जाए तो यादों में रह जाते हैं, रिश्ते तो रिश्ते हैं साहब अपना निशा छोड़ जाते हैं। क्या बात है,
0: क्या बात।
1: केपीएस चौहान सनावत से ये लिख रहे हैं पत्र, और बहुत अच्छा लिखा उन्होंने।
0: अगला मेल
1: जी, अगला मेल है गुन्नौर से आया है
0: जी,
1: बुलंदशहर से ये पत्र है, और लिखने वाले हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फारिया लाहिरा ने।
0: क्या
1: और ये लिखते हैं कि आकाशवाणी के सभी फरमाइशी कार्यक्रम और टेलीफोनिक जो कार्यक्रम होते हैं MH हॉटलाइन, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं।
0: अब वास्तव में MH हॉटलाइन, जरा पूरा नाम बता दें इसका।
1: जी जी जी जी,
0: M4
1: मालवा
0: और H
1: हाउस,
0: मालवा हाउस हॉटलाइन का जो प्रोग्राम है, वास्तव में ये लोगों के दिल को छू लेता है।
1: बिल्कुल,
0: और देखिए मालवा हाउस आज का हमारा केंद्र जो है 1955 का है
1: जी,
0: और 1955 से हम श्रोताओं के दिलों पर राज कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। तो देखिए हमारा केंद्र जो है मध्य भारत का एक अलग केंद्र और काफ़ी पुराना केंद्र है, और वास्तव में ये जो देश की संस्कृति है
1: जी,
0: इस संस्कृति को आगे ले जाने में हमारा जो केंद्र है एक अहम भूमिका निभाया है, और यहाँ एक पर एक संगीत मनीषियों ने इस केंद्र को सजाया और सवारा।
1: बिल्कुल राजेश जी, बहुत खूबसूरत किसी गीत की पंक्तियां हैं।
0: क्या बात,
1: तुम मुझे भुला ना पाओगे,
0: आज लगता है हमारे सारे श्रोतागण सुर और ताल में आ गए हैं।
1: जब कभी भी सुनोगे मेरे गीत संग संग गुनगुनाओगे, ये गीत की पंक्तियां जरूर है, लेकिन ये कह रहे हैं हमारे श्रोता सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और कालका से शुभ चंद्र बजाज और बिट्टा बजाज की आकाशवाणी हमें हमेशा हमारे दिल में यूं ही बसी रहती।
0: और देखिए चंडीगढ़ से हमारे बीच मेल आ रहा है, और हम तो ये समझ गए कि मान गए कि आप जो है अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन में आप शामिल हो गए।
1: बिल्कुल,
0: ये कितना देखिए हमारा केंद्र जो है देश के सभी हिस्सों के श्रोताओं के ये संगम में इस केंद्र के माध्यम से स्नान करा रहे हैं।
1: जी,
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत धन्यवाद रामलाल चंद्रवंशी जी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी जी, आकली दीवान मध्य प्रदेश। ये लिखते हैं
1: जी,
0: आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से ओतप्रोत हैं, और यही वजह है कि रेडियो आज भी करोड़ों श्रोताओं के दिलों में अपना खास जगह बनाए हुए है। आगे लिखते हैं, इसी रेडियो प्रेम और श्रोताओं की आत्मीयता को एक मंच देने के लिए 19 और 20 अगस्त को भिलाई में अखिल भारतीय रेडियो सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है, हमें अंदर से काफ़ी खुशी हो रही है। और आगे लिखते हैं, मध्य प्रदेश के हमारे कई रेडियो प्रेमी मित्र पूरे उत्साह के साथ भिलाई आ गए हैं, कुछ भुलाई पहुंच गए हैं
1: जी, जी।
0: और कुछ रास्ते में हैं, क्या बात है। और बरसों से रेडियो से जुड़े इन साथियों के लिए यह सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि मुलाकात, मित्रता, यादों और रेडियो के प्रति अपने जुनून को साझा करने का खूबसूरत अवसर है।
1: बहुत, तो बहुत राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता जितने वहां भिलाई पहुंचकर खुश होंगे उतनी ही खुशी हम भी जाहिर कर रहे हैं। और आपने तो सजीव कमेंट्री ही कर दी और कई श्रोताओं के मैसेज ऑडियो भी लोगों को सुनवा दिए,
0: क्या बात।
1: तो ये बहुत बड़ी बात है,
0: यही सबसे बड़ी रेडियो की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर रेडियो हमारे श्रोताओं के बीच नहीं है
1: जी,
0: तो रेडियो से जो प्रसारण किसके लिए करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब हम अपने श्रोताओं को बांध नहीं पाए, अपने श्रोताओं के विचार को साझा नहीं कर पाए
1: जी,
0: तो फिर रेडियो का कोई औचित्य नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: और वास्तव में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का ये जो सशक्त माध्यम है
1: जी,
0: जिसके जरिए हम अपने श्रोताओं तक पहुंचते हैं, और वास्तव में सूचना क्रांति, आज वर्तमान समय में जो सूचना क्रांति है वास्तव में ये देश को आगे ले जाएगा।
1: बिल्कुल, और श्रोता और रेडियो के प्रस्तुतकर्ता दोनों ही एक साथी, एक परिवार के अंग हैं। और जब हमारे शरीर के अंग या हमारे श्रोता जब वहाँ हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब देश भर के लोग अपना समय निकाल कर रेडियो की बात करते हैं, रेडियो के प्रस्तुतकर्ताओं से मिलते हैं और रेडियो की बातें साझा करते हैं, तो उनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती है। और इसीलिए हम भी उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएँ पुनः देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है। नमस्कार मुकाम जी और राजेश जी, सुंदर खरगोन में भगवान सिद्धनाथ जी का शिव डोला भादव दूज के दिन निकलता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन होता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर 20 घंटे में तय करते हैं। पूरे मार्ग पर लाखों लोग भगवान के दर्शन करते हैं। मेरा अनुरोध है कि आकाशवाणी से कोई प्रतिनिधि आए और भगवान सिद्धनाथ जी के डोले की रिकॉर्डिंग करें, और प्रसारण हो तो देश विदेश में बाबा के भक्त इसे सुनकर आनंद लें। ये लिखने वाले हैं जदुनंदन सोनी जी, संतोषी सोनी जी, खरगोन से। देखिए, हमारे जो प्रसारण क्षेत्र है इंदौर और उज्जैन संभाग के समस्त जिले हैं
1: जी।
0: हम आपसे निवेदन करते हैं कि सभी जगह तो संभव कवर करना संभव नहीं है, लेकिन आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे पास संपूर्ण जो है आप कमेंट्री करके आप हमारे
1: राजेश जी, बहुत कम समय है और एक श्रोताओं के अभी भी मेल प्राप्त हुआ है, ताराचंद पटेल ग्राम कोदरिया महू से। और ये लिखते हैं कि महोदय नमस्कार, आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम हम रेडियो सेट पर सुनते हैं, लेकिन पिछले 7-8 महीने से रेडियो सेट पर कार्यक्रम 3 से 4 घंटे बंद रहता है, जबकि विविध भारती का प्रसारण लगातार चलता है, ऐसा क्यों, कृपया हमें बताएं।
0: आप ही बता दें मुकाम जी।
1: बिल्कुल, कभी कभी खासकर बारिश के दिनों में हमारा जो HPT है, हाई पावर ट्रांसमीटर, वहां पे कभी कभी विद्युत आपूर्ति के कारण ऐसा हो सकता है
0: और काफी पुराना है, कभी कभी तकनिकल समस्या आ जाती है। और घड़ी की सुई अभी सारा कर रही है आपसे विदा लेने का, तो
1: कहें नमस्कार। आप सुन रहे थे आपका पत्र कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। ACB के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉ शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
5: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन देन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में दो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक दो मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
7: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satendra Jain and five others in Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. The government has approved the incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in the kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbilled connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म
3: दिल मेरा। बंद लिफाफा दिल मेरा, इसे खोल के पढ़ लो जी। बंद लिफाफा।
4: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर।
5: उनके संगीत से रची कुछ चुनिंदा फिल्में कभी कभी, उमराव जान, बाजार, त्रिशूल, रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों ने हिंदी सिने जगत को संगीत की एक नई ऊंचाई दी। 18 फरवरी 1927 को पंजाब के एक शहर में जन्मे खयाम साहब ने अपने करियर की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना से लौटकर की थी। बाद में उन्होंने संगीत निर्देशक हुस्नलाल भगतराम के साथ सहायक के रूप में काम शुरू किया। भारतीय सिनेमा में कई ऐसी जोड़ियां बनी जिन्होंने संगीत के नए अध्याय लिखे, लेकिन गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीतकार खयाम की जोड़ी का स्थान सबसे अलग और अनूठा है। यह सिर्फ दो कलाकारों का मेल नहीं था, बल्कि उर्दू शायरी की गहराई और शास्त्रीय नम्रता का एक ऐसा संगम था जिसने हिंदी सिनेमा को कुछ सबसे खूबसूरत और रूहानी गीत दिए। चंबल की कसम 1980 में आई फिल्म थी। डाकू जीवन पर आधारित इस फिल्म में भी साहिर के शब्दों और खयाम के लोक संगीत से जुड़े सुरों का बेहतरीन तालमेल दिखने को मिला।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: साहिर लुधियानवी अपनी शायरी में किसी प्रकार का समझौता न करने के लिए जाने जाते थे। वे मानते थे कि संगीत को शायरी का अनुगमन करना चाहिए, न कि शायरी को धुन के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाए। खयाम साहब भी शब्दों की गरिमा को भली भांति समझते थे। इस जोड़ी की औपचारिक शुरुआत 1950 के दशक में हुई, लेकिन 1961 में आई फिल्म शोला और शबनम ने इस जोड़ी की ताकत को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। साहिर जब भी कोई नज्म लिखते तो खयाम साहब घंटों उस नज्म के भाव को समझते थे। खयाम साहब की खासियत थी कि वे साहिर की कठिन से कठिन शायरी के लिए भी बेहद सहज और रूहानी धुने रच लेते थे। साहिर और खयाम ने मिलकर कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनके संगीत ने इतिहास रच दिया। साहिर और खयाम की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को यह सिखाया कि बिना शोर शराबे और भारी आर्केस्ट्रा के भी काल जयी संगीत रचा जा सकता है। साहिर का निधन 1980 में हुआ, लेकिन खयाम साहब जीवन भर साहिर की शायरी और उनकी दोस्ती को याद करते रहे। यह जोड़ी आज भी उन संगीत प्रेमियों के लिए एक मिसाल है जो गानों में शब्दों के अर्थ और सुरों की नफासत को तरजीह देते हैं। खयाम साहब के संगीत की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने फिल्मों की संख्या के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान दिया। उनके जीवन का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुई 1981 की फिल्म उमराव जान। निर्देशक मुजफ्फर अली की उमराव जान के लिए जब खयाम साहब ने संगीत तैयार किया तो उन्होंने आशा जी से गजलें गवाई। नतीजा क्या हुआ? आशा जी की आवाज में जो ठहराव आया कि इस फिल्म के लिए खयाम साहब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया।
3: 19वीं सदी का लखनऊ हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का गहवारा था। लखनऊ उस तहजीब का दिल था और उस दिल की धड़कन थी उमराव जान अदा। मगर सितम ये कि उस धड़कन के सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल था जिसकी आवाज उसके जीते जी किसी ने नहीं सुनी। उमराव जान की हर गजल उन्हीं धड़कनों की सदा है, उसी दिल की पुकार है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक। मित्रों, खय्याम साहब के संगीत की बात अधूरी रहेगी अगर हम उनकी जीवन संगीनी और गायिका जगजीत कौर का जिक्र ना करें। जगजीत जी ने उनके कई तरानों को अपनी आवाज दी, जैसे फिल्म बाजार का ये गाना, देख लो आज हमको जी भर के। दोनों का साथ न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि संगीतमय सफर में भी अटूट रहा। खय्याम साहब सिर्फ एक महान संगीतकार ही नहीं बल्कि एक विशाल दिल वाले इंसान भी थे। अपने 90वें जन्मदिन पर उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई खय्याम जगजीत कौर चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी, ताकि जरूरतमंद कलाकारों और संगीतकारों की मदद की जा सके। ऐसा दिल सिर्फ एक सच्चे कलाकार के पास ही हो सकता है। 19 अगस्त 2019 को संगीत का ये जगमगाता सितारा भले ही हमसे दूर चला गया, लेकिन उनकी धुनें आज भी हमारे दिलों में सांस ले रही है। जब भी भारतीय सिनेमा में नफासत गजलों और सादगी भरे संगीत की बात होगी तो खय्याम साहब का नाम सबसे ऊपर रहेगा।

फिल्म संगीत में आज हम याद कर रहे थे महान संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम साहब को। आज की इस फिल्म संगीत में हमने उनके संगीतबद्ध किए हुए कुछ गीत सुनवाए, कभी कभी फिल्म से, चंबल की कसम, उमराव जान, और कार्यक्रम के आखिर में जगजीत कौर की आवाज में ये गीत बाजार फिल्म से था।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अब सुनिए लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के गाए लोकगीत। आइए सुने कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लोक संगीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के गाए लोकगीत। आइए सुनिए अगला।

अब आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नियम कानून को की गाई गजलें। तो कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए जावेद अख्तर की लिखी गजल आवाज नियम कानून को की।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नियम कानून को की गाई गजलें। अभी आपने सुनी यह गजल और कार्यक्रम के आखिर में सुनवा रहे हैं एक और गजल। कलाम जावेद अख्तर के हैं, आवाज नियम कानून को की।

अभी जमीर में थोड़ी जान बाकी। अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की लिखी एक गजल आवाज नियम कानून को की। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आशा खाडिलकर का गायन राग अहीर भैरव।

आपको बता दें संगीतकारों के नाम, हारमोनियम पर गोविंद पटवर्धन, वायलिन पर मधुरम कृष्णन और तबले पर जयंत नाइक।

0: आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे आशा खाडिलकर का गायन राग अहीर भैरव। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आइए सुने सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

भिंड जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डीआरपी लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर किरोड़ी लाल मीना ने पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र सेनानियों तथा करगिल शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का सजीव प्रसारण एलईडी के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बदलते दौर का मध्यप्रदेश भिंड जिले की विकास गाथा का वितरण किया गया, जिसमें विगत 2.5 वर्षों में जिले की उपलब्धियों का वर्णन है। मुख्य अतिथि ने सभी परेड कमांडर से परिचय प्राप्त किया और हर्ष तथा शांति के प्रतीक रंगीन गुब्बारे छोड़े। मुख्य अतिथि ने बताया कि जिले में वर्तमान में 23 पीएम श्री विद्यालय संचालित हैं, जो एयर कंडीशन्ड स्मार्ट क्लासरूम संगीत और प्रशिक्षण से लैस हैं। कनावर गोहद अटी लहार में 145.59 करोड़ रुपए की लागत से सब सुविधायुक्त सांदीपनी विद्यालय तैयार किए गए हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित माय भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में भिंड जिले के युवा कलाकार और आर्यावर्ती संस्कृति संगम के उपाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर विजेता के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, भारतीय संस्कृति, सामाजिक जागरूकता के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। इस उपलब्धि के फलस्वरूप उन्हें 15 अगस्त को लाल किला नई दिल्ली में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये सम्मान भिंड जिले और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर माय भारत केंद्र ने कहा है कि भूपेंद्र चौहान की सफलता जिले के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उनकी उपलब्धि ये दर्शाती है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर प्रयास के साथ माय भारत द्वारा युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माय भारत केंद्र भिंड ने जिले के सभी युवाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में माय भारत पोर्टल पर पंजीयन कर विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, स्वयंसेवी गतिविधियों, नेतृत्व विकास कार्यक्रमों, कौशल विकास अभियानों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े आयोजनों में सक्रिय सहभागिता करें। भिंड जिले में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन हुआ। पर्यटन विभाग की समृद्धि और मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अनुसार इस साल भी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन नवल किशोर पातीराम शिवहरे नर्सिंग कॉलेज भिंड में किया गया। प्रतियोगिता के लिए टीम चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें मूल्यांकन के बाद प्रथम 6 टीमों का चयन किया गया।

इन छह टीमों के साथ ऑडियो वीडियो राउंड के माध्यम से क्विज प्रतियोगिता की गई, जिनमें प्रथम स्थान सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 भिंड, द्वितीय स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकोड़ा, तीसरा स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरहा, चतुर्थ स्थान सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव और पांचवां स्थान द इंडियन पब्लिक स्कूल डबोह, छठवां स्थान सिटी सेंटर पब्लिक स्कूल भिंड ने प्राप्त किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ वीर सिंह चौहान ने कहा कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों में विद्यार्थियों को अवश्य सहभागिता करनी चाहिए, जिससे जीवन जीने की कलाएं प्राप्त होती हैं और भविष्य में परिस्थितियों से लड़ने का साहस प्राप्त होता है। भिंड कलेक्टर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संबंध में सभी जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धियां, सामने आई समस्याओं, ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं और आगे की रूपरेखा के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से पंचायतों में किए गए जनसंवाद के दौरान मिले फीडबैक की जानकारी ली। अधिकारियों को जनसंवाद के निष्पक्ष और प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विशेष रूप से कहा कि जनसंवाद केवल योजनाओं का नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक परिवर्तन लाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक पंचायत में देखना अनिवार्य है कि क्या लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर और सही ढंग से मिल रहा है। बैठक में निर्देश दिए गए कि जन संवाद के दौरान प्राप्त शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। भिंड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी, प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं MH हॉटलाइन कार्यक्रम। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सभी से छोटा सा निवेदन। मित्रों, बहुत सारे श्रोताओं को उम्मीद है कि एक ना एक दिन उनका कॉल आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में अवश्य लगेगा और आशावादी दृष्टि से लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी जब वे नहीं जुड़ पाते हैं तो उन्हें निराशा होने लगती है और उनकी निराशा का कारण आप हम भली भांति जानते हैं। तो क्या हमारे वे श्रोता जो लगातार कॉल करते हैं, वे कुछ सप्ताह का ब्रेक लेकर उन्हें मौका नहीं दे सकते हैं? अरे भाई, आप जरूर दे सकते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत उदार हैं, और वो भी अपने साथियों के लिए। तो निश्चित तौर पर आप हमारा ये निवेदन मानेंगे और कम से कम 15 दिन तक का तो ब्रेक लेंगे और फिर जुड़ेंगे। तो आप हमें और उन्हें सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और श्रोताओं, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जब आप सभी एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं भिलाई श्रोता सम्मेलन के माध्यम से, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप रेडियो के प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छा लगता है। और अब हमारे बीच जुड़ रही हैं ये श्रोता। हेलो MH हॉटलाइन।
2: MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
3: नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार,
3: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
1: जी रानू जी, स्वागत है आपका।
3: जी, और आपके क्या हाल चाल?
1: हमारे हाल चाल बहुत अच्छे हैं।
3: और
1: आपके हाल चाल बताइए, क्योंकि अब तो आप बहुत सारी तैयारियों में लगे होंगे, मीठे मीठे व्यंजन तैयार करने में लगे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा त्योहार हमारे बीच में आ रहा है, रक्षाबंधन।
3: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप मतलब आपने वैसे अच्छे टॉपिक पर बात निकाली है, मतलब रक्षाबंधन की। मैंने कल से मतलब पैकिंग शुरू कर दी है।
1: अच्छा,
3: कभी कोई कोई चीज भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल,
3: जाना तो मुझे 25 तारीख को है, लेकिन ना मैं अभी अभी धीरे धीरे से कोई कोई चीज रख लेती हूँ, क्योंकि भूल जाती हूँ।
1: तो भैया का घर कहाँ है, देवास में है या बाहर?
3: गुना। गुना।
1: अच्छा, देवास से गुना जाएंगे तो बड़ा उत्साह होगा। बिल्कुल।
3: तो भाई मेरा भोपाल में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट है।
1: अच्छा अच्छा,
3: वो वहाँ से छुट्टी रहेगी 27 को। वैसे तो मैं सोच रही हूँ मैं 25 को जाऊँ, वो लेने आ रहे तो जाऊँ, तो देखते हैं कैसा क्या प्लान बनता है।
1: अरे वाह, उत्साह बहुत नजर आ रहा है, खुशी बहुत नजर आ रही है।
3: एक भाई मेरा शिवपुरी पुलिस में है, दोनों भाई की जॉब है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
3: और मैं जाने
1: तो गुना में दोनों आ जाएंगे छुट्टी लेकर।
3: वो तो आना ही पड़ता है ना, क्योंकि मैं इकलौती बहन हूँ।
1: और रक्षाबंधन का इतना बड़ा पर्व है तो निश्चित तौर पर आना होगा।
3: तो हमारी बहन तो हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे घर में मैं अकेली हूँ।
1: जी जी जी जी,
3: और आपको रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, अग्रिम अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी।
3: हमारे इधर को भुजरिया पर्व मनता है, तो उसकी भी शुभकामनाएं। वो शायद इधर को नहीं मनाते भुजरिया।
1: नहीं, इंदौर में तो मनता है।
3: इंदौर में मनता है, लेकिन हमारे इधर को देवास में मैंने देखा नहीं, तो इसलिए मुझे मतलब नहीं पता है।
1: जी, इंदौर में तो मनता है और बहुत सारे जगह लोग जाते हैं।
3: जी जी बिल्कुल। और उसके बाद आपको एक बात बताऊं, मेरे मामा जी का भी फोन आ गया, तो बिना में रहते हैं तो उनके यहाँ भी जाना है।
1: अरे वाह, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। आपकी पसंद का गाना बताइए।
3: हाँ, मूवी का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम, और गाने के बोले खोए खोए दिन है।
1: क्या बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन आकाशवाणी इंदौर केंद्र से, और अब जुड़ रहे हैं हमारे ये श्रोता। हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम
6: जी। नमस्ते सर।
5: नमस्ते
6: जी, इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
5: जीनत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप भी हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं
6: जी। थैंक यू सर।
5: कितने दिनों बाद जुड़े इस कार्यक्रम में आप?
6: मुझे 22 दिन हो चुके।
5: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आपने हमारी बात का ध्यान रखा और 15 दिन का कम से कम अंतराल लिया, अच्छा लगा। जीनत जी, गाना कौन सा सुनवा दें?
6: फिल्म का नाम है ईमानदार। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही प्यार छुपा रखा है।
5: सुरेश वाडकर जी की आवाज में ये गीत है
6: जी।
5: जी जी जी, तो जीनत जी, अभी सावन का महीना चल रहा है, रिमझिम बारिश का दौर भी है, तो घूमने फिरने का शौक है कि नहीं?
6: ये तो सही, मगर बस टाइम मिलता है जब जाते
5: हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ चले जाते हैं आप?
6: बस वैसे तो मैं मम्मी के जाती हूँ, या तो फिर
5: अच्छा
6: मंदसौर।
5: अच्छा, कहाँ मम्मी का घर है? मंदसौर
6: जी, मंदसौर में है।
5: तो मंदसौर के रास्ते में तो बहुत सारे खूबसूरत स्थान है
6: जी, ट्रेन में जाती हूँ
5: जी,
6: सफर बहुत आसान।
5: बिल्कुल सही बात है,
6: सफर करती हूँ।
5: हाँ, वो तो अच्छा लगता है, ट्रेन से भी बहुत अच्छे नज़ारे दिखते हैं, हरे भरे जी, पूरे
6: जी। और मम्मी का मतलब 5 किलोमीटर दूर है, गांव में है। गांव में तो फिर अच्छा ही लगता है, सब खेत रहते हैं।
5: गांव में तो स्वर्ग है इस वक्त
6: जी,
5: हरे भरे खेत, हरियाली, फसलें और नदी नाले, सब बढ़िया लगता है
6: जी। गार्डन है पीछे गुलाब का।
5: अच्छा, अरे वाह, तो गुलाब की खुशबू तो यहाँ तक पहुँच रही है
6: जी, मम्मी के वही पीछे है गार्डन।
5: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात कर और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
6: शुक्रिया सर
5: जी।

0: तो कारण क्या था कि आप भी वैसे ही बाबू मोशाई की एक्टिंग करते थे होंगे?
1: नहीं नहीं सर, अब उतनी उम्र नहीं है ना सर।
0: बच्चे भी कर सकते हैं ना, बचपन में तो बहुत अच्छा लगता है
1: सर।
0: फिल्में देख कर आकर और खूब एक्टिंग करना, खूब दोस्तों के साथ बताना कि देखो आज हमने उसकी फिल्म देखी थी।
1: सर जब हम लोग राजेश खन्ना की फिल्म सर छोटे थे ना,
0: हाँ,
1: और जब यही थी के ट्रेन में जब उनके फ्रांस वाले जब थे ना सर, हम
0: जी
1: छोटे थे तो हमारा नाम,
0: हाँ। अच्छा ये बताओ, राजेश खन्ना जी से मुलाकात हुई कि नहीं कभी? हेलो,
1: हाँ सर,
0: राजेश खन्ना जी से मुलाकात हुई कि नहीं आपसी?
1: हाँ नहीं सर।
0: अच्छा फिल्मों में जरूर हुई है, फिल्में देखी है आपने खूब। अच्छा फिल्में कौन कौन सी देखी
1: सर? हम लोग 2000 से पिक्चर देखी सर, 92000।
0: ओके ओके, पुरानी फिल्में आपने नहीं देखी?
1: आप पुरानी फिल्में क्या करते हैं, अब फिल्में है ना सर, मोबाइल में देखते रहते हैं।
0: अच्छा तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, राजेश खन्ना जी की कौन सी फिल्में देखी होगी, अच्छी लगी होगी? बहुत सारी फिल्में
1: बहुत देखी सर, आराधना देखी, कटी पतंग देखी, आनंद पिक्चर देखी।
0: हाँ तो एक
1: बहुत पिक्चर देखी सर।
0: तो एक एक एक डायलॉग हो जाए
1: सर। डायलॉग तो याद
0: नहीं है सर। अरे कोई सा भी थोड़ा सा। अच्छा चलिए, अच्छा लगा आपसे बात कर। आपकी पसंद का गाना
1: सर? डिस्को डांसर मूवी में सर याद आ रहा है तेरा प्यार वाला सॉन्ग।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गाना है, सुनवा रहे हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाई लोग का नाम ले?
0: अच्छा भाई लोगों के नाम लीजिए
1: सर। हमारे बड़े भाई का नाम है बाला प्रसाद, छोटे का नाम है सूरज बली, हमारा मिसेस सुनीता राज, भानु राज, अमित खन्ना सर।
0: ठीक है, आप तक पहुंचा रहे हैं आप सभी के लिए ये गाना डिस्को डांसर फिल्म से तेलंगाना तक।
1: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, छत्तीसगढ़ के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा श्रोता सम्मेलन हो रहा है।
1: बिल्कुल भैया, मैं तो बस सामान पैक कर लिया हूँ।
0: हाँ?
1: से बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा विलंब होगा,
0: तो
1: बाकी 2-3 बजे तक पहुँच जाऊंगा।
0: आपके बेमेतरा से भिलाई कितनी दूर पड़ेगा?
1: ये है भैया 80 किलोमीटर।
0: हाँ, तो आप पहुँच जाओगे।
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपकी पसंद का गाना कौन सा हो जाए?
1: आज भैया मैं अपने जीवन के 35वें साल में प्रवेश कर लिया।
0: हो हो, क्या बात है क्या बात है। बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको 35वें जन्मदिन पर।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया।
0: क्या बात है,
1: प्यारा सा गीत आप अपने तरफ से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुरीला गीत रफी साहब की आवाज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे कि आप खूब आगे बढ़ें और ऐसे ही रेडियो सुनते रहें। ठीक है
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, कौन साहब बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं श्रीपाल गोयल दिल्ली से बात कर रहा हूं सर।
0: जी गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो से।
1: जी धन्यवाद आपका। कैसे हो आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में बारिश हो रही है अभी?
1: नहीं सर, बहुत ज़्यादा उमस है, गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे।
0: वहाँ उमस बहुत होती है।
1: जी जी बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो गोयल साहब बताइए, गीत कौन सा सुनवाएं पहले?
1: सर हमारे दोस्त का बर्थडे आज, इनके रिकॉर्ड लगी थी योगेश जी।
0: अच्छा योगेश जी को तो सुनवा दिया। शुभकामनाएं। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं पहुंच गई होगी। आपकी पसंद का गाना कौन सा?
1: सर मूवी का नाम है रजनीगंधा
0: जी,
1: गाना यही है, टाइटल सॉन्ग।
0: टाइटल सॉन्ग सुनवा दें।
1: हाँ जी, धन्यवाद आपका।
0: जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम। हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद अग्रवाल साहब कहाँ से बोल रहे हैं? अग्रवाल साहब आपकी आवाज क्यों कट रही है? नेटवर्क क्षेत्र में आके बात कीजिए ना। नहीं आवाज आपकी कट कट के आ रही है। देखिए अब आ रही है आपकी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में आके बात कीजिए। जी बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे? अभी भी बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही है। हेलो हेलो अग्रवाल साहब, शायद आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां नेटवर्क ठीक से नहीं मिल रहा है, इसलिए आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही। हेलो हेलो क्षमा चाहेंगे कि आपसे हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। हेलो एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम।
2: हाँ हेलो एम एच हॉटलाइन।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: गणेश भाटी, बागली जिला देवास से।
0: जी जी भाटी साहब, कौन सा गाना सुनेंगे?
2: ये सुनवा दीजिए, दस्तक फिल्म का।
0: दस्तक का कौन सा गाना?
2: ये मायरी मैं कासे कहूँ।
0: क्या बात है, दस्तक फिल्म का गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे। ये फिल्म देखी है आपने?
2: हाँ नहीं देखी, नहीं गाने सुने।
0: आनंद बख्शी साहब के लिखे गाने हैं और उनकी आवाज
2: हाँ,
0: में एक गाना
2: मदन मोहन का संगीत
0: मदन
2: है।
0: मोहन साहब का संगीत है।
2: हाँ
0: जी जी जी फिल्म में देखने का शौक है?
2: नहीं मैं देख नहीं सकता।
0: अच्छा अच्छा जी
2: हाँ
0: अच्छा, तो गाने और रेडियो आपका साथी है?
2: हाँ रेडियो साथी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बचपन से ही सुनते हैं, 1983-84 से।
0: अच्छा
2: हाँ बहुत पुराने श्रोता,
0: काफी पुराने श्रोता हैं।
2: हाँ
0: तो बागली, बागली के रहने वाले आप?
2: बागली, बागली से मैं एक ही जो है, मैं और कोई नहीं जुड़ता है, मैं ही हूँ।
0: अच्छा आप ही जुड़ते हैं?
2: हाँ बागली से कोई नहीं है
0: ऐसा?
2: हाँ
0: अरे वाह,
2: बागली जिला देवास।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देवास जिले की तहसील है बागली।
2: हाँ तहसील है।
0: बिल्कुल बागली के आसपास में, अभी तो चूंकि देवास जिले में अभी हरियाली खूब अच्छी हो रही है, तो
2: हाँ
0: आपके आसपास में क्या कुछ है घूमने लायक बड़े स्थान?
2: वो जटाशंकर है।
0: अच्छा जटाशंकर महादेव का मंदिर।
2: हाँ जटाशंकर महादेव।
0: तो सावन में तो खूब भीड़ होती होगी?
2: सावन में भीड़ होती है और शिवरात्रि पे मेला लगता है।
0: जी आप गए कि नहीं वहाँ पर?
2: हाँ गए, मेला लगता है जब जाते हैं कभी, प्रवचन प्रवचन होता है वहाँ पे, प्रवचन सुनने जाते हैं।
0: हाँ। चलिए तो रेडियो कितना सुन लेते हैं, दिन भर सुन लेते हैं आप?
2: हाँ दिन भर सुनते हैं।
0: और फोन इन कार्यक्रम से जुड़ते रहते हैं?
2: हाँ जुड़।
0: अच्छा अच्छा तो इस एमएच हॉटलाइन में पिछली बार कब जुड़े थे?
2: पिछली बार बहुत दिन हो गए
0: ऐसा।
2: हाँ
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो चलिए आपकी पसंद का गाना दस्तक फिल्म से सुनवा रहे हैं।

0: हेलो विविध भारती, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से।
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: आपके नीमे श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर गंजुमा श्रोता से।
0: जी बिल्कुल, बहुत नियमित श्रोता हैं आप
1: बिल्कुल
0: तो।
1: सर, आपके लिए जो पत्र भी डालते रहते हैं,
0: जी, और इस
1: आपके सर जी
0: कार्यक्रम में
1: पढ़ते
0: नियमित रूप से
1: होंगे।
0: पिछली बार कब जुड़े थे साहब?
1: सर हमें कम से कम 1.5 महीने हो चुका है, हम व्यस्त थे काम में।
0: अरे वाह।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, हम पानी पूरी सेंटर का ठेला लगाते हैं, हमारे
0: जी
1: गंज
0: जी जी
1: वासुदा। आइए सर।
0: बिल्कुल, गंज बासोदा जब आएंगे तब आपकी पानी पूरी भी खाएंगे। और फिलहाल आपकी पसंद का गाना बताइए।
1: सिर्फ तुम की कव्वाली, एक मुलाकात जरूरी है सनम।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं आपकी
1: बिल्कुल सर।
0: पसंद
1: और
0: की।
1: सर कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं।
1: बिल्कुल सर, पहली बार बात हुई है सर
0: जी जी जी जी
1: आपसे।
0: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हाँ जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, आपका नाम क्या है?
1: मैं गेंदालाल परिहार बोल रहा हूँ सर, गांव उलझाऊ जिला सीहोर से।
0: गेंदालाल जी, जी जी, कौन सा गाना सुनेंगे
1: सर? फिल्म का नाम है हीर रांझा
0: जी।
1: सर गाना है तेरे कूचे में तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गाना आपने पसंद किया है। तो सीहोर में तो खूब बारिश हुई इस बार?
1: जी सर, जी हल्की बारिश हो रही है अभी तो।
0: लेकिन अभी सीहोर भोपाल में जो कुछ दिनों पहले तो खूब बारिश हुई।
1: हाँ हुई ना सर।
0: तो बारिश का पूरा कोटा पूरा हो गया क्या वहाँ पे?
1: नहीं अभी नहीं हो पाया सर।
0: अच्छा
1: कोटा
0: ऐसा?
1: वो क्या सर, हमारे गांव के पास एक कुलासी नदी बहती है।
0: हाँ।
1: तो निजमानी सर जो बड़े झील है ना भोपाल की।
0: हाँ हाँ,
1: वो मुख्य स्रोत है सर ये धरने के।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके गांव से भोपाल के बड़े तालाब में पानी पहुंचता है एक तरह से कह सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: जी जी जी, तो आपके इधर बारिश होना जरूरी है अगर भोपाल के बड़े तालाब को भरना है तो।
1: हाँ सर, जब क्या खाली थोड़ा एक फीट के लगभग लेवल नहीं हुआ उसका भी।
0: तो अभी तो श्रावण बचा हुआ है, उसके बाद भादव भी है।
1: हाँ सर, ये बारिश की तो उम्मीद कर रहे हैं सर, होना चाहिए बारिश तो।
0: हाँ, फसल कैसी है?
1: फसल बढ़िया सर ये सभी किसानों की।
0: आप क्या करते हैं?
1: सर मैं सिलाई करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ आपके?
1: जी मैं कहना चाहूँ हमारे गांव में, गांव के लोग भंडारा लगाते हैं सर ये देवास और उज्जैन के बीच में।
0: हाँ हाँ,
1: ये लगभग 20-25 रोज के लिए रहता है।
0: अच्छा
1: जी सर, ये श्रद्धालु वगैरह जाते हैं ना कांवड़ यात्रा।
0: जी जी जी,
1: जाने वाले को पैदल यात्रियों के लिए
0: बिल्कुल
1: भोजन की खाने की रहने की।
0: तो ये पूरे श्रावण मास में रहता है आपका, आपके गांव में भंडारा?
1: जब गांव वाले लगाते हैं जब देवास और उज्जैन के मध्य में हाईवे के ऊपर।
0: जी जी

0: तो बहुत
1: सर ये
0: अच्छा,
1: 8-10 साल हो गए सर ये लगाते
0: क्या
1: रहते
0: बात
1: हैं।
0: है, बहुत ही पुण्य का काम है।
1: जी
0: और हमारे वे भाई बहन जो कांवड़ उठाकर शिवालय
1: हाँ जी
0: पहुंचते
1: अगर
0: हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना बहुत बड़ा काम है।
1: भोजन पानी चाय नाश्ता रात्रि विश्राम भी रहता है वहाँ पे
0: जी
1: जो
0: जी बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा पुण्य काम करते हैं। और अब आपकी पसंद का गाना सुनवा दें।
1: जी सर कमा 10 साल हो गए सर ये भंडा लगाते हुए सभी सहयोग रहता है गाँव वालों का इसमें।
0: जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सभी लोगों के लिए, और आपकी पसंद का गाना सुनवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: सर नमस्कार। सर
0: नमस्कार।
1: सर मैं सीताराम कुमावत बोल रहा हूँ, अपने हिमरोल के पास में चिकली करके गांव है।
0: जी जी जी कुमावत साहब, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर मैं अपने भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
0: जी जी जी राखी आने वाली है और तैयारियां जोरों की है।
1: हाँ सर
0: बिल्कुल, और बाजार बिल्कुल राखियों की सामग्री से सज चुके हैं। तो कहाँ आपका कहाँ जाते खरीदारी करने? आपके गांव के में ही है या दूर जाना पड़ता है? सिमरोल
1: सिमरोल में ही है, सिमरोल में ही सब उपलब्ध मिल जाता सामान।
0: जी जी सिमरोल में तो सब कुछ मिल जाता है।
1: हाँ आईआईटी है हमारे यहाँ पे।
0: जी बस सिमरोल में शनिवार रविवार की बात करें तो बहुत बड़ा जाम लग जाता है।
1: बहुत बड़ा जाम लगता है, अभी कांवड़ यात्रा वाले बहुत चल रहे हैं तो उसके कारण घाट में ज्यादा जाम लगता है।
0: जी जी जी तो आप लोगों को परेशानी भी होती होगी वहाँ? तो
1: सर जो आवाजाही के लिए थोड़ा परेशानी होती है, बाकी दूसरे तो कुछ।
0: जी जी लेकिन जब बड़ा रोड बन जाएगा तब आसानी हो जाएगी।
1: हाँ
0: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है तो सुनवा रहे हैं आपके पसंद का गाना।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8000 से 10000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
3: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
6: इसी के साथ MH हॉटलाइन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आपको बता दें, हमारे इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला भानु प्रकाश और दिग्विजय नीमे का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
7: कौन बोल रहे हैं
8: आप? थैंक यू।
7: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
8: रश्मि तिवारी।
7: रश्मि तिवारी जी कहाँ से बोल रही हैं?
8: सागर से।
7: सागर से?
8: हाँ।
7: अच्छा, आपने शायद पहली बार कॉल किया है रश्मि जी।
8: नहीं, हम तो कई देर किया कॉल।
7: अच्छा अच्छा, अभी कितने दिन बाद, एक हफ्ते बाद कॉल किया है या इसके पहले भी बात कर चुकी हैं?
8: 6-7 महीना।
7: अरे चलिए कोई बात नहीं। और कैसी हैं रश्मि जी?
8: ठीक है, मौसम है वो पानी गिर रहा, खुल जाता है, ठंडा मौसम है।
7: और गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
8: मुस्कान का।
7: मुस्कान का कौन सा गीत?
8: जाने मन छुपके छुपके।
7: जाने मन छुपके छुपके।
8: डेडिकेट आपको भी, रानू को भी और रानू के हस्बैंड को भी और आप और हमारा ने और नन्ने के लाने।
7: अरे वाह, क्या बात है भाई।
8: थैंक यू।
7: हाँ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं देख लूँ पहले मुस्कान फिल्म का गीत। हाँ, हमारे पास है तो मुस्कान का कौन सा? जाने मन चुपके चुपके।
8: हाँ,
7: चलिए ठीक है, तो ये गीत बिल्कुल आप सुनिएगा। और अभी क्या कर रही थी आप?
8: खाना बना के फिर बैठे।
7: अच्छा,
8: और कॉल ही करना है।
7: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने कॉल किया। और अब उम्मीद करते हैं कि आप बार बार कॉल करेंगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद। चलिए रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया। नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ
1: आकाशवाणी
0: जी
1: मध्य प्रदेश
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी। मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मुन्ना सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं।
1: एक थोड़ी सी आपसे हम शिकायत करते मैडम।
0: करिए।
1: पिछली बार जो है हमने फोन लगाया था
0: हाँ
1: 14 जून को,
0: अच्छा
1: उसके बाद फोन लगा 16 अगस्त को, मतलब परसों के दिन
0: हाँ
1: रिकॉर्डिंग भी हुई
0: हाँ
1: 10:45 पर अपनी
0: अच्छा।
1: समय सीमा पर।
0: हाँ
1: अगले दिन 17 अगस्त को प्रोग्राम प्रसारण भी हुआ,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग प्रोग्राम से काट दी गई।
0: अच्छा, चलिए इस बारे में हम पता करेंगे। बाकी ये हो सकता है कि आपके पहले जितने कॉलर्स रहे होंगे उनका प्रोग्राम बनाते बनाते ही समय पूरा हो गया होगा, ये संभावना होती है हम लोगों के साथ।
1: जी मैडम,
0: तो हम क्या कॉलर्स के एकाध कॉल एक्स्ट्रा में इसलिए ले लेते हैं कि कभी कम ना पड़ जाए समय। तो गाने वाने जब ऐड करते हैं सब, तो वो टोटल हमारा टाइम 58 मिनट्स का होता है, बल्कि फिफ्टी
1: जी
0: सेवन मिनट 30 सेकेंड का। तो उस बीच में है ना, फिर एकाध श्रोता का कॉल कट ही जाता है। तो वो हम लोगों की मजबूरी है, उसे आप प्लीज समझिए और किसी से भी नाराज मत होइए।
1: जी मैडम
0: है
1: जी
0: ना, आज का कॉल आपका दूसरे नंबर पे ही है, तो ये गारंटी है कि कल आपका कॉल प्रोग्राम में जरूर आएगा।
1: जी
0: है ना, लास्ट लास्ट के जो एक दो कॉलर्स हैं उनके साथ ये समस्या आए दिन हो जाती है, और इसी वजह से होती है कि समय सीमा का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है।
1: का गीत सुनना है मैडम। फिल्म
0: हाँ जी बताइए।
1: का नाम है उसने कहा था।
0: उसने कहा था।
1: उसने कहा था, और गाने के बोल हैं, आहा रिमझिम की फुहारे सावन गीत के लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत के लिए।
0: हाँ बिल्कुल सही है, ये गीत तो मिल गया हमको, और कल के प्रोग्राम में आप अपनी सारी बातें और गीत जरूर सुनेंगे, और खुश रहिएगा, मस्त रहिए,
1: जी मैडम,
0: और बिल्कुल तनाव
1: धन्यवाद
0: मत
1: धन्यवाद
0: पालिए।
1: मैडम जी।
0: किसी की भी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे सब श्रोता हमें बहुत प्रिय हैं। सिर्फ लास्ट के कॉलर्स जो भी रहेंगे, तो वह मजबूरी है कि कभी कभी उनका कॉल्स कट सकता है। ठीक है
1: जी
0: जी, नमस्ते मुन्ना जी।
1: धन्यवाद मैडम।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी, नमस्ते।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। बहुत
0: जी, कैसे हैं?
1: अच्छा हूँ, और आपसे बात करके मुझे और भी अच्छा लग रहा है।

0: बताइए आप कैसे हो।
1: हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे बातचीत करके सच में हमें लग रहा है कि हमारे इतने नए नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं।
0: जी, बिल्कुल। मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम आने की वजह से है ना,
1: हाँ
0: हमें हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाता है स्पष्ट प्रसारण के साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है।
0: जी
1: और सुनाइए प्रेम सिंह जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: जी आपको बताऊं, गीत सुनने से पहले, मौसम काफी अच्छा है हमारे यहाँ पर अभी, और आज सुबह अच्छी बारिश हुई आधे घंटे से।
1: अच्छा,
0: और उज्जैन महाकालेश्वर के लिए बहुत दूर दूर से मतलब दर्शन करने के लिए एक लोग आ रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सही बात है। और आप तो वाकई बहुत अच्छी नगरी में, महाकाल की नगरी में रह रहे हैं,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल,
1: भक्ति
0: हम
1: से
0: तो थोड़ा
1: ओतप्रोत हो
0: सा नगरी
1: रखे
0: में आए,
1: होंगे।
0: और हम तो यही चाहेंगे कि बाबा की कृपा सभी पूरे भारतवर्ष पे बनी रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बनी रहेगी।
0: जी तो साथ में महाकालेश्वर के मंदिर के ही साथ में एक नागचंद्रेश्वर मंदिर भी है,
1: हाँ जी।
0: उसके बारे में बताना चाहूंगा। हर मतलब नाग पंचमी के दिन यहाँ पर द्वार खोले जाते हैं एक साल में एक बार,
1: जी
0: और
1: जी
0: ऐसा मान्यता है कि वहाँ शिवम नाग देवता दर्शन देते हैं।
1: हाँ जी
0: जी, और एक दीपक जलता हुआ मतलब आज छोड़ते हैं ना
1: हाँ
0: तो अगली
1: हाँ
0: नाग पंचमी तक ऐसे ही वह दीपक जलता रहता है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी, और आप हमारे बाकी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सुनकर। गीत बताइए प्रेम सिंह जी, और एक और रिक्वेस्ट करेंगे, एक हफ्ते के पहले आपका कॉल तो नहीं लगा ना?
0: नहीं लगा है जी।
1: चलिए तो ठीक है, गीत बताइए।
0: फिल्म का नाम है दूध का कर्ज, और गाने के बोले
1: हाँ
0: मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मैं तो बीन बजाऊंगा।
1: अच्छा, तो आपने ये नाग पंचमी के ऊपर ही लिया है
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: ना?
0: ये
1: चलिए
0: गाना मतलब समझिए कि नाग पंचमी के उपलक्ष्य में ही मैं सुनना चाहता हूँ।
1: हाँ, चलिए बिल्कुल जरूर सुनवाएंगे हम आपको आपकी पसंद का गीत, कल के प्रोग्राम में
0: और
1: सुनिएगा।
0: जी बिल्कुल, और एक बात है, अमिता त्रिवेदी जी मिले तो हमें हमारा नमस्ते बोलिएगा उन्हें।
1: बिल्कुल, वो है ना, सुन रही होंगी आपका प्रोग्राम, मुझे ऐसी उम्मीद है, और खुश होंगी कि है ना हमें अभी भी लोग याद करते हैं।
0: जी, और अमिता त्रिवेदी जी और राजेश भट्ट से मेरी काफी पहले बातें होती थी।
1: जी जी जी
0: वो एक प्रोग्राम पेश करते थे एड्स के बारे में,
1: हाँ,
0: उसमें मैंने काफी पार्टिसिपेट किया, पत्र द्वारा वो कार्यक्रम चलता था ना,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: उसमें मतलब एक कहानी सुनाई जाती थी और फिर एक विनर को भी घोषित किया जाता था,
1: जी
0: तो उसका सवाल मैंने कई बार सही दिया और मैं कई बार विनर बना वहां पर।
1: बिल्कुल, तो आप तक उनकी आवाज, आपकी याद जरूर पहुंचेगी, और उन दोनों की तरफ से शुक्रिया। ठीक
0: जी
1: है
0: धन्यवाद।
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी मैडम।
1: नमस्ते जी। कैसी
0: और
1: हैं?
0: आप? ठीक हूँ मैं। और आप कैसे हैं?
1: हम बढ़िया हैं। अपना शुभ नाम
0: अच्छा,
1: बताइए। अच्छा
0: राधा, मेरा नाम गुना से बोल रही हूँ।
1: जी।
0: तो
1: और
0: कबीरा
1: मौसम
0: प्यार का है ना, जाने मन जाने मन, है
1: किस फिल्म
0: ना,
1: का?
0: आपके लिए, आपके श्रोताओं के लिए और नंदिनी रानू के लिए, कहो
1: अच्छा, कौन सी फिल्म का गीत?
0: ना प्यार का।
1: अच्छा, कहो ना प्यार। बिल्कुल, तो ये गीत हम जरूर सुनवाएंगे आपको, राधा जी।
0: थैंक यू। ठीक
1: और कैसी हैं?
0: हूँ, हाउस वाइफ हूँ और क्या है।
1: कोई बात नहीं, हाउसवाइफ होना बहुत बड़ी बात होती है।
0: हाँ,
1: सारे घर की, सारे लोगों की जिम्मेदारी एक ही कंधे
0: जिम्मेदारी
1: पर
0: सही है,
1: उठाना आसान काम नहीं है
0: आसान तो सही है, आप सही
1: ना
0: बोलती हैं।
1: जी। चलिए राधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए
0: थैंक यू।
1: जी।
0: आप भी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: जी। नमस्ते नमस्ते। हमारी कौन सी प्यारी दीदी जी से बात हो रही? अच्छा
0: कविता दीदी से बात हो रही है आपकी?
1: अच्छा कविता दीदी जी, तो और क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया है। और आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी
0: कहाँ से बोल रहे हैं? अपना शुभ नाम बताइए।
1: जी। मैं पंडित राम जीगर खैर मजिया जिला रीवा मध्य प्रदेश से दीदी बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: खैर मजियार जिला रीवा मध्य प्रदेश
0: अच्छा,
1: से।
0: जीवा से।
1: जी
0: जी,
1: जी जी जी जी
0: और क्या हाल है आपके?
1: और हाल चाल बढ़िया ही। समय वर्षा भी बड़ी हमारे रीवा मध्य प्रदेश में हो रही है लगभग लगभग।
0: रुक रुक के
1: जी
0: हो
1: जी
0: रही है ना, एकदम थोड़ी
1: हाँ
0: रिमझिम
1: एकदम
0: फुहारे।
1: एकदम रिम झिम थोड़ा थोड़ा लगी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी बारिश की सख्त जरूरत भी थी हम लोगों को। चलिए, कौन सा
1: चलिए
0: गीत?
1: बढ़िया। अच्छा पुरुषोत्तम सर जी अभी हैं सेवा में ड्यूटी में
0: जी
1: दीदी
0: जी
1: की?
0: अभी हैं ड्यूटी पे, लेकिन वो शिफ्ट ड्यूटी या विविध भारती में भी लगती रहती है ना, इस वजह से अभी आपसे
1: अच्छा
0: शायद
1: अच्छा अच्छा
0: बातचीत नहीं हो
1: अलाउंसा
0: पाई
1: के पद
0: होगी।
1: पर कम जमाते हैं। जी जी
0: जी
1: अमिता दीदी तो रिटायर हो गई हैं।
0: जी जी वो रिटायर्ड हो गई
1: जी
0: हैं।
1: जी जी जी जी
0: कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी अभी हाल ही में मैं नाग पंचमी मनाया हूँ दीदी, तो उसी के तारतम्य में नागिन फिल्म का गाना मैं सुनना चाह रहा हूँ। तेरा
0: नागिन?
1: तंडोले मेरा मंडोले ऐसा कुछ है। और उसके साथ साथ मैं अपने सभी सुनने वाले भाइयों एवं बहनों से निवेदन करता हूँ कि वो क्या है कि जीव जंतु को एक तरह तो पूजा करते हैं और एक तरह फिर उनको लाठी डंडे से मार देते हैं।
0: हाँ, ये होता है,
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी
0: सही कह रहे हैं। तो ऐसा ना हो, रक्षा
1: जी
0: करें
1: जी
0: उनकी हम, ये बहुत जरूरी है।
1: क्योंकि जो जीव जंतु लुप्त तो हुए जा रहे हैं तो उनको तो देखने के लिए हमारा जी एकदम ललचाता रहता है, मन करता रहता है। और जो हमारे सामने नजर के सामने देखने सुनने को मिलते हैं तो उनको लोग खत्म कर देते हैं, मार देते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: कृपया ऐसा ना करें।
0: बिल्कुल, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका ये मैसेज बाकी श्रोताओं तक भी पहुंचेगा।
1: जी
0: धन्यवाद
1: जी
0: राम
1: जी
0: जी।
1: जी
0: जी
1: ठीक
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी।
1: मैं कृष्णपाल परमार, 6 महीना सोनकच्छ तहसील देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: कृष्णपाल परमार जी
1: जी मैम,
0: कहाँ से?
1: 6 महीना गाँव है,
0: छैनमिना।
1: 6 महीना सोनकच्छ तहसील में
0: अच्छा जी
1: लगता है मैम।
0: जी जी जी सोनकच्छ से
1: जी
0: जी। और 1 हफ्ते के बाद ही कॉल किया है आपने।
1: मैम, कम से कम 1.5 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने
0: चलो
1: समय
0: कोई बात नहीं है ना।
1: ही नहीं मिल पाया फोन लगाने का। कार्यक्रम जरूर सुनते हैं आपका।
0: चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो, आपका कॉल शामिल भी हो सकेगा हमारे कार्यक्रम में।
1: जी
0: और
1: मैम,
0: बताइए कृष्णपाल जी कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: बढ़िया है मैम। मौसम क्या है कि पानी गिर नहीं रहा है सही साठ,
0: हाँ
1: ऐसे बूंदाबांदी हो रही है और ठंडा मौसम बना हुआ है।
0: चलिए गर्मी से निजात मिली।
1: जी, पर लेकिन पानी की जरूरत ज्यादा है मैम,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा गीत
1: क्योंकि आधी
0: बताइए।
1: बारिश निकल चुकी है। अब अगर नहीं गिरेगा तो पानी कब गिरेगा फिर?
0: गीत कौन सा सुनना चाहेंगे कृष्णपाल जी?
1: हीरा पन्ना पिक्चर का गाना है मैम।
0: हीरा पन्ना का।
1: हाँ, पन्ना की तमन्ना है कि मुझे हीरा मिल गया।
0: अच्छा, बहुत प्यारा गीत है ये, और उम्मीद
1: जी
0: करते हैं कि मिल भी जाएगा ये। बिल्कुल मिल भी गया है मुझे,
1: ठीक है मैम,
0: है ना?
1: मिल
0: तो
1: गया,
0: ये
1: सुना
0: गीत।
1: दीजिए।
0: हाँ जी धन्यवाद कॉल करने के लिए
1: ठीक है मैम।
0: जी।

0: हेलो
1: परम आदरणीय दीदी शारदा सप्रीम प्यार है नमस्कार।
0: जी, बहुत बहुत आभार, आपको भी नमस्कार।
1: दीदी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं, मौसम कैसा भोपाल का?
0: मौसम बहुत अच्छा है। और शारदा जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपने 3-4 दिन पहले अपनी बात हुई थी क्या?
1: नहीं दीदी मेरी बातचीत हुई थी 10 दिन पहले,
0: चलिए, शायद
1: मतलब
0: मुझसे ही हुई थी। और
1: कि
0: हाँ
1: 10 दिन पहले मतलब

0: छह या सात तारीख को हुई थी।
1: चलिए कोई नहीं। और बताइए शारदा जी, आप कैसे हैं?
0: मैं तो दीदी बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद से रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, आप लोगों से वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता है, बहुत ही सुखद अनुभूत होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सावन की घटा।
1: सावन की घटा।
0: जी अभी उमड़ घुमड़ के बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, सावन का महीना है, और कभी कभी रिमझिम बारिश होती है, कभी टिप टिप बारिश होती है, कभी झमाझम बारिश हो जाती है, और ऐसे में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत फिल्म सावन की घटा से रफी साहब ने गीत को गाया है।
1: कौन सा गीत बताइए रफी साहब का गाया हुआ?
0: चेहरे से जरा
1: जुल्फों को हटाओ।
0: हटा ले घूम जुल्फों, चेहरे से जरा हटा ले जुल्फों को, थोड़ा सा
1: बिल्कुल
0: उजाला होने दे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। ये गीत आप जरूर सुनेंगे कल के प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी कॉल करने के लिए।
0: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन
1: जी
0: मंगलमय हो, सादर
1: जी
0: नमस्कार।
1: सादर नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेगी सुने जी
0: जी। हाँ, फोन करेंगी सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: मैडम। मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बुगला से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी, पूरन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और
1: जी
0: क्या
1: मेरा
0: हाल
1: नाम
0: है
1: कविता
0: आपके?
1: मैडम बोल रही है शायद।
0: जी हाँ, मैं कविता बोल रही हूँ। धन्यवाद आवाज़ से पहचानने के लिए।
1: जी मैडम, काफी दिनों के बाद बात हो रही है। कैसे हो मैडम आप?
0: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: जी मैडम मैं तो बढ़िया हूँ। बहुत देर से ट्राई कर रहा था, बहुत बिजी आने लग गया आजकल। तो
0: और जयपुर में मौसम कैसा है पूरन जी?
1: जयपुर में अच्छा मौसम है मैडम। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, ठंड है, हवा चल रही है, पर यह है कि बारिश का इंतजार है मैडम अभी।
0: हाँ, अभी बारिश की पूर्ति पूरी नहीं हुई है ना?
1: हाँ जी, हाँ ठीक है, हुई है एक बार, हुई थी तो 2-3 दिन पहले, पर कम हुई मैडम। तो अगर आ जाए ना तो, क्योंकि अब बाजरा की फसल लगाई है खेतों में, उसके लिए पानी चाहिए मैडम।
0: और जयपुर
1: आपको
0: शहर
1: उधर?
0: तो बहुत ही खूबसूरत है ना पूरन जी?
1: हाँ जी मैडम, हाँ जी।
0: बिल्कुल।
1: आपको उधर कैसा हो रहा है मौसम?
0: हमारे अभी रिमझिम फुहारे हैं एकदम। बहुत लग के बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी सी हो गई है कंपैरेटिवली।
1: जी मैडम,
0: गीत बताइए, कौन से गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम मैं आज सुनूंगा, फिल्म का नाम है पाप की दुनिया। मिल जाएगी आपके पास?
0: मैं कोशिश करती हूँ, अगर मिल गई तो बहुत ही अच्छा है।
1: और उसमें गाने जो बोलते हैं, तू मेरा दिल का तोता, मैं दिल तेरे दिल की मैना,
0: जी, मिल
1: खुले
0: गया।
1: आसमान में उड़ते, ऐसा कुछ गाना है, अगर ये
0: हाँ
1: मिल जाए
0: हाँ
1: तो।
0: मिल गया ये गीत
1: जी
0: तो पक्का। आपका ये कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत सुन सकेंगे, ठीक है पूरन जी?
1: जी मैडम, मिल तो गया ना गीत, नहीं तो
0: हाँ
1: वैसे
0: हाँ
1: कई
0: मिल
1: बार।
0: गया मिल गया, किशोर कुमार का गाया हुआ मैं तेरा
1: तो नहीं
0: तोता।
1: मैडम, ये अनुराधा पोतवाल की आवाज थी शायद इसमें।
0: अनुराधा पौडवाल की आवाज़ तो नहीं है, एस जानकी की आवाज़ है किशोर कुमार जी के साथ में।
1: उस गाने के बोलते, मैं तेरे दिल की मैना होती, तू मेरे दिल का तोता, ऐसा कुछ गाना था।
0: हाँ, यही गीत है मैं तेरा तोता, पाप की दुनिया फिल्म का ये मिल चुका है, और यही है ये। इसके अलावा कोई और पाप की दुनिया मूवी तो नहीं है हमारे पास, यही है जो किशोर कुमार की आवाज़ में है और एस जानकी है साथ में। अनजान का गीत है और बप्पी लहरी का संगीत।
1: चलो ठीक है मैडम, ये सुना दीजिए, सुन के पता लगेगा
0: जी
1: फिर अगली बार।
0: बिल्कुल
1: थैंक
0: बिल्कुल, हाँ जी ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए
1: यू मैडम।
0: जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते, स्वागत है हमारा,
1: जी
0: फोन
1: जी
0: करिए।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे दीदी मनोज नामदेव।
0: मनोज जी, क्या हाल है आपके?
1: बस दीदी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से बढ़िया है। दीदी सब पर काम कर रहे थे और काम करते करते अचानक आपकी याद आ गई दीदी।
0: अरे वाह भाई, अचानक याद मत किया करो।
1: आप
0: टाइम से
1: नहीं,
0: याद किया करो
1: आपको
0: आप,
1: तो
0: कि हमारा फोन
1: हमेशा
0: इन
1: याद
0: प्रोग्राम जब
1: करते हैं
0: रिकॉर्ड हो
1: दीदी,
0: रहा हो।
1: आपको तो प्रतिदिन याद करते हैं, लेकिन फोन करें जिस समय की अचानक में याद आई कि आज तो मंगलवार है,
0: बहुत
1: आपने
0: सही
1: तो
0: टाइम
1: फोन ही
0: पर
1: करना
0: आपने
1: है।
0: कॉल किया है।
1: जी
0: तो
1: दीदी बिल्कुल।
0: बताइए मनोज जी, कौन सा गीत सुनने का मन है आज?
1: हाँ दीदी आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा चम्बल की कसम,
0: ओहो, चंबल
1: और
0: की
1: उस
0: कसम।
1: जी उसमें गाना है मेरे भैया से कहना बहना याद करे, रक्षाबंधन पर्व
0: बिल्कुल सही कह रहे
1: पर
0: हैं।
1: उपलब्ध कर है दीदी।
0: हाँ, चंदा रे मेरे भैया से कहना।
1: चंदा रे नहीं है दीदी, मेरे भैया से कहना बहना याद करे, ये है गाने की बोल।
0: लेकिन इसकी जो शुरुआत है ना, वो यही है, चंदा रे
1: चलो ठीक है
0: मेरे
1: तो
0: भैया
1: चलेगा
0: से
1: चलेगा,
0: कहना,
1: चलो चलो दीदी ये चलेगा
0: क्योंकि
1: दीदी।
0: मेरे सामने ही है वो गीत,
1: हाँ तो बिल्कुल दीदी
0: है ना?
1: चलेगा,
0: बिल्कुल, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा गाना
1: बिल्कुल
0: है
1: दीदी
0: ना? चलिए ठीक है मनोज जी, बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: दीदी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपके कार्यक्रम पेश हो रहे हैं
0: जी
1: और फोन के गीत सुने हैं, सभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छे सभी कार्यक्रम लग रहे हैं, तो
0: जी
1: मेरी ओर से सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
0: जी जी धन्यवाद।

0: इसके साथ ही अनुमति दीजिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं। वे वहां चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगी। आईएसएमआर की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 1,25,13,000 से अधिक की राशि का अंतरण किया जाएगा। लाड़ली बहनों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1500 रुपए की राशि के अलावा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के संदर्भ में संचालित गतिविधियों और इसके लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जाए। और मौसम विभाग ने

आज प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना, नरसिंहपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं रायसेन, सागर, जबलपुर, रीवा और छतरपुर सहित एक दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। आगाज करते हैं प्रोग्राम का और सबसे पहले सुनवाते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव की, और अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से ही ये हमारे श्रोता है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। इसी गीत को पसंद किया है ग्राम खकल, तहसील कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और समस्त परिवार, और आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये हमारे श्रोता है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव, साइना शर्मा और निवान शर्मा। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर अनपढ़ फिल्म का गीत।

श्रोताओं, राखी का त्यौहार सामने आ रहा है और हमारे सभी श्रोता लगभग राखी से संबंधित गीतों की फरमाइश कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत फरमाइश थी ये, दिल को मन को छू गई और भावुक कर गई है। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक नज़र फिल्म का गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को पसंद किया है धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल और अनुत डेरे। और घंटाघर चौक खंडवा से ये पत्र हमें मिला है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमंती पंचोलिया का। और इसी गीत को पसंद किया है हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, J.S. नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। तो सुनते हैं ये एक और खूबसूरत सी नज़्म।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम शामिल कर रहे हैं उसे पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़ कर राही श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता अर्जुन गवाड़कर टुक टुक और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी ने। और ये खत मिला है छत्तीसगढ़ दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू का। हमारे ये सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अनवर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, जिसे हमने लिया है जनता हवलदार फिल्म से।

कार्यक्रम में अब जो गीत हम शामिल करने जा रहे हैं वो भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ही है, लेकिन फिल्म का नाम है आप आए बहार आई। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मास्टर मनीष और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और स्वीटी बेबी प्रियांशी का। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

और कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा गीत। संगम फिल्म के लिए इसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और इस गीत को पसंद किया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिधिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुस्ताफा खान पुत्री, अफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई, गांधी भाई अकोला से गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इस गीत को सुनना चाहा है। कवाई बारो राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने।

0: हाय सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
2: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12:00 तक।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: ये धरती ये नदिया ये रैना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं।
2: और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: नींद कहाँ से आएगी जमुनिया?
1: कुछ सोचो मत, आंख मूंदो, नींद आ ही जाएगी।
0: हम जैसे लोग क्या सोच सकते हैं, बस छटपटा सकते हैं, सो छटपटा रहे हैं।
1: क्यों जी, ऐसा काहे कह रहे हो? हाँ,
0: और नहीं तो क्या? अरे हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, तो भी ठीक से पेट भी नहीं भर पा रहे हैं सबका।
1: अरे एक आदमी कमाएगा तो सात सात आदमी का पेट कैसे भरेगा? हम अपने भाई को समझाओ कि वो भी कुछ काम धाम किया करे। यूं ही खाना गुजराना और दिन भर आवारा गर्दी, यही तो एक काम रह गया है उसका।
0: अपने आप एक दिन उसको लगेगा कि कुछ करना चाहिए, तो करेगा ही। तुम कुछ मत कहना, नहीं तो और ढीठ हो जाएगा।
1: ठीक है बाबा, कुछ नहीं बोलूंगी मैं, बस आप सो जाइए। कल सरकारी दफ्तर जाना है, बंजर जमीन का पट्टा होगा, हमें भी कुछ जमीन मिलेगी, आपन जमीन होगी, मेहनत करेंगे, सबका पेट भरेगा। सरकार हमारे बारे में सोच तो रही है ना?
0: सरकार तो सोचती ही रहती है, पर दीवान जैसे लोग बीच में ही भांजी मार देते हैं। हमें तो कुछ मिलता ही नहीं।
1: अच्छा, सोचो, अच्छा होगा, हमें भी मिलेगा।
0: ठीक है भाई, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो।

0: देखो जी, हमारे भगवान तो तुम ही हो। दुखी मत हो, हाँ, बस आराम करो।
1: अरे वाह, बड़ी सयानी हो गई हो जमुनिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से सीख ली?
0: बबुआ पानी मांग रहा है, देकर आती हूँ। हाँ आई। अब सो जा बेटा।
2: ठीक है माई, सो जाऊंगा। कुछ खाने को है क्या माई?
0: अभी तो खा के सोया था ना, अब सवेरे खाना। बार बार खाने से पेट खराब होता है।
2: ठीक है माई।
1: एक लिट्टी रखी तो है उसमें, उसी में से एक टुकड़ा खिला दो उसे।
0: अरे वही एक लिट्टी तो तुम्हारे कल दिन भर का सहारा है। उसको खिला दिया तो तुम्हें सवेरे क्या परोसूंगी? क्यों जी, हंसे काहे? ऐसा क्या कह दिया हमने?
1: लिट्टी परोसने पर हंसी आ गई। और लिट्टी भी क्या परोसने की चीज है?
0: क्यों, लिट्टी की कोई इज्जत नहीं है का?
1: अरे बहुत इज्जत है, पर ये भकोसने की चीज है, परोसने की नहीं। समझी?
0: समझ गई, अच्छे से समझ गई। अब आराम करो और सो जाओ।

0: अरे करण, कितनी पिएगा तू यार, पहले ही बहुत पीली है।
1: तू मेरे पीने का हिसाब कर रहा है क्या? है? मेरा भाई रतन तो कुछ कहता नहीं है जो मुझको खिलाता है, तू कौन होता है हिसाब करने वाला है?
0: अरे यार, मैं तो कोई नहीं होता भैया, पर रतन भाई का तो ख्याल करो यार, रात भी काफी हो चुकी है, घर चलो यार।
1: यार कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि कमाएं खिलाएं और दुनिया की वाहवाही लूटें और कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो मौज करे मस्त रहे, कहो किसी के ये
2: वाह वाह वाह भाई वाह वाह, पीने के बाद तो कैसा हो जाता है भाई।
1: चुप, किससे हो जाता हूँ, रहता तो मैं एक सही हूँ, पीने के बाद बस बोल देता हूँ।
2: तेरे तो मुंह लगना गलती है।
1: अबे तो क्यों लगते हो मेरे मुंह है? ला भाई एक गिलास और पिला, खिलाता बहुत है भाई।
3: अरे ये रहा करण, मैं ना कहता था कि ये इसी अड्डे पर मिलेगा।
4: तू ठीक कहता था। ए करण, तुझे दीवान जी ने याद किया है। चलो
1: अरे अरे चल, चलता हूँ भाई चलता हूँ, ये गिलास तो गटक लेने दो भाई।
3: अरे अब जल्दी से गटक और चल उठ, वरना तो
1: वरना क्या मारोगे,
3: चलो
1: मारो, चल मारो, मारो, मारो।

0: मजाल बहस करता है।
1: हमारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो।
0: अरे चुप चुप छोड़ छोड़ बात नहीं बात नहीं।
2: अरे तो चल रहा हूँ भाई, कौन तुम्हारा मुंह लगा यार, दीवान के आदमी हो तुम्हें क्यों कह डर। ए
3: ओ भैया जी पैसे पैसे।
2: अरे लिख लेना पैसे पैसे लगा हुआ है, देख नहीं रहा दीवान ने बुलाया है।
3: आओ तो देख रहा है भैया, पैसे तो दे जाओ।
2: लिख लो
3: भैया, इसके पैसे
2: चल,
3: लिख ले।
0: चल चल चल
2: अरे चल भैया सराफत से तो चलो चल चल चल।
4: लो मालिक करण को ले आए हम।
5: ना कर रहा था, धमका कर ले आए।
2: मैंने कब ना की। अरे तुमने कहा दीवान जी ने याद किया है तो मैं तुरंत उठकर चल दिया, दारू का पैसा भी नहीं दिया जल्दी के मारे।
6: ठीक है ठीक है, अच्छा तुम लोग जाओ और इस करण को यहीं छोड़ जाओ।
4: ठीक है मालिक।
6: उधार की कितनी दारू पी चुका है तू करण?
2: अब आपसे झूठ तो बोलेंगे नहीं सरकार, 2-2.5 हजार तो हो गए होंगे।
6: 2-2.5 हजार की उधारी। एक बात पता, इतनी उधारी चुकाएगा कैसे? तू तो कुछ करता धरता नहीं और तेरे भाई रतन की कमाई वो तुम सबका पेट भरने के लिए कम पड़ती है। सुन, तू हमारे साथ मिल जा। हाँ, अरे हमारा काम कर, हम तेरा कर्जा भी चुका देंगे और ऊपर से अंग्रेजी दारू का इंतजाम भी कर देंगे।
2: ये तो मेरे बड़े नसीब की बात होगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा?
6: ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। अच्छा सुन सुन करण सुन, मुझे लगता है तू अभी नींद में है और नशे में भी, और तेरे चेहरे से लग रहा है तू बहुत भूखा भी है।
2: आप सही पहचाने मालिक, मैं कल सवेरे आ जाऊंगा।
6: अरे कहाँ जाएगा इतनी रात को। सुन, मैं तेरे लिए यहीं खाना मंगवा देता हूँ ना। हाँ, खाकर यहीं सो जा और फिर सवेरे आराम से काम की बातें करेंगे।
2: अरे सरकार, भैया भाभी राह देख रहे होंगे।
6: कोई किसी की राह नहीं देखता करण, छाओगे जगाओगे तो मैं कोस कर दरवाजा भी खोल देंगे बेचारे। ना खुद परेशान हो ना उन्हें परेशान कर, खाना खाकर यहीं आराम से सो जा। सवेरे बात होंगी बाकी की।
2: ठीक है मालिक, जैसा हुकुम आपका।
6: शाबाश, बहुत बढ़िया।
4: अरे बकुल ये है
7: जी मालिक।
6: सुनो, इस करण को ले जाओ और आराम से खाना खिलाओ, और हाँ बाद में यहीं 12 दरी में सुला दो इसे।
4: जो हुकुम मालिक।
6: ले जाओ।
4: चल
2: चल चल रहा हूँ। अरे यार धीरे धीरे,
6: प्यार से ले जाओ
4: जी मालिक,
6: आराम
4: जी मालिक,
6: अपना मेहमान है, मेहमान है अपना।

0: जमुनिया, अरे ओ जमुनिया
1: जी?
0: अरे कहाँ हो भाई, बच्चे अभी उठे नहीं हैं क्या?
1: अरे वो तो उठ गए और गुड़ चना खाकर जंगल को भी चले गए हैं लकड़ियां बीनने।
0: तो ला भाई, अब मेरा भी कलेवा परोस दे। अरे आज वो शहर जाना है, हमें जमीन मिलनी है ना।
1: ये रहा आपका कलेव।
0: अरे वो करण कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वो?
1: अरे वो तो रात आया ही नहीं, क्या पता कहाँ गया होगा, और नहीं तो दारू के अड्डे पे पड़ा होगा। मैंने तो उसकी चोरू से भी कहा कि उसे समझाए, पर वो किसी की सुनता कहाँ है।
0: अरे तू छोड़, समझ जाएगा तो सबकी सुनेगा। बस मैं चलता हूँ अब।
1: अरे आईना तो देखते जाओ, आज सोमवार है, शुभ रहता है। और सुनो, तुम बुरा ना मानो तो मैं भी साथ चलूं।
0: ठीक है भाई, तू भी चल। एक से भले दो, और ला वो तेरा आईना भी देख लूं। अब उसमें देखना तो मुझे ही है ना, कितना शुभ होगा पता नहीं।
2: अरे सुना
3: जी मालिक,
2: देखो वो करण जागा कि नहीं।
3: अरे नहीं मालिक, वो तो घोड़े बेचकर सो रहा है।
4: हाँ मालिक,
2: घोड़े बेचकर सो रहा। घोड़े बेचकर सो रहा। अरे उसके पास गधा तो है नहीं बेचने को, और घोड़े बेचकर सो रहा। जाओ जगाओ उसे और बोलो कि हमने बुलाया है।
3: जी मालिक।
2: जाओ तुरंत।
4: जी मालिक जी।
5: करण
6: जी
5: चल उठ।
4: हाँ हाँ उठ जा, उठ जा।
5: चल मालिक ने बुलाया।
4: चल चल जल्दी चल।
5: मालिक ले आया है करण।
7: प्रणाम मालिक।
2: प्रणाम प्रणाम करण भैया प्रणाम। नींद अच्छे से आई ना?
7: अरे मालिक पता ही नहीं लगा, बड़ी अच्छी नींद आई।
2: शाबाश भाई, हमने तो रात को ही तुमसे कहा था कि घर मत जाओ, घर वालों को परेशान मत करो भैया, सब तुम्हारे लिए सुविधाएं हैं, खाओ पियो आराम से सो। ठीक है ना?
7: हाँ जी।
2: सुनो करण
7: जी,
2: अब बात ये है कि वो आज भूमिहीनों को
7: हाँ।
2: ग्राम समाज की बंजर जमीन बांटी जानी है।
7: अच्छा, मुझे नहीं मालूम मालिक।
2: हाँ?
7: हाँ।
2: तुम्हें नहीं मालूम?
7: ना मालिक।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ करण भैया, तुम तो भैया निरे भोले हो। हाँ। अच्छा तुम्हारे भैया रतन ने ये बात नहीं बताई तुम्हें?
7: जी नहीं मालिक, भगवान कसम नहीं बताई।
2: हैं?
7: हाँ।
2: हो, चलो चलो कुछ कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो करण भैया,
7: हाँ।
2: तुम हमारे साथ चलो आज। हाँ
7: आओ मालिक।
2: हाँ वहाँ खुद देख लेना कि कैसे क्या होता है।
7: क्या होगा मालिक वहाँ?
2: अरे करण भैया होगा क्या, वो ग्राम समाज की जमीन का पट्टा बटेगा ना।
7: अच्छा,
2: तो तुम्हारे भाई को जमीन मिलेगी।
7: और मुझे?
2: हैं? तुम्हें काहे को मिलेगी? अरे ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रहे हो भैया, एक ही परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगी ना जमीन। हैं? नहीं आई समझ में? अरे खाम खाम परेशान हो रहा है। अरे भाई जाओ ले जाओ इसे, समझाओ भाई क्या नियम कायदा है, जाओ।
4: आया मालिक।
2: हाँ
4: आया, आया। चलो करण भैया।
7: हाँ।
4: हम तुम्हें समझाते हैं।
7: हाँ।
2: सुनो सुनो।
7: हाँ।
4: जी मालिक।
2: भाई हमारे शहर जाने का इंतजाम तो करो।
4: आप भी जाएंगे मालिक?
2: जाना तो पड़ेगा भैया, कम से कम वो जमीन तो बचानी पड़ेगी। जो ग्राम समाज की है और हम उसे जोत बो रहे हैं। अरे अगर पटे भी तो उन्हें जो हमारे पास काम कर रहे हैं।

0: समझे?
1: जी मालिक।
0: अरे ये नया वीडियो किसी की सुनता ही नहीं ससुर, वरना हमारे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
2: ट्रैक्टर तैयार करवा देते हैं, उसी से जाएंगे ना मालिक।
0: हाँ और सुनो, थोड़ा जल्दी तैयार करवा देना।
1: जी मालिक, जी मालिक, जैसी आज्ञा।

0: ट्रैक्टर में बैठने का आनंद ले रहे हो?
1: बहुत मजा आ रहा हूँ मालिक।
0: लग रहा आप पहली बार बैठे हो ट्रैक्टर पे।
1: आओ मालिक।
0: अरे हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही आनंद में रहोगे।
1: आओ मालिक।
0: पर चिंता में दिख रहे हो भैया तुम।
1: हैं?
0: सुन हमारी बात सुन लो।
1: हाँ।
0: ऐसा है जमीन तुम्हें मिलने से रही। हाँ वो बात यह है, मिलेगी तो रतन को ही। वैसे भी भैया वही कमाता खिलाता है तुम लोगों को।
1: हाँ सो तो है,
0: ये गांव के सब लोग जानते हैं ना भैया।
1: आओ मालिक।
0: हाँ अरे तुम्हें तो पहले भी कुछ ना करना था और ना तुमने कुछ किया है कि नहीं। अब भी कुछ करने की जरूरत है नहीं। हाँ
1: मैं अब भी कुछ समझ नहीं पाया मालिक।
0: नहीं समझे तुम
1: ना।
0: चलो तो तफसील से समझाते हैं तुम्हें, ध्यान से सुनना।
1: आओ मालिक।
0: अब ये जमीन जिसे मिलेगी उनके पास पहले से जमीन तो होगी नहीं, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ और जो जमीन मिलेगी वो होगी बंजर ऊसर, जिसमें खेती करना मुश्किल होगा, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ अब उसे समतल करवा के खरपतवार पत्थर निकलवा कर जोतने बोने लायक बनाना होगा, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ और फिर उसके ऊपर से बीज, पानी, जुताई, गुड़ाई सब लगेगा, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ इन सब के लिए पैसा हम देंगे। सभी पट्टेदारों में ये बात तुम फैलाओगे।
1: फैला देंगे मालिक।
0: हाँ और वो लोग तुम्हें बताएंगे कि इस काम के लिए तो बैंक भी कर्ज देते हैं।
1: हाँ वो तो देते हैं।
0: तो हम बैंक से कम ब्याज पर पैसा देंगे।
1: हाँ मालिक।
0: और तुम कुछ खास लोगों को कहोगे तो बिना ब्याज के भी पैसा दे देंगे।
1: हैं?
0: हाँ अरे भैया हमें तो तुम सबका भला करना है ना।
1: ये पक्की बात बोली मालिक आपने।
0: है कि नहीं
1: मालिक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का पहला भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं। वे वहां चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक ISSMR में हिस्सा लेंगी। ISSMR की शुरुआत 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 1,25,13,000 से अधिक बहनों के खातों में 2,148 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया जाएगा। लाडली बहनों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1,500 रूपये की राशि के अलावा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 250 रूपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के संदर्भ में संचालित गतिविधियों और इसके लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जाए। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर जिले में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं रायसेन, सागर, जबलपुर, रीवा और छतरपुर सहित एक दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। और नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज दोपहर 3 बजे से भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिहाज से ये मुकाबला काफी अहम है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है।
1: सावन की ठंडी फुहारों के बीच आप सब सखियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। इस समय आपके साथ है आपकी दोस्त धम्ममित्रा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। सखियों, ये बारिश की बूंदें धरती को हरा भरा कर देती हैं। इससे किसानों के चेहरों पर चमक आ जाती है। खाली बांध भर जाते हैं बारिश के पानी से, जो लोगों की प्यास बुझाते हैं साल भर। पर यदि यही बारिश जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ का संकट खड़ा हो जाता है। बहुत लोग बेघर हो जाते हैं, संक्रमण और खाने पीने की समस्या खड़ी हो जाती है। सखियों, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटना काफ़ी कठिन होता है। भूकंप, अकाल, महामारी, युद्ध जैसी घटनाओं में भी बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। साथ ही बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। सखियों, प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित संकट, इनमें पूरी मानव जाति प्रभावित होती है। ऐसे में सहायता करने के लिए निकल पड़ते हैं लोग जिनमें जज्बा होता है सहायता का, हिम्मत का, लोगों की मदद का, जिसे कहते हैं मानवीयता। मानव का मानव के प्रति, किसी प्राणी के प्रति प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति जैसे गुण को दर्शाना बिना किसी भेदभाव के। सखियों, मानवीयता एक व्यवहार है जो हमें दूसरों के दुख को समझना सिखाता है और यही मानवीयता समाज का आधार भी है। सखियों, विश्व मानवीयता दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन उन मानवीय सहायता कर्मियों को सम्मान देने और उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने संकट में फंसे लोगों की मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी या अपना जीवन समर्पित कर दिया। सखियों, 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर एक बड़ा बम धमाका हुआ था। इस भयानक बम धमाके में इराक में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्गियो वेरा डी मेल्लो समेत 22 मानवीय सहायता कर्मियों की भी मौत हो गई थी। इन शहीदों की याद में और मानवीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में प्रस्ताव पारित किया और 2009 से हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवीयता दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों में मानवीय संकट में जरूरतमंद की सहायता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, साथ ही युद्ध और आपदा क्षेत्रों में काम कर रहे सहायता कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षण की वकालत करना। सखियों, ये सहायता कर्मी पीड़ितों को भोजन, दवाइयाँ और बेघर लोगों को आश्रय जैसे आपातकालीन मदद पहुँचाते हैं, इसीलिए इन्हें हम राहतकर्मी या मानवीय सहायता कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। जब ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को सहायता पहुँचाते हैं तो ये लोग भी अपनी सुरक्षा और संरक्षण का हक रखते हैं। आइए हम भी संकल्प लें कि यदि कभी किसी को भी मुसीबत में हमारी मदद की आवश्यकता पड़े तो उस समय हम उसकी मदद ज़रूर करें। आखिर यही तो है मानव धर्म।

0: सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद अब आइए सुनते हैं कहानी मेहनत की कमाई। कहानीकार हैं मंदाकिनी शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: डब्बू ने किराने की दुकान से 10 रुपए वाला ब्रेड का एक पैकेट खरीदा और बचे हुए पैसों को एक हाथ में अच्छी तरह दबाकर तथा दूसरे हाथ में ब्रेड के पैकेट को पकड़कर खुशी से झूमता हुआ घर की तरफ लौट रहा था कि दुकान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उसे रंग बिरंगे कागज जैसा कुछ सामान सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो कुछ रुपए गुड़ी मुड़ी सी हालत में सड़क पर पड़े थे। शायद इसीलिए अब तक उन पर किसी की नजर नहीं गई थी। डब्बू ने उन पैसों को भी अपने एक हाथ में बड़े संभाल कर पकड़ लिया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि सड़क पर पड़ी कोई भी वस्तु को जब तक उसके वास्तविक मालिक तक नहीं पहुँचा दो, तब तक उसकी हिफाजत अपनी वस्तु की तरह ही करना चाहिए। डब्बू ने सड़क पर पड़े उन पैसों को किसी लालच के चलते नहीं उठाया था, बल्कि माँ की दी हुई शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उठाया था, और इसीलिए उन पैसों को उठाते समय उसने आसपास के माहौल पर नजर डालकर यह सुनिश्चित कर लिया था कि उस समय उन पैसों का वास्तविक मालिक वहां उपस्थित नहीं था। डब्बू ने घर आकर अपनी माँ को ब्रेड का पैकेट और बचे हुए पैसे लौटाने के साथ ही सड़क पर पड़े पैसे भी दिए। उसकी माँ ने देखा तो उन पैसों में 10, 20, 50 के अलावा 5 के कुछ नोट मिलकर 1000 रुपए की राशि बना रहे थे। उन नोटों के संग्रह स्वरूप को देखते ही डब्बू की माँ को सारा मामला समझ आ गया। उसके भीतर का संवेदनशील मनुष्य द्रवित हो गया ये सोचकर कि

0: इन पैसों का संग्रह किया है उसने परिश्रम कितना किया होगा और इनके यूं खो जाने पर वह इस समय कितनी पीड़ा में होगा। डब्बू की माँ ने डब्बू को साथ लिया और उस स्थान की तरफ चल दी जहाँ डब्बू को वह पैसे मिले थे। न जाने उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि पैसे का सही दावेदार उन्हें उसी स्थान पर मिलेगा। डब्बू के साथ वह उस किराने की दुकान के पास पहुंची ही थी कि एक वृद्ध महिला जो लगभग 68 साल की थी अपनी कमजोर आंखों से सड़क पर कुछ खोजने का प्रयास कर रही थी। डब्बू ने अपनी माँ को देखा और माँ ने डब्बू को देखा और दोनों ने आंखों ही आंखों में जैसे एक दूसरे से कहा हो कि इन पैसों का सही उत्तराधिकारी मिल गया। किंतु फिर भी एक बार ये जांच कर लेना उन्होंने जरूरी समझा कि वह वृद्ध महिला क्या ढूंढ रही है। सो वह दोनों उस वृद्धा के समीप पहुंचे और डब्बू की माँ ने बड़ी विनम्रता के साथ उनसे पूछा, माँ जी आप कुछ ढूंढ रही हो? कहते हैं परेशानी की हालत में मनुष्य के पास यदि भगवान भी आ जाए तो मनुष्य उसको भी लताड़ सकता है। वही हुआ। उन वृद्धा ने चिढ़ते हुए से अंदाज में डब्बू की माँ से बोला, तुम्हें क्या करना है? मैं कुछ भी ढूंढ रही हूँ। अपनी माँ के संकेत पर डब्बू ने अपनी मीठी और भोली सी आवाज में वृद्धा से कहा, दादी आप परेशान मत हो, आप हमें अपनी परेशानी बता सकती हो, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। वृद्धा के बूढ़े कानों में डब्बू की शहद जैसी आवाज पहुंची तो वह वहीं रुक गई और डब्बू की तरफ ध्यान से देखने लगी। ईश्वर जैसी निश्चलता ने वृद्धा को डब्बू से सब कुछ कह देने के लिए विवश कर दिया। वह बोली, बेटा क्या बताऊं, मैं पास ही की गली दानाओली में एक मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचती हूँ, उसी से मैंने कुछ पैसे लगभग 1000 रुपए जोड़े थे, उन्हीं को अपने बैंक के खाते में जमा करने जा रही थी ताकि दुकान के लिए कुछ और सामान ले सकूं। पर मेरी फूटी किस्मत तो देख कि मेरी अंटी में बंधे वो पैसे सड़क पर गिर गए। भगवान के दरवाजे पर बैठकर कमाया गया मेरी मेहनत का वो धन पता नहीं किसकी जेब में उचक रहा होगा। पड़े मिले पैसे और कमाए गए पैसे की इज्जत में फर्क होता है। भगवान पता नहीं कहाँ सो रहा है और इतनी उल्हाना देने के साथ ही वह फिर से अपनी कमजोर आंखों को इधर उधर दौड़ाने लगी। डब्बू की माँ समझ गई कि वह वृद्धा डब्बू के साथ एक आत्मीय संबंध को अनुभव कर रही है और साथ ही वह इस बात को लेकर भी निश्चिंत हो गई कि ये सड़क पर मिले पैसे उन्हीं वृद्धा के हैं। इसलिए उन्होंने फिर से डब्बू को कुछ इशारे में समझाया। माँ के उस संकेत पर डब्बू ने बोला, दादी भगवान ने आपके परिश्रम की बहुत इज्जत की है, उसने आपकी मेहनत के पैसे सही जेब में पहुंचाए हैं। वृद्धा ने डब्बू की तरफ पलटकर देखा और पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? डब्बू, हाँ दादी मैं सच कह रहा हूँ। और फिर अपनी माँ से बोला, माँ दादी के पैसे दादी को दे दो ना। डब्बू के कहने पर डब्बू की माँ अपने हाथ में पकड़े हुए पैसे उस वृद्ध महिला की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए माँ जी आपके परिश्रम का धन। वृद्ध महिला अपने खोए हुए पैसों को पाकर छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई और बोली, बेटी ये तुम्हें कहाँ मिले? माँ जी ये मुझे नहीं आपके इस पोते को यहीं सड़क पर पड़े मिले थे। वृद्ध महिला आपके पोते को सुनकर भावुक हो गई और डब्बू के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा तेरी इस साफ स्वच्छ नीयत को ईश्वर बनाए रखे, तू खूब लंबी उम्र पाए, तू खूब तरक्की करे, बिना किसी छल प्रपंच के अपना जीवन जिए और न जाने ऐसे ही कितने आशीर्वाद उसे दे डाले। जब वृद्धा के अंदर का वात्सल्य थोड़ा थमा तो उसने अपने पैसों को देखा और बोली, बेटा ये पैसे तो बिल्कुल वैसी ही हालत में हैं जैसे मेरी अंटी में थे, तुमने तो इनके रखने के तरीके को भी नहीं बदला। तब डब्बू बोला, दादी माँ कहती है सड़क पर पड़ी किसी भी वस्तु को जब तक उसके सही अधिकारी तक ना पहुँचा दो तब तक उसकी रक्षा अपने प्राणों की तरह करना चाहिए और उस व्यक्ति को अपनी वस्तु उसके मूल रूप में ही लौटाना चाहिए। डब्बू की बात सुनकर उस वृद्ध महिला ने डब्बू की माँ से कहा, बेटा तुम बहुत पुण्य का काम कर रही हो। अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देकर और फिर आशीर्वाद देते हुए बोली, ईश्वर तुम्हारे बुढ़ापे को पोते पोतियों की उंगली थामने का सुख दे। भगवान तुम्हारे बच्चों को शुद्ध और साफ हृदय का बनाए रखे। डब्बू की माँ ने वृद्धा को बताया कि माँ जी, मुझे भी ये सब अपने माता पिता से मिला है। बचपन से सद साहित्य के संपर्क में रहने के कारण हम नैतिक मूल्यों को जी पाए। माता पिता ने सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्परता रखी। जो मेरे पास पूर्वजों की धरोहर के रूप में संचित है, उसी को मैंने अपने बच्चों को दिया है, ताकि ये देश, समाज और परिवार के साथ जुड़े नैतिक कर्तव्यों को निभा सकें। डब्बू की माँ ने बातों बातों में उस वृद्ध महिला के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। जैसे वह उनकी कॉलोनी से लगे छोटे से बाजार दानामोली में रहती थी। उसने पारलौकिक विवाह किया था, इसलिए वैसे निसंतान थी, किंतु उसकी मानस संतानें बहुत थीं। वह सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थीं, इसलिए वह वृद्धा अब अकेली थी। डब्बू की माँ ने डब्बू से कहा तो डब्बू वृद्धा से बोला, दादी अब से मैं आपके पास हर रविवार को आऊंगा और आपके साथ आपके जरूरी काम करवाऊंगा। डब्बू की माँ भी बोली, माँ जी आपकी कभी बैंक वगैरह जाने की इच्छा हो या कोई काम हो तो मुझे बुला लिया करें, मैं आपको गाड़ी से लेकर चलूंगी। डब्बू और उसकी माँ के प्रस्ताव सुनकर वह वृद्ध महिला आसमान की तरफ देखकर बोली, बहुत खूब खाना, मैंने खोया तो चंद रुपयों को था, पर तेरी कृपा से वे खोए हुए रुपए अनमोल ब्याज के साथ वापस मिले हैं। ये कहते समय वह डब्बू को स्नेह भरी निगाहों से देख रही थी। वृद्धा ने डब्बू और उसकी माँ को उसी आत्मीयता का अनुभव देते हुए उत्तर दिया, अब इस उम्र में दादी पोते बेटे बहू के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, मेरे जीवन भर की मेहनत की कमाई बस यही तो है।
1: सखियों, मेहनत की कमाई, अभी आपने सुनी ये कहानी। कहानीकार थी मंदाकिनी शर्मा। सखियों, बरसात का मौसम हो और भुट्टे की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भुट्टों को भूनकर नमक नींबू लगा कर तो हम सभी अक्सर खाते हैं, पर आज दो अलग रेसिपी यहाँ बताऊंगी, जिन्हें आप झटपट तैयार कर गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं और मौसम का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कॉर्न भजिए। इसके लिए सामग्री इस प्रकार है, मुलायम भुट्टे 2, स्वीट कॉर्न हो तो और भी अच्छा है, काली मिर्च, धनिया, जीरा 1-1 चम्मच, इसे दरदरा कूट लेंगे, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, 2 प्याज बारीक कटे हुए, नमक स्वादानुसार, बेसन करीब 2 चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 चम्मच, 2 मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक का छोटा सा टुकड़ा घिसा हुआ, पिसी हल्दी 1/4 चम्मच और तलने के लिए तेल करीब 1 कप। सखियों, अब इसका बनाने का तरीका ये है। सबसे पहले भुट्टे के दानों को निकाल लेंगे, इसमें नमक डालकर 5 मिनट के लिए रख देंगे। नमक डालकर रखने से एक्स्ट्रा पानी निकलने लगेगा, इसे कपड़े से छानकर निकाल लेंगे। अब इसमें बेसन को छोड़कर सारी सामग्री 1-1 कर डालकर अच्छे से मिलाएंगे। लास्ट में इसमें बेसन डालेंगे। बेसन उतना ही डालेंगे कि पकौड़ी का गाढ़ा घोल तैयार हो जाए। अब इसे छोटे छोटे पकौड़ी शेप में गर्म तेल में तल लेंगे, सुनहरा होने पर निकाल लेंगे। लीजिए, चटपटे करारे कॉर्न भजिए तैयार हैं। सखियों, अब बनाते हैं कॉर्न कटलेट। सामग्री है 2 मुलायम भुट्टे, 2 गाजर बारीक कटी हुई, 2 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, चावल का आटा 1/4 कप, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार काला नमक, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और तेल फ्राई करने के लिए। सबसे पहले भुट्टे के दानों को निकालेंगे और उन्हें दरदरा पीस लेंगे। अब इसमें चावल के आटे के अलावा सारी सामग्री मिलाएंगे। जब सब अच्छे से मिल जाएगा तब इसमें चावल का आटा मिलाएंगे। अब फिर से इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब कटलेट का शेप देंगे व इन्हें 10 मिनट स्टीम करेंगे। स्टीम होने के बाद इन्हें थोड़े तेल में फ्राई करेंगे। आप इन्हें डायरेक्ट भी फ्राई कर सकती हैं।

सखियों, आज सबके पास अच्छे मोबाइल हैं जिसमें तरह तरह के फीचर्स, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मोबाइल का कैमरा, और वो भी सेल्फ़ी लेने में। हाँ सखियों, कहीं भी जाइए लोग फ़ोटो लेते सेल्फ़ी लेते ज़रूर दिख जाएंगे तरह तरह के पोज बनाते हुए। सेल्फ़ी लेते लोगों को ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ हैं। कई बार ऐसे खतरनाक स्थानों पर होते हैं कि वहाँ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, जैसे नदी, तालाब, पहाड़ या झरने के बिल्कुल किनारे। सखियों, सेल्फ़ी का ऐसा क्रेज़ है लोगों में कि वो जोखिम लेने से भी नहीं डरते। ऊंची चट्टानें, समुद्र का किनारा, रेलवे ट्रैक, हिल स्टेशन, झरने सबसे खतरनाक साबित होते हैं। सखियों, आपको जानकर हैरानी होगी, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सेल्फ़ी की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई वायरल होना चाहता है, जिसके लिए हर मुश्किल जगह पर जाकर सेल्फ़ी का जोखिम लेने को तैयार रहते हैं लोग। कुछ लोगों को इसका इतना जुनून होता है। सखियों, रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में सेल्फ़ी से जुड़ी 42% घटनाएं तो केवल भारत में होती हैं। भारत में सेल्फ़ी का क्रेज़ खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है, इसलिए सरकार ने कई जगह नो सेल्फ़ी जोन भी बनाए हैं। एक अध्ययन के अनुसार सेल्फ़ी के कारण हादसों का शिकार सबसे ज़्यादा युवा होते हैं। युवाओं में सेल्फ़ी के बढ़ते जुनून को लेकर चिकित्सकों का कहना है कि अधिक सेल्फ़ी लेने से चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आती हैं, एंजाइटी भी बढ़ती है। मनोचिकित्सकों ने सेल्फ़ी को एक मनोरोग मान लिया है। उनके मुताबिक सेल्फ़ी साइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति सेल्फ़ी लेकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता तो उसे बेचैनी होने लगती है। इस जुनून का लोगों के रिश्तों पर भी असर पड़ रहा है। सखियों, हम

तो यही कहेंगे कि सेल्फी का शौक बुरा नहीं है, लेकिन उस हद तक ना हो जहां जिंदगी ही मुसीबत में घिर जाए। आप अपना ख्याल रखिए, साथ ही अपनों का भी। सखियों, आज पूरा विश्व मना रहा है विश्व फोटोग्राफी दिवस। आप भी लीजिए अपनों के बीच कुछ यादगार फोटोज और सेल्फीज, जिसे आप यदि बाद में भी देखें तो मन प्रफुल्लित हो जाए और होठों में आ जाए एक प्यारी सी मुस्कान। तो सखियों, अब समय हो रहा है हमारे जाने का। अनुमति दीजिए धम्म मित्रा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
4: श्रोताओ, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
0: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
6: अम्मा की दार पे जी।
0: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है। लोक संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं रतन लाल कुशवाहा और साथी। इनके स्वर में सबसे पहले सुनेंगे आप ये गारी गीत।

लोक संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं रतनलाल कुशवाहा और साथ ही इनके स्वर में अब आप सुनेंगे ये हरदौल गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं रतनलाल कुशवाहा और साथी। इनके स्वर में अब आप सुनेंगे ये रावला गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है। सुगम संगीत में हमारी आज की कलाकार हैं तांजी पमनानी। इनके स्वर में आप सुनेंगे भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: श्रोताओ, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
1: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
1: और झूलते झूलते सुनते हैं
5: मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
1: अरे दीदी, धीरे धीरे।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत टाइगर जिंदा है। इस फिल्म से गीत आप सुनेंगे आतिफ असलम की आवाज़ में।

ए.आर. रहमान, अनुराधा, अनुपमा की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे। फिल्म का नाम दिल से, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार ए.आर. रहमान।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मैहर जिले में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जाएगी। हर बहन के खाते में 1,750 रुपए पहुंचेंगे, जिसमें 1,500 रुपए नियमित किस्त और 250 रुपए रक्षाबंधन का विशेष शगुन है।
1: रक्षाबंधन का त्यौहार 28 तारीख को होने वाला है। आज मैं मैहर की माताजी के स्थान से 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनाओं के लिए उनकी नियमित 1,500 की किस्त और 250 रुपये अलग से रक्षाबंधन का नेब उनको देने के लिए हमारा एक कार्यक्रम आयोजित है। ये बहनों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बड़ा संकल्प का भी कारण है। कई घरों में ये बहुत बड़ी राशि है, 1,500 रुपये महीना हर महीने जो मिल रहा है, इससे घर के पूरे आर्थिक तंत्र को बदल रहा है।
0: मुख्यमंत्री इस अवसर पर मां शारदा लोक के फेज 1 का भूमि पूजन भी करेंगे और मैहर में करीब 256 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देशों के बाद लिया है, जिसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित मेजर ध्यानचंद खेल ग्राउंड पर मुख्यमंत्री हॉकी ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मानसिंह यादव ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल करेंगे।
2: भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मध्य प्रदेश की 4 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला हॉकी टीमों का मुख्यमंत्री खेल ट्रॉफी कराई जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे और शाम को 5 बजे समापन अवसर पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे।
0: भिंड के गोहद क्षेत्र के धमसा गांव में बिना लाइसेंस चल रहे सेवई और नूडल्स कारखाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। टीम ने निरीक्षण के दौरान गंदगी और मक्खियां पाई। कारखाने में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री का निर्माण और पैकिंग की जा रही थी। टीम ने मौके से 200 कट्टे मैदा और करीब 50 कॉटन सेवई जब्त कर कारखाने को सील कर दिया है। अब रुक करते हैं खेल का। श्रीलंका में खेले गए पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने पहली पारी में 462 और दूसरी पारी में 193 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम दोनों पारियों में 284 और 206 रन ही बना सकी। भारत की जीत में मानव सुथार का अहम योगदान रहा, जिन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी है, जहां पर 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। इसके साथ ही रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, शहडोल, सीधी, रीवा और सतना समेत अन्य जिलों में भी भारी बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 20 अगस्त को नर्मदापुरम में समरसता संकल्प अभियान और यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर से रीवा, अंबिकापुर और सिंगरौली जाने वाली इंटरसिटी ट्रेनों का मुख्य स्टेशन पर दबाव कम करने के लिए नया टर्मिनल अब मदन महल बना दिया गया है और शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरपंचों और सचिवों के लिए 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा

0: न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 500,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न हैं। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कूलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए।

0: है। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
2: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म हमराज से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है मोहाली चंडीगढ़ से। श्रोता है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। अगली श्रोता अमरपुर छत्तीसगढ़ से हैं दिशा, दिव्यांश, रूही और लवी श्रीवास्तव। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म सोल्जर से। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार है अनु मलिक। फरमाइश हमें आई है सामाजी नगर से। श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, श्रीमती शीतल राजेश। अगले श्रोता शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं विमला बाई ओझा, ज्योति बाई ओझा, प्रीति बाई ओझा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

प्रीति सागर की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म जोली से। गीतकार हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है नेपाल पैलेस सागर से। श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता कवर कॉलोनी बड़वाह से हैं। प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा शिमाली। अगले श्रोता सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

राहत फतेह अली खान की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म कलयुग से। गीतकार असीम रज़ा, संगीतकार रोहेल हयात फैज़ल रफ़ी। फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगली श्रोता जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज भट्ट।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म डॉन से। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बागपत उत्तर प्रदेश से। श्रोता है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। अगले श्रोता आदर्श नगर मलोट से हैं, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा, निवान शर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मैहर जिले में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित मेजर ध्यानचंद खेल ग्राउंड पर मुख्यमंत्री हॉकी ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी है, जहां पर 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। और श्रीलंका में खेले गए पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 और दूसरी पारी में 193 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम दोनों पारियों में 284 और 206 रन ही बना सकी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में शाम के 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:33 पर शाम 6:30 और रात 8:15 पर। शाम के ठीक 6:00 प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसमें डॉक्टर अमर बहादुर सिंह की भेंट वार्ता होगी, विषय रहेगा भूमि की जैव विविधता बढ़ाने के उपाय एवं महत्व। रात 8:00 प्रसारित होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम

चर्चा का विषय है। रात 10 बजे आप सुनेंगे नाटक हम सफर। इसके लेखक हैं दिनेश राय, प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढौंडियाल। 10:30 पर आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी का। इसमें कलाकार सुनीत मुखर्जी का सरोदवादन आप सुनेंगे। राग होगा रागेश्री। और इन्हीं सारी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम के 5 बजे सभा पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए हमारा प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। युवा साथी सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा युवा प्रोग्राम युवावाणी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राज।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अपर्णा।
0: साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक बुधवार के दिन हम आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा सेगमेंट लेकर आते हैं एक ही फिल्म से।
1: तो दोस्तों, आज भी हम आपके लिए चुनकर एक फिल्म लेकर आए हैं, उसके सुरीले गाने लेकर आए हैं। और वो फिल्म कौन सी है ये भी हम आपको कार्यक्रम में आगे बताएंगे। लेकिन राज, उसके पहले वक्त है आज के दो प्रश्नों का।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो आज का पहला प्रश्न जान लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल कान लगाकर सुनिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि किस जानवर का दिल सबसे बड़ा होता है।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, कैमरे से खींची गई दुनिया की पहली स्थायी तस्वीर किसने ली थी।
0: तो दोस्तों, ये दोनों प्रश्नों को आप ढूंढ के रखिए, अंत में हम इन दोनों का जवाब आपको देंगे। पर आज, जैसा कि हमने बताया कि आज कई सारे महत्वपूर्ण दिन भी हैं और हम आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट पे भी बात करने वाले हैं जो कि एक ही फिल्म से है। पर आज का जो एक खास दिवस है वो हम सभी को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, आज 19 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे।
1: और राज, इस दिन को मनाने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास भी जुड़ा है, हम हमारे श्रोताओं से साझा करते हैं। दोस्तों, 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए हमले में 22 लोगों की जान गई थी। इनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वी एरा डी मेलो भी शामिल थे।
0: इसलिए दोस्तों, इसी घटना की

0: प्रति में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2008 में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य उन सभी मानवतावादी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है जो युद्ध, आपदा और संकट के समय जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल, और मानवतावाद का अर्थ ही है कि बिना किसी भेदभाव के संकट में फंसे इंसान की मदद करना, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, युद्ध हो या कोई भी अन्य आपदा। मानवीय सहायता का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है इंसानी पीड़ा को कम करना और मानव गरिमा की रक्षा करना।
0: और दोस्तों, मानवता केवल बड़े बड़े कार्यों में नहीं है बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों में भी दिखाई देती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी दुखी व्यक्ति का साथ देना, बिना किसी भेदभाव के इंसान का सम्मान करना।
1: बिल्कुल, और आज भारत की संस्कृति में भी तो मानवता और सह अस्तित्व की भावना बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, नहीं?
0: हाँ, सही कहा तुमने। मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी अर्थात पूरी दुनिया पृथ्वी एक परिवार है, और ये विचार हमें सीमाओं से परे जाकर मानव कल्याण की सोच देता है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और किसी की मदद से बड़ा कोई कर्म नहीं, इस भावना को आप याद रखिए। और आज का दिवस हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये भी आप याद रखिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: दोस्तों, आज के दौर में हम सभी के कैमरा, जो एक कैमरा होता है ना, हम सभी के फ़ोन में है। हम कभी भी कहीं भी वीडियो बना लेते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं और एक ही झटके में सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड भी कर देते हैं, है ना अर्पणा?
3: बिल्कुल सही कहा राज तुमने। और कैमरा मानो आप हर किसी के जीवन का एक रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा हो गया है। हाँ। महत्वपूर्ण, मतलब अगर हम खा रहे हैं तो उसकी हमें तस्वीर खींचनी, हम जहाँ जा रहे हैं उसकी हमें तस्वीर खींचनी, हमने अगर कुछ नया पहना है तो हमें अपनी तस्वीर खींचनी है।
2: और फोटो क्लिक करके ये भी बताना है कि मैं इस समय कौन से स्थान पर हूँ, क्या खरीदारी कर रहा हूँ, ताकि सामने वाले को भी उसकी जानकारी पहुंचे।
3: बिल्कुल। और राज, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम अचानक से कैमरे पे कैसे शिफ्ट हो गए, तो इसका रीजन उन्हें बता दो।
2: दोस्तों, आज 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस, यानी यादों को तस्वीरों में संजोने का प्यारा सा दिन।
3: बिल्कुल श्रोताओं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आधुनिक फोटोग्राफी के इतिहास में वर्ष 1839 का बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष फ्रांस ने डागेरियोटाइप प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से दुनिया के लिए उपलब्ध कराया और इसी ऐतिहासिक घटना की याद में 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है।
2: दोस्तों, आज फोटोग्राफी सिर्फ तस्वीर लेना नहीं बल्कि कहानी कहने, इतिहास सहेजने और भावनाओं को कैद करने की कला बन चुकी है।
3: बिल्कुल। और दोस्तों, विश्व फोटोग्राफी दिवस पर एक तस्वीर आप भी जरूर खींचिए और सहेज कर रखिए, क्योंकि तस्वीरें सिर्फ पल नहीं कैद करती, वे समय बीत जाने के बाद उनकी यादों को जिंदा रखती है।
2: बिल्कुल सही कहा।
3: और श्रोताओं, इसी कड़ी में आज के इस विशेष दिन को मनाने के लिए हम आपके लिए एक वार्ता लेकर आए हैं, जिसकी वार्ताकार है डॉक्टर अनुजा जोशी। तो लीजिए सुनते हैं।
4: श्रोता साथियों, आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है। आप सभी को तनुजा जोशी, पूर्व प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय और डाइट का सादर नमस्कार और सभी आदरणीय स्वजन बंधुओं को विश्व फोटोग्राफी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम फोटोग्राफी के महत्व, व्यवहारिक प्रकार एवं उसका वर्तमान में कैसा प्रासंगिक उपयोग किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं, एक तस्वीर हजारों शब्दों को बयां करती है। तस्वीर के इसी महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से ही हम अपने इतिहास के पन्नों में झांक सकते हैं और हम पुरानी तस्वीरों को देख भी सकते हैं और अपने इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत सन 1837 में फ्रांस में हुई थी और यह साल वह था जिसमें हम आज तक इस फोटोग्राफी दिवस को इसी दिन मनाते आ रहे हैं। साथियों, जीवन की कुछ अनमोल पलों को हमेशा के लिए अपनी यादों में स्टोर करने के लिए हमारे पास कई बेहतरीन तरीके हैं। समय को तस्वीरों के रूप में हम कैद कर सकते हैं और इन्हीं तस्वीरों के सालों बाद भी हम देखकर उसी दौर में भी पहुंच सकते हैं। वर्तमान में यादगार पलों को कैद करने के लिए हमारे पास लगभग हर हाथ में मोबाइल कैमरा है और मोबाइल फोन है और उसी के माध्यम से हम तस्वीरों को देख सकते हैं। पहले के दौर में कैमरा काफी महंगा हुआ करता था, लेकिन अब इसकी जरूरत यूं है, मोबाइल के द्वारा हम कैमरे में ही सिमट गए हैं और इसकी कोई खास मौके पर भी हम इसको बर्थडे पार्टी, शादी समारोह और टूर आदि में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी खुशियों को सजा कर रख सकते हैं। साथियों, सुंदरता सभी चीजों में देखी जा सकती है। सौंदर्य को देखना, उसकी रचना करना, उसकी कल्पनाशीलता को दिखाता है। आप तस्वीरों में उसको कैद कर सकते हैं। साथियों, जीवन जीने की कला भी एक फोटोग्राफी है और इसे अच्छे से एडिट करें और फिर देखें कि दुनिया आपको कितनी खूबसूरत नजर आती है और आपको कितना पसंद करती है। फोटोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो और ग्राफी। फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और ग्राफी का अर्थ होता है चित्र। इस तरह से फोटोग्राफी में प्रकाश के द्वारा चित्र बनाना ही फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी का महत्व हमारे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में भी बहुत ज्यादा है। भौतिक विज्ञान में कैमरे में और हम अवतल दर्पण और अवतल लेंस में किस तरह से इसका उपयोग करना है ये भी देखते हैं। इसके अलावा फिल्टर में भी भौतिक विज्ञान में भी देख सकते हैं। रसायन विज्ञान में सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड के द्वारा भी, इन रसायनों के द्वारा भी हम फोटोग्राफी प्लेट और फोटोग्राफी जो भी आपके पेपर रोल होते हैं उसमें भी इसका उपयोग, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जा सकता है। फोटोग्राफी प्रक्रिया एक प्रकार से 5 प्रक्रिया के चरण से गुजरती है। उसमें योजना बनाना, शूटिंग करना, व्यवस्थित करना, संपादन करना, निर्यात करना और साझा करना शामिल है। योजना बनाने में भी स्थान का चयन करना पड़ता है, उपकरण का भी चयन करना पड़ता है, शूटिंग करने में साथियों उचित संरचना डिवाइस का उपयोग करना पड़ता है, प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी तरह से और बेहतर बनाने के लिए जो हमने तस्वीर ली है उसको हम और आकर्षक और खूबसूरत बना सकते हैं। कई कलर देकर, कंट्रास्ट देकर, चमक देकर भी हम अच्छे से उनको वापस फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अंत में हम उनका साझा करें कि हमें ये माने कि हमने जो तस्वीर बनाई है उसका हम साझा सोशल मीडिया के द्वारा भी पोस्ट कर सकते हैं, अपने दोस्त और अपने परिवारों को भी इस फोटो को साझा कर सकते हैं और एक प्रिंट के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फोटोग्राफी का अपना अलग ही महत्व है और इनमें महत्वपूर्ण रूप से यादों को संजोना, कहानियां बताना, इसी तरह से संचार में भी फोटोग्राफी का साथियों बहुत अधिक महत्व है। तस्वीरों को हम भावनाओं को और व्यक्त करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम मान सकते हैं संचार को। इसी तरह कला और व्यापार और विज्ञान में भी फोटोग्राफी का अपना एक अलग स्थान है। विज्ञान में तो यूं माने कि वैज्ञानिक अनुसंधान जो हो रहे हैं और उनमें भी फोटोग्राफी का अलग स्थान होता है। और व्यापार में भी यूं कहें कि तस्वीरें उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे माने तो फोटोग्राफी के बुनियादी चरण है देखना, फिर उसके बाद अपन यूं कहें कि डिजाइन करना, फिर उसके बाद शूट करना, शूट करने के बाद में फोटोग्राफी को बाद में उसको और बेहतर बनाना, फिर उसके बाद है इसका साझा करना। तो हम ये देखें कि देखने में क्या है कि हम एक फोटोग्राफर अपनी नजर से देखेगा कि कैसे कौन से दृश्य को उसको रखना है और उसके लिए रचनात्मकता और अवलोकन पर केंद्रित करना है। ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो कौन से दृश्य को पहचानने के लिए तैयार है। इसी तरह जब उसने दृश्य को पहचान लिया है, देख लिया है साथियों, तो उसको डिजाइन करना भी पड़ता है। जब एक बार आपने वो दृश्य ढूंढ लिया तो उसको डिजाइन करें और उसको कैमरे में कैसे कैद करें और उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, एक विषय का चयन करने के लिए हमें प्रकाश की व्यवस्था, कोण और फ्रेमिंग, ये सब जरूरी होगा। और जैसे ही इनका चयन हो जाएगा तो हम उसको शूट करेंगे, तो शूट करने के लिए भी कैमरे की सेटिंग करना पड़ेगी और उनमें प्रकाश की व्यवस्था देखनी होगी। साथियों जब हमने इनको शूट कर लिया है तो और उसको अच्छा बनाने के लिए, तस्वीर को और अच्छा बनाने के लिए, उसको संपादित करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कलर और आकर्षक चमक लाने का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अलावा है कि व्यवहारिक, ये माने कि फोटोग्राफी में और साझा करने वाली बात आ जाएगी, तो साझा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से इसको साझा कर सकते हैं। फोटोग्राफी के कई व्यवहारिक प्रकार हैं, जैसे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वन्य जीव

0: और फैशन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कुछ प्रकारों में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और फूड फोटोग्राफी और फैशन फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी और आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्राफी और आजकल फोटोग्राफी में कैंडिड फोटोग्राफी का भी बहुत चलन है। एरियल फोटोग्राफी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हवाई जहाज या ड्रोन से तस्वीरें ली जाती है। इसी तरह से कैंडिड फोटोग्राफी में किसी कोई फोकस का ध्यान ना रखते हुए नेचुरल तरीके से फोटो ली जाती है और ये फोटो का भी बड़ी आकर्षक बन जाती है कई बार और देखने में बहुत सुंदर लगती है। इसी के अलावा फैशन फोटोग्राफी जो है उसमें फैशन और डिजाइनिंग का उपयोग किया जाता है और एक्सेसरी और अन्य फैशन उत्पादकों के लिए भी ये तस्वीर ले सकते हैं। इवेंट फोटोग्राफी एक फोटोग्राफी है, मैक्रो फोटोग्राफी। मैक्रो फोटोग्राफी में बहुत सारे विषय, छोटे कीड़े और फूलों की तस्वीर ली जाती है क्योंकि ये छोटे कीड़े और उनको हम इनकी तस्वीर को बड़ा करके इनलार्ज करके मैक्रो रूप में देख सकते हैं और ये फोटोग्राफी का भी बहुत अधिक आज की तारीख में बहुत अधिक महत्व है। वर्तमान में ऐसे देखें तो फोटोग्राफी के कई प्रकारों में ये सारे महत्वपूर्ण है, फोटोग्राफी भी महत्वपूर्ण है। इन सब फोटोग्राफी का हमारे वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता भी है और इनका बहुत अधिक महत्व है। साथियों, आज हमने फोटोग्राफी के कुछ प्रकारों के बारे में भी बात की। हम ये माने कि हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को खूबसूरत वॉलपेपर और संदेश भेजकर आइए हम इस फोटोग्राफी दिवस को यादगार बनाएं। हम न रहेंगे, आप न रहोगे, फिर भी तस्वीरें जिंदा रहेंगी खूबसूरत यादों में और हमेशा आने वाली पीढ़ी को संदेश देती रहेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः हार्दिक बधाई और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता डॉक्टर तनुजा जोशी की आवाज में। अब आइए सुनते हैं इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए प्यारा सा ये गीत।

0: हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, अब बारी है हमारे आज के खास सेगमेंट जिसका नाम है एक ही फिल्म से। आज का हमारा विषय है एक ऐसी फिल्म जिसमें रेगिस्तान की तपिश है, रिश्तों की उलझन है, अपराध और साजिश का रोमांच है, और सबसे बढ़कर है दो ऐसे भाइयों की कहानी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग से होने के बावजूद मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। आज बात होगी साल 1999 की फिल्म कच्चे धागे की।
3: दोस्तों, फिल्मों में कई बार रिश्तों की कहानियां देखने को मिलती है, लेकिन कच्चे धागे की खासियत ये है कि यहाँ भाईचारा किसी भावुक मुलाकात से नहीं बल्कि मुश्किलों, भाग दौड़ और संघर्ष के बीच धीरे धीरे मजबूत होता है।
2: फिल्म का निर्देशन किया था मिलन लथुरिया ने, लेखक थे संजय झैल, पटकथा अंजुम राजाबाली की थी और निर्माता थे रमेश तोरानी और कुमार तोरानी।
3: फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए अजय देवगन, सैफ अली खान और मनीषा कोइराला, जबकि नम्रता शिरोडकर भी महत्वपूर्ण भूमिका में थी, और फिल्म का संगीत नुसरत फतेह अली खान साहब का था। 10 फरवरी 1999 को मुंबई में ये फिल्म रिलीज हुई थी।
2: दोस्तों, फिल्म की कहानी हमें ले जाती है राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में। यहाँ हमारा सामना होता है आफताब से, जिसका किरदार निभाया है अजय देवगन ने। आफताब सीमा के आसपास छोटी मोटी तस्करी का काम करता है।
3: आफताब की जिंदगी कानून के सीधे रास्ते पर नहीं चलती, लेकिन उसके दिल में अपनी प्रेमिका रुखसाना यानी मनीषा कोइराला के लिए सच्चा प्यार है।
2: दूसरी तरफ है धनंजय, जिसका किरदार सैफ अली खान ने निभाया है। धनंजय बिल्कुल अलग दुनिया में रहने वाला एक लड़का है। शहर के कॉरपोरेट कल्चर, आलिशान जिंदगी और आधुनिक जीवन शैली उसका जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
3: और सबसे खास बात ये दोस्तों कि आफताब और धनंजय सौतेले भाई है, लेकिन दोनों की मुलाकात बचपन से साथ पले भाइयों जैसी नहीं होती। वो पहले संयोग से मिलते हैं और एक दूसरे की जीवन शैली देख कर हैरान भी होते हैं और परेशान भी।
2: एक तरफ रेगिस्तान और सीमा का संघर्ष झेलता आफताब,
3: और वहीं दूसरी तरफ शहर की चमक दमक में रहने वाला धनंजय।
2: दोनों के बीच सोच का अंतर है, जिंदगी जीने का तरीका अलग है और दोनों के अपने अपने स्वार्थ भी हैं।
3: आफताब अपनी प्रेमिका रुखसाना के साथ जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन रुखसाना का परिवार आफताब के गैर कानूनी धंधे में शामिल होने के कारण इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता।
2: उधर धनंजय की जिंदगी भी अचानक बदल जाती है। उसके पिता की मौत के बाद उसके सामने ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: और फिर कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। एक रात आफ्ताब को कुछ संदिग्ध लोग एक माल लदे ट्रक को चोरी करने के लिए मजबूर करते हैं। हालात ऐसे बनते हैं कि धनंजय भी इसे मामले में फंस जाता है।
3: अब मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहता, षड्यंत्र इतना गहरा हो जाता है कि दोनों भाइयों पर हत्या और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप तक लग जाते हैं।
2: और फिर शुरू होती है एक ऐसी भागदौड़ जिसमें दोनों को अपनी जान भी बचानी है और खुद को बेगुनाह भी साबित करना है।
3: कभी पैरों से भागते हुए, कभी मोटरसाइकिल पर और कभी कार में, कभी चोरी के ट्रक में और कभी तो मालगाड़ी में। फिल्म के एक्शन दृश्यों को लगातार बदलते वाहन और कई सारे स्थान का बदलना कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है।
2: यहाँ तक कि मालगाड़ी से स्टाफ वाली बोगी को अलग करने जैसा खतरनाक जोखिम भी देखने को मिलता है।
3: लेकिन इस पूरी भागदौड़ के बीच एक दिलचस्प बदलाव होता है, जो दो भाई शुरुआत में एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते थे,
2: जो एक दूसरे की जिंदगी और सोच को समझ ही नहीं पाते थे,
3: वहीं दोनों अब मजबूरी में एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। और दोस्तों मुश्किल जो समय होता है उसमें इंसान की जो असली पहचान होती है वो बुनियादी रिश्ते ही होते हैं।
2: बिल्कुल। आफ्ताब धनंजय की दुनिया को समझने लगता है और धनंजय आफ्ताब के संघर्षों को। दोनों महसूस करते हैं कि उनके बीच चाहे कितनी भी असमानताएं हों, लेकिन उनके रिश्ते में एक ऐसा धागा है जो उन्हें जोड़े रखता है।
3: और शायद यही इस फिल्म के शीर्षक कच्चे धागे का सबसे खूबसूरत अर्थ भी है। कच्चा धागा है लेकिन रिश्ता सच्चा है।

0: दोस्तों, कच्चे धागे की एक बड़ी खासियत इसका लोकेशन और विजुअल ट्रीटमेंट भी है। फिल्म की शूटिंग राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों से के साथ साथ स्विट्जरलैंड में भी की गई है।
1: सही कहा तुमने, राजस्थान का विशाल रेगिस्तान, सुनसान रास्ते, सीमा का माहौल और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के खूबसूरत दृश्य फिल्म को एक अलग सिनेमाई पहचान देते हैं।
0: और फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया गया था कुलधारा में। कुलधारा जैसलमेर के पास स्थित एक ऐतिहासिक और वीरान गांव है जिसके बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित है।
1: यही वीरान गांव फिल्म के क्लाइमैक्स को एक अलग भावनात्मक गहराई देता है। साथियों, कहानी के अंत में आफताब और धनंजय अपने पिता की अस्थियों को राजस्थान के रेगिस्तान में विसर्जित करते हुए दिखाई देते हैं।
0: ये दृश्य सिर्फ कहानी का अंत नहीं है दोस्तों, ये उन दोनों भाइयों की यात्रा का भी प्रतीक है जो अजनबी की तरह मिले थे,
1: एक दूसरे से भिड़े थे, मुश्किलों में साथ भागे, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा और अंत में आखिरकार एक दूसरे के करीब भी आ गए।
0: तो दोस्तों, कच्चे धागे सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये फिल्म हमें बताती है कि जिंदगी में रिश्ते हमेशा मजबूत परिस्थितियों में नहीं बनते। कई बार रिश्ते भी कच्चे धागों की तरह होते हैं जिन्हें समय, विश्वास और साथ मिलकर मजबूत बनाते हैं।
1: आफताब और धनंजय की कहानी में एक सवाल भी छुपा हुआ है साथियों, क्या खून का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब हम एक जैसे सोचते हैं? शायद नहीं, क्योंकि रिश्ते समानता से नहीं, समझ और भरोसे से मजबूत होते हैं साथियों।
0: तो ये थी हमारी आज की फिल्म यात्रा, कच्चे धागे की कहानी।
1: अजय देवगन और सैफ अली खान की जोड़ी, मनीषा कोयराला और नम्रता शिरोडकर के किरदार, मिलन लथुरिया का निर्देशन, राजस्थान का रेगिस्तान और कहानी में लगातार बढ़ता रोमांच, इन सब ने मिलकर कच्चे धागे को 90s के दशक की यादगार एक्शन फिल्मों में एक विशेषता बना दिया।
0: बिल्कुल, अपने रिश्तों के उन कच्चे धागों को हमेशा संभाल कर रखिए दोस्तों, जो शायद आपकी जिंदगी के सबसे मजबूत रिश्ते बन सकते हैं।

0: तो दोस्तों ये था हमारा आज का खास सेगमेंट एक ही फिल्म से। अब समय है आज के सवालों के जवाब देने का। मुझे उम्मीद है कि आपने इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब निकाल ही लिए होंगे। तो दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न था कि किस जानवर का दिल सबसे बड़ा होता है, तो उसका सटीक उत्तर है ब्लू व्हेल।
1: और दोस्तों हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि कैमरे से खींची गई दुनिया की पहली स्थायी तस्वीर किसने ली थी, उसका उत्तर है जोसेफ निसेफोर निप्स ने।
0: तो दोस्तों ये था आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। उम्मीद है आपको आज का ये खास कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति अपने दोस्त राज
1: और अपर्णा को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: मोनाली ठाकुर की आवाज़ में आप सुन रहे थे लुटेरा, इस फिल्म का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत था, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म संगीत में अगला गीत सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज़ है। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा, शांतनु मोइत्रा का संगीत और फिल्म का नाम परिणीता।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: फिल्म संगीत का आखिरी गीत, फिल्म का नाम माय नेम इज खान, शफाकत अमानत अली की आवाज़ है। निरंजन अयंगार ने इस गीत को लिखा, शंकर एहसान लाय का संगीत।

माय नेम इज़ खान इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है

0: कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी, स्वतः तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
0: जी।
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
0: जी,
1: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
0: जी।
1: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
0: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द, और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
0: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
1: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
0: जी।
1: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
0: जी।
1: इसे आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
0: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओं, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
0: जी।
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
0: जी।
1: उन्होंने इस शब्द को, यानी लूट शब्द को, अपनी भाषा में अपना लिया।
0: जी।
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
0: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओं, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
0: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
0: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओं, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
0: जी, तो प्रिय श्रोताओं, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: जी।
1: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती है।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार है, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं

0: पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियां न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
1: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
0: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी। नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
1: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
2: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
3: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
2: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
3: अच्छा,
1: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
0: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
3: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
1: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
2: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
0: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
0: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
1: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
1: हाँ।
0: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की

0: ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
1: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
0: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
1: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
2: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
2: डरो मत।
1: हाँ
2: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
3: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
1: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं, और मैं बीमार हो जाती हूँ।
3: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
1: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही इसीलिए जीवन चलता रहा।
1: अच्छा
2: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
1: मैं चलती रहूंगी। हाँ मैं हमेशा चलती रहूंगी।
3: चरैवेति चरैवेति, यही तो जीवन है।
0: चरैवेति चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान, चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलेन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं।

0: अरे ये पानी का नल?
1: हाँ,
0: अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे हाँ। अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ, यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
2: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
0: मिसेस केलर
3: जी,
0: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
3: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: तुम अच्छा पिया नो
1: हेलेन शाबाश हेलेन मिस सलीमन मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं
2: अरे नहीं नहीं मिसेस
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है मिस सलीमन
2: हेलेन
1: बोल सकती है

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, हैं और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आपको सुनवा रहे हैं नियम कानून गो की गाई गजलें। पहली रचना आपको सुनवाते हैं, कलाम है राहत इंदौरी का।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं नियम कानून को। इन्हीं के स्वर में एक और गजल सुनते हैं। कलाम है राहत इंदौरी का।

सुगम संगीत में आज कलाकार थे नियम कानून गो। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं विष्णु प्रसाद मालवीय के गाए लोकगीत। पहला लोक संगीत का गीत हम सुन रहे हैं, ये है एक झूला गीत।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं विष्णु प्रसाद मालवीय और साथी। इन्हीं के स्वर में अब सुनते हैं सावन गीत।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप लोक संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी रहेगा। इस समय आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना दे रहे हैं। श्रोताओं, इस गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को यानी कल सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में बच्चों में होने वाली बीमारियां और बचाव। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अजय दोषी शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 2710223 2710224 इंदौर का STD कोड 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 यानी कल सुबह 10:32 से 11:02 तक ये कार्यक्रम सुना जा सकता है विविध भारती FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं। स्वर है विष्णु प्रसाद मालवीय और साथी के। इनसे अब आप सुनेंगे एक किसान गीत।

विष्णु प्रसाद मालवीय और साथी के स्वर में आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आपको सुनवा रहे हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। शाम 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में जानेंगे। राजेंद्र कुमार जैन से भेंटवार्ता सुनिएगा, विषय होगा हरित भारत मिशन। घरेलू व्यंजन में पपीते का हलवा बनाने की विधि जानेंगे, घरेलू नुस्खे में पपीता के फायदे बताएंगे। एक और भेंटवार्ता सुनिएगा सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बीयू दुपारे से, सोयाबीन पर समसामयिक सलाह। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:15 पर होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत में सदाबहार फिल्मी गीत सुनिएगा। रात्रि 9:15 पर चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर। रात 10:00 आपको सुनवाएंगे नाटक राजदूत, लेखक पंडित विश्वास शर्मा, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवीय। शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10:30 पर आपको सुनवाएंगे ब्रजमोहन बामरेले का वायलिन पर बजाया राग पूरिया कल्याण। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित शेष कार्यक्रमों की। अब आपको विवरण दे रहे हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। कल सुबह भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा 6:05 पर। चिंतन सुनिएगा कल सुबह 6:30। खेती की बातें होंगी कल सुबह 6:35 पर। इसमें आप जानेंगे फेरोमोन ट्रैप से कीट नियंत्रण, इस विषय के बारे में। श्री रामचरितमानस गान का पाठ होगा कल सुबह 6:40 पर। साहित्य कल सुबह 7:20 पर साहित्यिकी के अंतर्गत आप सुनेंगे काव्य की अनुकांत विद्या नवोदित पीढ़ी के लिए कितनी प्रासंगिक। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा से ये वार्ता होगी। सुनहरे पल कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 7:35 पर। सुबह 8:30 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा कल सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर। कलाकार होंगे विंध्यवासिनी देवी और साथी। वर्षा मिश्रा की गाई कुछ रचनाएं आप सुनेंगे सुगम संगीत में कल सुबह 9:15 पर और शाम 6:30 पर। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कल सुबह 10:00। कल सुबह 10:05 से आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कल सुबह शास्त्रीय संगीत में 9:30 आप सुनेंगे बाबूलाल बारोट का सारंगी पर बजाया राग नट भैरव। दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से कुछ प्रसारित कार्यक्रम। 12:00 दिन में 2:00 होगा फिल्म संगीत। 11:00 से आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने संग्रहालय से कार्यक्रम दिन में 12:30। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा होगी डिजिटल युग में बढ़ता अकेलापन। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में भी जानेंगे। पलक जैन का कविता पाठ सुनिएगा रूप लावण्य में सौंदर्य बढ़ाए चटकीले रंग। फैमिली फिटनेस में आप जानेंगे ब्रेड खाए मगर ध्यान से। शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें भेंटवार्ता सुनिएगा पत्रकारिता और जन संचार क्षेत्र में रोजगार के अवसर जानकारी देंगी डॉक्टर सोनाली नरगुंदे। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम और शाम 7:30 से सुनिएगा किसान वाणी कार्यक्रम जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कल रात्रि 10:30 आपको सुनवाएंगे ललित मोदी का सरोद पर बजाया राग बागेश्री। और रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे मन भावन कार्यक्रम। तो कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की। नीट यूजी 2026 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को मजबूत करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडौरी जिला देश में पहले स्थान पर रहा और प्रदेश में वर्ग 3 के 1040 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मैहर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। हर बहन के खाते में रक्षाबंधन के 250 रूपये के शगुन सहित कुल 1,750 रूपये पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित किया।
8: श्री राम वन गमन पथ और 3,000 करोड़ से ज्यादा के काम चित्रकूट पे भी हमने मंजूर किए हैं और माता मैहर के लोक का भी पहले फेज का भूमि पूजन आज यहाँ हुआ है। कैबिनेट की बैठक में ये लाडली बहना चुनाव तो 2028 में है, लेकिन हमने फिर 5 साल आगे तक देने के लिए कल निर्णय किया है। बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अभी तक 65,000 करोड़ रुपए की राशि आप तक पहुंचाई।
7: इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने मां शारदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और स्वसहायता समूहों की बहनों के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को अपने निर्णयों में विवेकपूर्ण, अपने आचरण में करुणामय और सत्यनिष्ठा के प्रति अडिग रहने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी के साथ ही जनता की निष्पक्षता, विनम्रता और समर्पण के साथ सेवा करने का गहरा दायित्व भी आता है। नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई है। न्यायालय ने सुरक्षित परीक्षा केंद्र, बेहतर साइबर सुरक्षा, विशेषज्ञों की स्थायी व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव से हलफनामा दाखिल कर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही नंदन नीलकेणी समिति के सुझाए बदलावों को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के तहत आज उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नानाखेड़ा शांति पैलेस, शांतिनगर नीलगंगा और शांतिनगर मंछामन इंदौर रोड का निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने सड़क का लेवल एक समान रखने और निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क से मिट्टी हटाने, गड्ढों का भराव तथा नाले के पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
9: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
7: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 6 से 8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत हर साल करीब 130 अरब अमेरिकी डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अधोसंरचना के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में बातचीत की।
10: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
7: प्रदेश के डिंडौरी जिले ने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जुलाई महीने में देश के 100 चयनित जिलों में डिंडौरी को नंबर 1 रैंक मिली है। जिले में कोदो कुटकी, प्राकृतिक खेती और जैविक प्रमाणीकरण को बढ़ावा देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 1040 पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने वर्ग 3 के तहत सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, प्रयोगशाला तकनीशियन सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षाएं 6 अक्टूबर से शुरू होंगी। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने आज भोपाल में मत्स्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के साथ बैठक की। मंत्रालय में हुई बैठक में मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न जलाशयों में मत्स्य निवेश, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और निवेशकों की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार मत्स्य क्षेत्र को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर इसे उद्योग और रोजगार का मजबूत माध्यम बनाने के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को हर संभव सहयोग देने की बात कही। वहीं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि नवाचार तभी तक सार्थक हैं जब वे प्रयोगशाला से निकलकर निर्माण स्थल तक पहुंचे और उसके अच्छे परिणाम मिले। उन्होंने ये बात आज भोपाल में सतत अधोसंरचना कार्यशाला के दौरान कही। मंत्री ने नई तकनीकों को पहले परीक्षण और पायलट परियोजनाओं में आजमाने के बाद बड़े स्तर पर अपनाने पर जोर दिया। कार्यशाला में टिकाऊ सड़क निर्माण, नई निर्माण सामग्री, कचरे के उपयोग और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल में युवाओं को एकजुट करने और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्योपुर जिला कलेक्टर सभागार में सांसद शिवमंगल सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सांसद ने मुख्य सड़क के अप्रोच रोड की सुविधा से वंचित गांवों के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। अशोकनगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर लार्वा सर्वे, जांच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अनूपपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जन्म जयंती पर उनके सामाजिक न्याय व मानवता के संदेश के प्रसार के लिए समरसता संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। बड़वानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उल्लास अभियान के तहत एडीआर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ में आकांक्षी विकासखंडों में विकास कार्यों की समीक्षा व बेहतर मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को डिजिटल टूल किट का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवड़े ने कुकरू हिल्स स्टेशन पर कॉफी प्लांटेशन को बढ़ावा देने और जल संरचनाओं के एकीकृत प्लान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। सीहोर में इछावर तहसील के मोगरा रोड पर बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाने उतरे 3 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 2 सगे भाई थे। और खंडवा जिले में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान व समरसता यात्रा का आयोजन कल 20 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जाएगा। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली की खपत पर 20% तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की। नीट यूजी 2026 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडौरी जिला देश में पहले स्थान पर रहा और प्रदेश में वर्ग 3 के 1040 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,767 रूपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

जहाँ बिखरती रहे चारों तरफ सुंदर हरियाली, वहाँ मुस्कुराती रहे खुशहाली अन जीवन की डाली। कार्यक्रम को सुनने वाला सभी किसान भाई बहन का कवा उनकी सुनीता बहन की घनी घनी राम राम। बिछावा अपनी हरियाली का ताना बाना से बुने ली जा जम ने शुरू कर अपनो कार्यक्रम। अन भाई हमने बात करी कि सभी बहन की हरियाली की या डाली झूलो बंधेलो रहे, हरियालो रहे, अन मुस्कुराती रहे। आना उनकी मुस्कुराहट का बनौन का लेन छे या लाडली बहन योजना। आना मध्य प्रदेश का लेन मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना से जुड़ने का लेन योज कवांगा कि बहन की उम्र 21 से 60 बरस का बीच हो, अपनो मध्य प्रदेश की निवासी होनू चाहिए, आना विवाहित हो, आना विधवा ना अगर असो कई तलाकशुदा बहन हो, परित्यक्ता बहन हो, उनका नकालन भी यह योजना छे। इन्हीं योजना में 1500 रुपये नियमित रूप से सहायता के रूप में तमका मिलेगा या तुम्हारी आर्थिक सहायता छे, तम एका से अपना जीवन का सुधारी सको। और एक साथ में ये बतावांगा कि इन्हीं योजना का लाभ लेने का लेन यो छे कि परिवार में कोई भी सदस्य हो वो सरकारी योजना में नहीं होनी चाहिए। आयकर को जो दाता छे वो नहीं होनी चाहिए। अन 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं मिलनी चाहिए, न 4 पहिया वाहन भी नहीं होनू चाहिए। तो इन्हीं योजना को लाभ लेना करने हम कहवांगा कि जो भी जरूरी दस्तावेज छे, जैसे बैंक खातो हो, क्योंकि सीधा बैंक में पैसों जाएगा, वो अपनो निवास को पतो, भाई तुम्हारी उम्र, यो सब जो जरूरी जरूरी दस्तावेज छे वो लई ना ना इन्हीं योजना से जुड़ो, एक आनंद लो। आन भारत की जो योजना न छे सरकार की, उन्हीं योजना न कभी समझनू अन उनका में भी अपनो सहयोग करनू। हमने बात करी थी हरियाली की, तो हरित भारत मिशन का ही आए, हरित भारत क्रांति मिशन का ही आए, एका बारा में सुनाने पर यह वार्ता अपन का जानकारी दे रहे थे।

यह भारत सरकार की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत चलाए जा रहे प्रमुख राष्ट्रीय मिशन में से एक है। आइए एक कल्पना कीजिए, सुबह हम घर से निकलते हैं, सूरज तेज है, हवा गर्म है, सड़क के दोनों ओर कंक्रीट की इमारतें हैं, लेकिन पेड़ दिखाई नहीं देते, पक्षियों की आवाज सुनाई नहीं देती। इसी दृश्य को थोड़ा बदल कर देखिए, सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं, सुबह पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, तालाब में पानी है, हवा में हरियाली की ठंडक है। आप कौन सा भारत अपने बच्चों को देना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैंने जो कहा, दूसरा भारत। इसी महत्वपूर्ण परिकल्पना को साकार करने का मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। हमें कुछ हटकर सोचना है, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ के साथ हमें एक कदम आगे का सोचना है। हमें केवल पेड़ ही नहीं लगाने हैं, पेड़ों को बचाना भी है। केवल जंगल बढ़ाना नहीं है, जंगलों की गुणवत्ता भी सुधारनी है। हमें केवल पर्यावरण की चिंता करनी नहीं है, बल्कि पर्यावरण को, उसके संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। यही सोच का नाम है ग्रीन इंडिया मिशन, हरित भारत मिशन। इसके व्यापक लक्ष्यों में है वनों और वृक्ष आवरण को बढ़ाना, खराब हो चुके वन क्षेत्रों को पुनरुद्धार करना, जैव विविधता को संरक्षण देना, जल एवं मिट्टी का संरक्षण करना, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भारत को मजबूत बनाना। भारत सरकार ने इस मिशन के तहत जो लक्ष्य रखा है वह इस प्रकार है, 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन लगाना और वन का आवरण बनाना, वृक्षों का आवरण बनाना। अतिरिक्त 50 लाख हेक्टेयर में वन गुणवत्ता सुधारना, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को मजबूत करना, जैसे कार्बन का भंडारण एवं अवशोषण, जल संरक्षण एवं जल संबंधी सेवाएं, जैव विविधता संरक्षण। लगभग 30 लाख वन आधारित परिवारों की आजीविका और आय में वृद्धि करना, ऐसे अनेक लक्ष्य व उपलक्ष्य भी हैं जो इस मिशन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप जानते हैं एक पेड़ कितना काम करता है। वह हवा को शुद्ध करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित भी करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, मिट्टी को बचाता है, जल संरक्षण में मदद करता है, पक्षियों और जीव जंतुओं को आश्रय देता है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है, कहीं अत्यधिक गर्मी है, कहीं बाढ़, कहीं सूखा और बदलता मौसम हमें चुनौती दे रहा है। ऐसे समय में हमें प्रकृति से दोस्ती करनी होगी, दोस्ती भी ऐसी कि जिसकी मिसाल दुनिया दे सके। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी यह मिशन इसी सोच पर आधारित है कि जन भागीदारी ही सबकी हिस्सेदारी। सरकार अकेले पर्यावरण नहीं बचा सकती। हम सोचें, विचार करें कि सरकार कैसे ये सब काम करेगी, सरकार क्या कर सकती है वह हमें बता रही है, और हमें क्या करना है यह हमें सीखना है। हमें यह भावना पैदा करनी होगी कि यह पेड़ हमारा है। सरकार अकेले हर कार्य नहीं कर सकती, वह योजना बना सकती है, बजट दे सकती है, पौधे उपलब्ध करा सकती है, लेकिन पौधे को बड़ा समाज ही कर सकता है। ध्यान रहे, हम पौधा लगाएं और अपनी जिम्मेदारी इसमें जोड़ लें। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। हम अपने घर से राष्ट्रीय हरित भारत मिशन की शुरुआत कर सकते हैं। घर में हम पानी की बचत कर सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम करके भी इस मिशन में सहयोग कर सकते हैं। कचरे को अलग अलग, सूखा कचरा, गीला कचरा, मेडिकल का कचरा, ये सब अलग अलग रख करके भी हम इस मिशन में सहयोग दे सकते हैं। पूरे भारत को ग्रीन इंडिया बना सकते हैं, हरित भारत बना सकते हैं। हम छोटे

0: सा प्रयास करें जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर स्मृति चिन्ह के रूप में एक पौधा प्रदान करें। कंक्रीट के बढ़ते जंगलों, वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच हम तय करें सड़क के किनारे वृक्ष, विद्यालयों में हरित क्षेत्र बने, जल स्रोतों के आसपास हरियाली हो। आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। हम संकल्प लें, एक व्यक्ति एक पौधा नहीं, एक व्यक्ति एक पेड़ की जिम्मेदारी ले। पौधे लगाने के साथ यदि पेड़ों को बचाने का संकल्प हो तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पेड़ केवल धरती पर खड़ा हुआ तना नहीं है, वह हमारी सांसों का साथी, पक्षियों का घर, मिट्टी का प्रहरी और आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। हमारे किसान भाइयों और सभी साथियों, हमारे किसान भाई इस हरित भारत के प्रहरी हैं और हम सभी जल, जंगल, जमीन तीनों का संरक्षण कर सकते हैं। हमें अपने क्षेत्र की मिट्टी, पानी, जलवायु, जैव विविधता के अनुसार देसी और स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ध्यान रहे, प्रकृति संतुलन विविधता से बनता है। हमें पेड़ों के साथ हमारे तालाब, कुएं, नदियां, भूमियां भी संरक्षित करनी होंगी। पेड़ होंगे, पानी नहीं होगा तो भी जीवन कठिन होगा। पानी होगा, जंगल नहीं होंगे तो भी पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा। जंगल पानी दोनों होंगे लेकिन जमीन का संरक्षण नहीं होगा तो भी समस्या बनी रहेगी। इसलिए ग्रीन इंडिया मिशन, हरित भारत मिशन जल, जंगल, जमीन तीनों के संरक्षण की बात करता है। तीनों का संरक्षण ही पर्यावरण संरक्षण है। आइए आज हम विचार करें, हम अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं और स्वच्छ पानी भी चाहिए होता है। हम उनके लिए संपत्ति एकत्रित करते हैं लेकिन हरित संपत्ति कौन बनाएगा? हम भारत सरकार के साथ ग्रीन इंडिया हरित भारत मिशन के साथ एक संकल्प लें, एक पौधा लगाएंगे, उसे पेड़ बनाएंगे, पानी बचाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे, हरियाली बढ़ाएंगे, हरियाली को बचाएंगे, कम से कम एक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे, ग्रीन इंडिया मिशन को जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हरित भारत स्वस्थ भारत होगा, स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत होगा। आइए ग्रीन इंडिया मिशन के साथ चलें, भारत को हरित भारत बनाएं। याद रखें, पेड़ लगाना भविष्य में निवेश है, पानी बचाना जीवन बचाना है, जंगल बचाना पृथ्वी बचाना है, और हम प्रकृति के मालिक नहीं, प्रकृति के संरक्षक बने। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबको हरा भरा नमस्कार।
1: तो अभी अपन ने सुनी ये हरित भारत मिशन का बारे में जानकारी। अपन का जानकारी दे रहा था राजेंद्र कुमार जैन। इनके अच्छी जानकारी का लेन धन्यवाद देवा। आन साथ में सुनी लेवा कुछ संदेश।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
5: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
1: बहनोनी, आज छे सावन शुक्ल की सप्तमी और आज छे गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी। उनको जन्म थो 1532 ईस्वी और दुनिया को छोड़ी 1623। मन इना बीच मन श्री रामचरितमानस को रचयिता रहा लिखियो, एक साथ में हनुमान चालीसा भी लिखी जो आज हर घर में मौजूद थे, हर बच्चा बच्चा की जीवन बचे। तो आज अपनी चौपाल से अपन तुलसीदास जी की जयंती पर उनका नमन करा, उनका से आशीर्वाद लेवा आने योज कवांगा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के वीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। सुना जो प्यारो सो लोकगीत सीताराम वर्मा की आवाज में।

0: तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, बिल्कुल सही छे। तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी की भक्ति करी, हनुमान जी की भक्ति करी और एक असोहम का ग्रंथ दियो श्री रामचरित मानस की लोक लोक न का जनहित न का जुबान पर हो और उन लोक जीवन से जुड़ेला, जैसे हमारा हमारे से जुड़ेला खेती बाड़ी का अवलंबन लियो, जैसे उन प्रतीक लिया हमारा दैनिक जीवन से जुड़ेला नख लियो और जन जन तक अवधि भाषा में लोक भाषा को विस्तार भी करो। एक कारण उनका हम चौपाल से नमन भी करा और खेती बाड़ी की बात करा और खेती बाड़ी में अभी आपने अपना खेत नमन खरीफ की फसल लिए ली छे अने ओ काम देखो अभी तो पानी की सामान्य अपन कवांगा पर अरु कई आपको समसामयिक सलाह की जरूरत छे हमको मालूम छे तो एकालेन आज अपना चौपाल पर डॉक्टर बीयू दुपारे जो प्रधान वैज्ञानिक छे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर का अन उनका से सलाह ली थी वो सलाह हम आपको सुना रहे सोयाबीन के बारे में, तो सुना उनकी यह सलाह।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर बीयू दुपारे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से आपसे बात कर रहा हूँ और इस समय पे सोयाबीन की फसल में तीन प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है और ये जो प्रकोप हमें जो समाचार मिला है इंदौर के आसपास के जो 5-6 जिले हैं वहाँ पे प्रथमता देखे गए हैं, किसानों से भी मिले और मैं खुद जाके भी देख के आया हूँ। तो पहली बीमारी जो पिछले महीने से उसका प्रारंभ हुआ था पीली मोज़ेक की वायरस की बीमारी और ये बीमारी ऐसी होती है किसान भाइयों की शुरुआत में कुछ कम पौधों पे लगती है और इसमें पीला पौधा पड़ जाता है, पत्तियों का कुछ पीलापन ऊपरी पत्तियों पे दिखाई देता है, कड़क हो जाती है और चितकबरापन हो जाता है। तो ये बीमारी कम पौधे पे अगर रहती है तब उसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है और एक बिना खर्च का एक तरीका यह है कि ऐसे पौधों को तुरंत अपने खेत से उखाड़ के बाहर कर दे, जला दे, गड्ढे में गाड़ दे, क्योंकि क्या होता है कि इसमें यह विषाणु जो रहता है वायरस रहता है वो इसी पौधे में रहता है और इस पौधे के ऊपर जो सफेद मच्छर बैठ के उसका रस चूसते हुए फिर उसके बाद में जब दूसरे पौधे पे जाके रस चूसने के लिए जाएगा तो यहाँ का वायरस दूसरे पौधे पे छोड़ देता है। तो एक सप्ताह के अंदर में यह बीमारी पूरे पौधों में पूरे खेत में फैल जाती है, इसलिए शुरुआत में जब कम पौधे पे ये जो बीमारी आती है उस समय पे इसको पौधों को उखाड़ के फेंक सकते हैं और साथ ही साथ सफेद मच्छर को नियंत्रित करने के लिए जो रस चूसक कीड़े के नियंत्रण के लिए अनुशंसित दवाइयां हैं जैसे कि बीटा साइप्लोथ्रिन और इमेटा क्लोप्रिड है या आपके क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, लैम्ब्रा साइलोएथ्रिन है, तो ऐसी दवाइयों को लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर दे ताकि सफेद मच्छर का नियंत्रण हो जाए और सफेद मच्छर दूसरे पौधे पे ये बीमारी फैलाने के लिए हम उसको नियंत्रित कर पाए। तो ये होगी इसके साथ में एक और तरीका है कि अपने खेत में पीली चिपचिपी पट्टियां आप लगा सकते हैं जिसको कि आप ग्रीस लगा सकते हैं या कोई ऐसे चिपचिपी पदार्थ लगा सकते हैं तो सफेद मच्छर उसके ऊपर आके चिपक जाए और उसका पीढ़ी वहां पे खत्म हो जाए, उसका प्रजनन नहीं हो पाए। इसके साथ साथ जो दूसरी बीमारियां है एक और देखी जा रही है कि एंथ्रेक्नोज नाम की जो बीमारी देखी जा रही है उसमें क्या होता है कि शुरुआत में ये भी कम पौधे पे रहती है और पत्तियों की निचली जो सतह है उसके ऊपर कालापन शुरू हो जाता है, शिराओं से लेते हुए वो तने तक चला जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा काला पड़ जाता है और पौधा मर जाता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए जो अनुशंसित फफूंद नाशक है जैसे कि कार्बेंडिज़म है या मैंकोज़ेब है उनका एक छिड़काव अपन फसल पे प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हैं। तीसरी और जो बीमारी देखी जा रही है राइजोप्टोनिया यूरियल ब्लाइट और पिछले 2-3 साल से हम लगातार अपने प्रदेश में इसका प्रकोप बढ़ते हुए देख रहे हैं और पिछले साल भयंकर रूप से इससे नुकसान भी हुआ था और इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो है उसमें पानी से सड़ा हुआ जैसे होता है ना वाटर लिजन हम उसको कहते हैं, तो पत्तियों का जो भाग है पानी से गलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा फिर सड़ जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जैसे कि बाकी बीमारियों की तरह ही प्रारंभिक अवस्थाओं में इसको हम कर सकते हैं कि एक अनुशंसित फफूंद नाशक है पायरोक्लोस्ट्रबिन और उसका जो फॉर्मुलेशन आता है प्रायक्सर के नाम से बाजार में आता है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं और ये अगर हमने सावधानी रखी जैसे ही हमारे खेत में बीमारी देखती है तभी हमने कर दिया, इन तीनों बीमारियों को समय रहते नियंत्रित हम कर सकते हैं और इन रोगों के कारण फसल में होने वाले नुकसान में या उत्पादन में होने वाली कमी से हम बचा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि समय रहते इसका नियंत्रित करें और अपनी फसल को नुकसान होने से बचाएं। धन्यवाद।
0: तो अभी अपन ने सुनियो ये सोयाबीन पर समसामयिक सलाह जानकारी दे रहा था डॉक्टर बीयू तुपारे, प्रधान वैज्ञानिक सोयाबीन कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर से। इन्हीं जानकारी का साथ सुने लेवा कुछ अरु संदेश भी।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
0: भाई अब असो छे कि आज अपन घरेलू जो काम छे पपीता का फायदा जाने कि पपीता का कई फायदा छे। पपीता का देखो पांटा नको भी फायदो छे, अने कच्चो खाओ तो भी फायदो छे, अने पकेलो खाओ तो भी फायदो छे। पपीता का कच्चा पांटा नख ओको काड़ो बने नगर पियांगा तो असो जानकार भई कच कि डेंगू की जो काम छे प्लेटलेट्स की कमी हुई जाए वो ओकाम जल्दी से जल्दी बढ़ज और बहुत जल्दी ओको विस्तार हो। पपीता में बीटा कैरोटीन पाए जाए, विटामिन ए पाया जाए, एंटी ऑक्सीडेंट ओकाम ज़्यादा मात्रा में पाए जाए। एक पपीता को ओक या तो तुम फल का रूप में भी ऐसा खाई सको, ओके कच्चो पपीता तो सब्जी बने न भी खाई सको, ओको हलवो बने न भी खाई सको। हाँ एक बात करो ध्यान रखो कि पपीता अगर नींदा पेटा खाई लोगो तो वो लीवर कलन बड़ो गुणकारी रहे। तो नींदा पेटा खाओ तो घणो अच्छो रहे, कब्ज की बीमारी का दूर कराए। पण अपनी गर्भवती बहन छी उन्हीं चीज को ध्यान रखा कि वो नहीं खाए, क्योंकि एक अंदर पपेन नाम को एक एंजाइम पाए जाए और वो गर्भावस्था का दौरान बड़ो कठिनाई दे। एकालेन पपीता का वो बिल्कुल भी नहीं खाए, और जिनका एलर्जी हो कहीं ऐसा चीज कि एलर्जी भी करे तो एका कारण उनका भी चिकित्सक सलाह लेना न पपीता को सेवन करा सी बहन। पपीता का और बहुत सौंदर्य के रूप में भी फायदा हो जाए। अगर एक खत्म पपीता का पीसी लेगा, एक कच्चा दूध के साथ लगे लेगा तो रूप भी निखरी जाएगा। और वजन कम करने का लेन भी पपीता बड़ो गुणकारी छे। अगर एक नियमित सेवन करोगा तो एकासे वजन भी कम होगा। हाँ एक बात फिर और यहाँ कहवांगा कि जैसे किडनी की जेख दिक्कत हुई रही उनका भी डॉक्टर से पूछी न एको उपयोग करना चाहिए। तो पपीता को उपयोग सौंदर्य का लेन भी छे, पपीता का लेन तंदुरुस्ती का लेन भी छे और हर बीमारी में भी यो काम करे। यह बात तो करी पपीता का फायदा की। अब मन अरो कर रहे छी कि एक लोकगीत अरु ही जाए फिर होएगा अपनी बातचीत। सुनान यो प्यारो सो लोकगीत।

वाह, हरियाली आंगन छाई धरती माता को सिंगार, अभी अपन न बनस्वाती उखलियन उनकी मंडली को गाय लो, यो प्यारो सो हरियालो हरियाली वालो लोग गीत सुनियो, घणो आनंद भी आयो। अन जब सावन की बात आवज, हरियाली की बात आवज, तो झूला भी याद आवज, सखी सहेली ने याद आवज, पियर याद आवज, पियर की बयार याद आवज, तीज त्योहार याद आवज, कि जल्दी जल्दी कहो यो सावन जाए, भादव लगा ना अपन अपनो तीज त्योहार राखी को त्योहार करा, और अच्छा अच्छा मिठाई ने भी बने ने ले जाओ। तो लियो हम तमार लेन लाइन आयल छे कच्चा पपीता को हलवो, तम जाइन ने तमारा पियर में जरूर से खवाड़जो। जल्दी जल्दी तम एक ही सामग्री लिखी लो। तो यह सामग्री छे कच्चो पपीतो अपन ख लेणु 500 ग्राम, आन दूध लेणु अपन ख फूल जेका में मलई अच्छी हो वो 1.5 से 2 कप, शक्कर अपन के चाहिए 3 मतलब 1/4 कप, पर तम मीठो खाता है तो 1 कप भी चलेगा। देसी घी 2 से 3 बड़ा चम्मच। अब काजू बादाम किशमिश जो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति हो ड्राई फ्रूट में वो ले सको, जेका अपन कहवा नहीं ड्राई फ्रूट वो, आना इलायची पाउडर वो भी तुम्हारो 1 छोटो चम्मच आवज जो वो नाक लगो। अब सबसे पहला तुमका करनू कि पपीतो हो कच्चो का मजे को धोई लो, का में दूध निकलेगा सो तो को धोई लो, ओका छिड़ी लो मजे को, आना बीच में से काटी न नौका जो बीच छे वो निकाल लो, ओका मजे को कद्दूकस कर लो। अब तुमका मोटो करनू हो तो मोटो न, पतलो करनू हो तो पतलो, जसो भी किस करनू हो तब ओका किसी लो। कढ़ाई रखो, ओका अंदर 1 चम्मच घी नाखो, नौका गैस पर अपना चूल्हा पर चढ़ाई दो। अब जब न जो ड्राई फ्रूट लिए ला छे देखा अपन काजू बादाम किशमिश जो भी तुम्हारा पास हो वो ले, ओका उनका नखा जरा भूरा होना तक सेकी लो, उनका नमक से वो निकाल लो, प्लेट में अलग धर लो। अब घी गरम ज रहेगा, ओका अंदर अपन ने जो जो पपीता छे जो कद्दूकस करेलो छो किसेलो पपीता छे वो ओका में नाकी दो। घी कमती हो तो जरा अरु नाकी दो। आवा ओका धीमी मधुरी मधुरी आँच पर 3 से 4 मिनट तक अपन का सेकणो। जब ओको रंग जरा हुई जाए क्योंकि देखो वो धौड़ो रहे कच्चो पपीतो, कभी कभी अध पक्को अध कच्चो भी हुई जाए तो ओको भी जरा केसरियापन पर हुई जाए, पर जरा को काम अपन देखांगे पारदर्शीपणो आड़ा लगी जाएगा। तो वो हुई जाए मजे को सेकाना लगी जाए, ओ काम आप तम वो जो दूध छे वो नाकी लो, दूध नाकी न जरा कांच ख बढ़ाई देजो, अन ओख दूध का पक्को आउटाड़ लो। जब दूध लगी जाए कि आउटी गएल छे आवा ओका अंदर अपनी शक्कर भी नाकी दो। शक्कर नाकी न थोड़ी देर अरु ओख चढ़ावांगा तो भाई शक्कर पिघलेगा तो फिर पानी हुई जाएगा, फिर उना पानी ख अपन ख आउटाणु सड़सड़ाणु, अन तम देखोगे कि वो जराक जराक अपनी कढ़ाई का हलवो छोड़ने लग गए थे। तम तम गैस बंद कर दो, ओका अंदर अपनो इलायची को पाउडर नाकी दो, आना जो ड्राई फ्रूट जेखा अपन कह रहा है कि काजू बादाम किशमिश की कतरन थी या ओका आधा टुकड़ा जैसा तम का नाकणू है वो ओका में तम नाकी दो, आना मजे से यो हलवा को स्वाद लो, तम भी आनंद लो न तुम्हारा परिवार का भी खवाड़ो। भाई यो बात करी अपन ने घरेलू व्यंजन की, आन देखो बात करता करता इतने हमारा पास मंडी न का भाव भी आई गए छे, तो क्यों नहीं पहला तम खाऊ मंडी का भाव बते दूँ। या भाव आयल छे अपनी लक्ष्मीबाई मंडी का, तो सोयाबीन की आवक रही 912 अन भाव बठियो 3300 से लगाई न 6660 रुपया, आन घऊ की जो आवक हुई 1995 अन एक भाव रहो 2150 से लेना 2850 रुपया। चना की अपनी आवक तो 2 क्विंटल रही 5675 एको भाव बठ्यो। असोज मटर की भी अपनी 2 क्विंटल आवक बठी भाव रहो 2955। तो ये भाव तो रहा अपनी लक्ष्मीबाई मंडी का। मारा पास संयोगिता गंज मंडी छे जो अनाज मंडी ओका भाव आई गए छे, तो वो बते दियो तुमका सरसों की 3 क्विंटल आवक रही भाव रहो 6600 लगी ना 7500। सोयाबीन की 444 क्विंटल आवक रही अन भाव रहो 4600 लगी ना 6650 रुपया। गेहूँ की 1725 क्विंटल आवक रही भाव रहो 2300 लगी ना 2990। मक्का की 5 क्विंटल आवक रही अन 2026 एक भाव रहो।
ज्वार की भी अपन बतावांगा कि 2500 को भाव रहो 15 कुंटल आवक रही, राजमा की 5 कुंटल आवक रही 6000 से लगे न 11700 रुपया भाव रहो। डालर चना 1721 कुंटल आवक रही 4500 से लगे न 9505 रुपया की रहे भाव बैठो। चना को 195 कुंटल आवक रही 198 कुंटल आवक रही अने भाव रहो 4450 लेना 7905 रुपया। मटर की 87 कुंटल आवक रही भाव रहो 1405 से लगे ना 3670 रुपया। तुवर की 6 कुंटल आवक रही 2400 से लगे ना 5960 रुपया रहा अने मेथी की 1 कुंटल आवक रही भाव रहो 4600 रुपया। तो भाई ये तो आज की मंडी का अपना भाव था। अने बात करी थी अपन न अपनी कि भाई अपन का पियर में जानो भाई मीठो सीठो लेने न जानो भाई छे भतीजा छे भोजाई छे जब वाट भी देखी रहा कि कम भूआ आवागा न कम अपन त्योहार मनावांगा अपन का अब से तैयारी न करता चलना पड़े। तो उन्हीं तैयारी में क्यों नहीं अपन अपना हाथ से बनेली राखी ले जावा। भाई रेशम का धागा की बात कर ले वहाँ अपना पास जसो सोय साय हो अपना बच्चे लोग कपड़ो अगर अपन न कहीं करे हो तो ओकी कपड़ा की बनाई सकन चमकीला कपड़ा न कि रेशम को कपड़ो हो ओकी बनाई सकन। भाई बच्चे लोग ऊन अगर अपना पास से नहीं भी बच्चे हो तो भी ले आया तो ऊन न की भी आजकल खूब राखी न चली रही वो भाई हरी नीली पन्नी न खूब आना लग गए छे वो फिर असो फोम आना लग गए रंग बिरंगा ओकी भी अपन राखी ने बनाई सकन। तो हम योज कहवांगा कि बड़ न अपनो शोक कुशोक पूरो हुयो न हस्तकला में निपुणता भी आई गई सिलाई कढ़ाई बुनाई तो करी राज पर ओका से हटी न अगर अपनी बहन न अपना भाई का अपना हाथ से बने ली अगर राखी बांध तो भाई का भी कितना अच्छा लगेगा अने साथ में जो भतीजा भतीज है उनका भी कहते अच्छा लगे कि अरे हाँ हमारी बुआ का तो आई जाए। तो हम योज कहवांगा कि अपना ज्ञान का अपना कौशल का बढ़ाओ और अपना शोक कल्याण करो तो करो उसकी साथ में एक आर्थिक स्तर पर भी हो जाएगा क्योंकि तमखा अगर तुम्हारा पास समय छे और अच्छो ज्ञान छे तो तुम एक नी चार बनाओगा चार नी 14 बनाओगा सभी बहन ने एकटे हुई ना अगर इना काम का करेगा तो तुमका आर्थिक लाभ भी हो सकेगा। तो हम यो कहवांगा कि इना छोटो सो काम छे पर एका से जुड़ा और अपना लेन भी आर्थिक रूप से भी व्यवस्था कर लेवा और अपने आसपास की बहन छे उनका नके भी दे देवा क्योंकि यो बाजार छे इना बाजार की उपलब्धता भी छे और अपन का समझ भी छे तो उन्हीं समझ को पूरो पूरो लाभ लेवा अने ऐसा घरेलू उद्योग ने से जुड़ता जावा और अपनी जो लोक संस्कृति छे लोक परंपरा छे ओखा भी अपन जीवित रखने को काम करा। भाई हमारा कार्यक्रम को समय हुई चलो घड़ी तो इशारो कर रही और हम तुमको पतो भी बतावा हमारा पतो छे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र मालवा हाउस इंदौर पिन छे 452001। हाँ पतो एक आलन बताई रहा कि तुम कारड चिट्ठी भी लिख जो हो हमका हमका भूल ही मत जाजो तुम और तुम्हारा गांव में तुमने कहाँ को अच्छो काम करेलो छे बड़ नो इन कहाँ

0: घूमना फिर न गई, कहाँ की नवी जगह देखी, ओको भी ध्यान रखा। अब सुनीता बहन का देव विदा, कवा सभी बहन का राम राम।
1: अभी आप ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो रेलवे और राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। 13,041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये दर्शाता है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की रणनीति में सरकार निवेश को कितना महत्व दे रही है। आज इन खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ केवी प्रसाद। केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद जी।
3: मंत्रिमंडल ने जो आज रेलवे और राजमार्ग से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए 13,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो निवेश हो रहा है ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये क्षमता बढ़ाने में कितना लाभदायक है और आने वाले वर्षों में जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखकर के अगर ये फैसला लिया गया है तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसा असर देखने को मिलेगा?
4: अगर हम पहले भारतीय रेल की ओर जगह जिसमें काफी निवेश के बारे में अलग अलग प्रोग्राम अनाउंस किए, करीब 13,000 करोड़ के ये कैबिनेट के जो फैसले हुए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में रेलवे को माना जाता है जीवन यापन के लिए, खासकर जो लोगों के आवाजाही और माल ढुलाई के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। और जब नीतिगत और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है और हम जिस तरह से 2047 विकसित भारत का लक्ष्य साधे हुए हैं, उसमें मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है कि जब तक आप एक तरफ हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा तेजी से विकसित करे और उसी की वजह से रोजगार और तमाम सारी चीजें जुड़ी होती हैं, ऐसे में रेलवे जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है उसमें काफी विस्तार की बात की है। जो 4-5 लाइन जो की है, कुछ एग्जिस्टिंग लाइन्स को 4th लाइन 3rd लाइन इस तरह बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि इसमें दोनों चीजें, एक तो ये है कि ये मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट जैसे कहा गया है, और एक जो सबसे बड़ा रूट है हावड़ा और चेन्नई के बीच, जो कि हम जानते हैं कि एक कोस्टल एरिया है और साथ ही साथ कई सारी, इसको हाई डेंसिटी रूट कहा जाता है क्योंकि काफी हद तक इसमें लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई होती है।
3: प्रसाद जी, 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की बात हुई है जिसमें लगभग 410 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 410 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बिछाना कोई आसान काम नहीं है। तो आज के समय में, मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय रेलवे के सामने बढ़ती यात्री संख्या और माल यातायात के बीच में एक समन्वय बनाने की आवश्यकता नजर आती है। तो नई लाइनें और अतिरिक्त जो ट्रैक बनाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इन समस्याओं का वो स्थायी समाधान दे रहे हैं हमें?
4: जी, कोशिश तो उसी तरफ रहती है क्योंकि जिस तरह से हमारे जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, चाहे वो फ्रेट का ट्रैफिक हो या लोगों का, दोनों के लिए समस्या है। और हम ये सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे की जो राजस्व होता है वो ज्यादा से माल ढुलाई से होता है और पैसेंजर ट्रैफिक कई खासकर नीचे श्रेणियों में तो काफी हद तक सब्सिडी सरकार उसको कंसेशन पे देती है, तो सरकार को उसमें राजस्व इतना नहीं होता और वो क्रॉस सब्सिडी के नाम पे माना जाता है। तो ऐसे में जब आप नई व्यवस्था बनाएंगे और खासकर जैसे उड़ीसा में बालासोर है, वहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और पारादीप पोर्ट की तरफ ये इनलैंड कंटेनर यानी कि जो माल ढुलाई के लिए जो मूवमेंट है वो एक काफी आसान करेगा। इसके साथ साथ जो आसपास के वहां पे इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, चाहे वहां सीमेंट के हों और इस तरह की चीजें हैं, उसकी तरफ भी फायदा होगा क्योंकि पूरी तैयारी हुई है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसमें देखें माल ढुलाई में, तो कई सारे क्षेत्र इसको कवर करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे खनिज हो, चाहे वो इस्पात हो, तो कई सारी चीजें जो कि आपको जरूरी है आपकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में। और जैसे आपने कहा कि एक समन्वय बनाने की तैयारी है, वो इससे ज्यादा होगा।
3: प्रसाद जी, अपने श्रोताओं को हम ये जरूर बता दें कि खड़गपुर, भद्रक, हरिदासपुर, गुमिड्डी पुंडी, गुद्दूर और कटक पारादीप जैसे औद्योगिक कॉरिडोर हैं और माल परिवहन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। आपने भी जिक्र किया कि कोयला, लोह अयस्क, स्टील, सीमेंट कंटेनर और अनाज की आवाजाही में काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के समय में लॉजिस्टिक की लागत घटाने पर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है, तो ये जो परियोजनाएं शुरू की जा रही है, जिन पर काम अब किया जा रहा है, ये कितना असर डालेंगी, कैसे ये सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी?
4: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे माल ढुलाई में देखा जाता है कि पहले जमाने में होता था कि आप पैसेंजर ट्रैफिक को ज्यादा देते थे और माल ढुलाई की गाड़ियों को कम प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में जो उत्पादक हैं वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका सामान या जो भी उनकी रॉ मटेरियल जो भी उनकी चीज है वो गंतव्य तक पहुंचे, चाहे वो अपने फैक्ट्रियों में पहुंचे या फैक्ट्री से तैयार माल जहां उनको निर्यात आयात के लिए करना है, तो तमाम सारी चीजें जुड़ी रहती है। तो जो भी कंजेशन है, जो भी बॉटलनेक्स है, उसको कम करने के लिए जो अलग अलग लाइनों का विस्तार हो रहा है, जैसे कहीं तीसरी लाइन है वो, लेकिन मालूम है कि कुछ दिनों बाद वहां पे आपको समस्या आएगी, तो सरकार वहां चौथी लाइन की तैयारी कर रहे हैं। और कई जगह तो लाइन थोड़ा सा मतलब जैसे कहते रूट कम करें, जैसे हमने देखा कि सड़क में नेशनल हाईवे में काफी कटौती कर रहे हैं कि समय बचे और वक्त बचे, जिसके साथ साथ पर्यावरण के भी अच्छा असर पड़े।
3: सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से करीब 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों तक पहुंच बेहतर होगी। तो आपको लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाने के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे।
4: जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि रेल जो है एक भारत की जीवनी है, मतलब लोगों के लिए सुविधा है, लोग अपने सामान्य जीवन में जो रोज सफर करते हैं, जैसे हम दिल्ली में हम जानते हैं कि दिल्ली के आसपास कई सारे जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर, वहां से लोग सुबह रोज चलते हैं, दिल्ली आते हैं, यहाँ अपना कारोबार के लिए या कार्य के लिए या नौकरी के लिए आते हैं और फिर शाम को घर लौटे जाते हैं, और ठीक इसी तरह दिल्ली से भी अन्य आसपास के शहरों में। तो ये इस तरह का सुविधा और प्रांतों में भी है, लेकिन उसका विस्तार जरूरी है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और बढ़ी हुई है, और अगर हम विकास चाहते हैं और जिसमें कि आप चाहते हैं कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करें और आपके पास मूवमेंट आसानी से हो, लोग आसानी से आ जा सकें और सस्ते दामों में भी आ जा सके, क्योंकि आज के दौर में तो ये सब कॉम्पिटिटिवनेस की जब हम तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है, और लोगों के लिए भी बहुत सुविधा है। अगर जैसे मैंने कहा कि दिल्ली और आसपास के शहर, बॉम्बे जो आसपास है, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर है, वहां पे ये आम बात है कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से और आसपास के छोटे छोटे शहरों से लोग पलायन करते हैं, दिन में अपना काम करके शाम को अपने घर लौट जाते हैं। तो इस तरह की सुविधा बढ़ेगी तो ये निश्चित तौर पे इसी और आगे बढ़ेंगे हम।
3: वैसे सरकार ने इन रेल परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, और श्रोताओं आपको हम ये बता दें कि इन परियोजनाओं से कुलदिहा, भीतरकनिका, पुलिकट झील और ललितगिरी जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। तो रेल संपर्क ये जो बढ़ेगा, इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार में किस तरह की बदलाव होने की गुंजाइश आप देखते हैं?
4: सरकार का अपना अनुमान है कि रेलवे का जब विस्तार होगा और आपके आसपास के छोटे ग्रामों में या छोटे जगहों पे जहाँ की रेल की सुविधा थी या बहुत ज्यादा नहीं थी, अगर जहाँ नहीं है वहाँ पहुंचाया जाए, मसलन जैसे अगर आप कहें कि जो एक साउथ में जो एक प्रोजेक्ट का है गुमेडपुंडी और गुडूर के बीच में तीसरा और चौथी लाइन, इसमें अनुमान है कि 90 किलोमीटर की लाइन है, लेकिन इसमें यह है कि ये जो गुडूर एक शहर है वो आंध्र प्रदेश में, तो चेन्नई, विजयवाड़ा, रेणीगुंटा बहुत बड़ा जंक्शन है, चेन्नई और विजयवाड़ा तो बहुत ही बड़ा जंक्शन है, तो वहां से ये इंटरचेंज सेशन बन जाएगा। और इसके साथ साथ सरकार का अनुमान है कि वहां पे 2-3 टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है, चाहे पुलिकट लेक हो, निलपत्तू बर्ड सेंचुरी हो, और जैसे सरकार ने ये भी पिछले दौर की जो हमारे यहाँ दर्शन के लिए लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों के लिए, तो वहाँ एक वीरा स्वामी का पेरुमल टेम्पल है। तो इस तरह से ये देखिए जब पर्यटन पहुंचेगा, चाहे वो लोग अपनी आस्था को लेकर जाएं, तो आसपास के छोटे जो कस्बे हैं वहां पे लोग पहुंचेंगे, तो रिलीजियस टूरिज्म की वजह से ये देखा गया है कि बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और स्थानीय लोगों को उसको जरूर एक रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी आमदनी का स्रोत बनता है। और पर्यटक जब बढ़ेगा और अंदरूनी इंटरनल टूरिज्म मतलब घर के अंदर ही लोग इधर से जाएं अलग अलग जगह, तो वो निश्चित तौर पे आर्थिक व्यवस्था में बहुत मदद करती है।
3: प्रसाद जी, अगर रेलवे के हम विस्तार की बात करें तो ज्यादा समय तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 1-1.5 दशक के भीतर रेलवे ने काफी विस्तार किया, इलेक्ट्रिफिकेशन में काफी काम हुआ है, लाइनों के दोहरीकरण या अतिरिक्त संख्या में ट्रैक बनाने की भी गतिविधियां काफी तेज हुई हैं। मैं आपसे अगर पूछूं तो रेलवे का जो फोकस है धीरे धीरे यात्री परिवहन से कहीं आगे बढ़ रहा है, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, तो इस बदलाव को आप कितना सफल मानते हैं, और क्या हम ये कह सकते हैं कि रेलवे सड़क परिवहन से ज्यादा माल अपने नेटवर्क से खींच रहा है अब?
4: पिछले करीब 20-25 साल से ये कोशिश रही है कि रेलवे को जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है जो सड़क यातायात से, खासकर सड़क माल ढुलाई से, ट्रक से, और उस पे कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को कम करे, और क्योंकि रेलवे की क्षमता बहुत है। अगर एक बारी आपने कोई 20 और 50 वैगन को, और इसीलिए आप जानते हैं को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बड़े शहरों के बीच में बनाया गया, दिल्ली मुंबई के बीच में बात की गई, उधर दूसरे वेस्ट कोस्ट में भी तैयारी हो रही है, इसलिए कि भाई आप एक पॉइंट टू पॉइंट निश्चित तौर पर, जैसे मैंने कहा आपने में सामान उठाया दिल्ली से, और मुंबई में अगर पहले जमाने में चलती थी गाड़ी एक मालगाड़ी का तो पता ही नहीं होता था कितने दिन में पहुंचेगी अपने गंतव्य पे। अगर आप प्रतिस्पर्धा के दौर में पहुंचाना चाहें कि 3 दिन में आपने कहा है कि आपका सामान पहुंच जाएगा, तो तीसरे दिन पहुंचना चाहिए गंतव्य में, तभी तो आप प्रतिस्पर्धा करेंगे, तभी तो आप पहुंचाएंगे चीजों को वक्त पे। और वैश्वीकरण की जब बात हुई थी तब यही देखा गया था कि अगर आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आपके पास ये बहुत जरूरी है कि गुणवत्ता के अलावा आप समय पे अपना कमिटमेंट पूरा करें, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक केंद्र है।
3: श्रोताओ, बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा के 82.57 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है। तो प्रसाद जी, बिहार जैसे राज्य के लिए इस परियोजना का आर्थिक और रणनीतिक महत्व आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव आएगा?
4: जी बिल्कुल, इसमें एक तो जो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर और सोनबरसा के बीच में जो आज की तारीख में करीब 2 घंटे लगते हैं वो कम होकर 1 घंटे में सफर पूरा तय करेंगे। इससे ये होगा कि 3 चीजें जो हम ध्यान रखते हैं, एक तो ये है कि लोगों का खर्चा कम होगा, कम समय पे आप सड़क पे रहेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी जो समस्याएं आती है कि अधिक ईंधन फूकेगा तो हम सब जानते हैं पर्यावरण दूषित होता है उसके लिए है, और तीसरा ये है कि आसपास जैसे कहते हैं आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, और जो ये कनेक्टिविटी है जैसे अभी रेलवे में हमने बात की थी, ठीक इसी तरह यहाँ एक बाबा गरीबनाथ मंदिर है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ माता जानकी का टेम्पल है सीतामढ़ी, जिसको सब काफी जिनका श्रद्धा और आस्था का स्थान है, तो उसको कनेक्ट करेगा। तो साथ ही साथ ये जो सड़क जिस परियोजना की आपने बात की है करीब 3,500 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो पीएम की गतिशक्ति के जो बिंदु बने हैं उसको भी जोड़ता है, क्योंकि एक तरह से ना समग्र विकास की बात हो रही है, क्योंकि पीएम गतिशक्ति अपना एक निर्धारित समय पे चलता है और उसको प्रधानमंत्री खुद समय समय पे उसका देखते हैं कि ताकि कोई भी बाधा हो तो उसको सब मिलके उसको सुलझाएं जल्द से जल्द, तो ये उसी दिशा की ओर कदम है।
3: प्रसाद जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक्सप्रेसवे, आर्थिक कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर काफी जोर दिया। हम देख रहे हैं कि हर महीने 2 महीने में हमें ये खबर जरूर मिलती है कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार हुआ या फिर एक नया कॉरिडोर हमारे सामने है। लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो कि हाईवेज को अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं इसके पीछे आप क्या मानते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य चीजों को ये कितना फायदा पहुंचाएगा?
4: इसमें 2 पहलू हैं। एक तो आपने यहाँ गति, जो हम चाहते हैं कि देखिए आज सब भागदौड़ की जिंदगी है, सब कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना चाहते हैं, तो जो वक्त 8 घंटे लगते थे अब दिल्ली से अमृतसर कम कर दिया है, जो अभी जो लेटेस्ट हाईवे बना है रास्ते कम किए हैं, दिल्ली चंडीगढ़ का होता था ये तो मैं नॉर्थ के बता रहा हूँ, तो और भी जिस तरह क्षेत्र है, क्योंकि एक्सप्रेस वे बनने से होता है कि आप एक तो डेडिकेटेड है तो आप गति ज्यादा दे सकते हैं, जैसे आपने 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप जा सकते हैं, शहरों में तो हम जानते हैं कि 40 के 50 से सड़कें रेंगने लग जाती है क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक होता है, लेकिन आप गंतव्य अगर एक नेशनल डेस्टिनेशन पहुंचे, दिल्ली से अगर आपको जयपुर पहुंचना है पहले 5 घंटे लगते थे, अगर मान के चलिए वो 3 घंटे में, तो 2 घंटे में आपका काफी काम हो जाता है, कई लोग तो सुबह जाके दिल्ली चंडीगढ़ और सुबह जाके रात को वापस आ जाते हैं, तो इस तरह से गति जब होती है तो आपको कार्य करने की पद्धति बढ़ जाती है, और जब कार्य करने की पद्धति बढ़ती है और आपके पास ज्यादा वक्त होता है अपने काम करने का, तो आर्थिक विकास में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
3: प्रसाद जी, एक अंतिम प्रश्न है, बहुत ही कम शब्दों में आपके विचार इस पर जानना चाहूंगा। भारत अब हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, आधुनिक माल ढुलाई कॉरिडोर और बेहतर हाईवे नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर 2047 को हम एक लक्ष्य मानकर चल रहे हैं तो इन सारी गतिविधियों को आपके विचार में इनका क्या योगदान रहेगा? बहुत कम शब्दों में
4: इनका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा फैक्ट्री में सामान तो पड़ा है लेकिन उसको आप आगे नहीं पहुंचा पा रहे तो उसका विस्तार नहीं हो पाएगा, तो ये सबसे जिसे कहते हैं मूलभूत और ढांचागत नीतिगत तैयारी है, जिसके बगैर हम अपने 2047 के लक्ष्य के लिए साधना साथ तो लिया पहुंचना कठिन होगा।
3: केवी प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा।

0: में भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

उनके आते ही निगाहें चमक उठती हैं, उनके आते ही निगाहें चमक उठती हैं, खिल जाती है चांदनी, सितारे भी झूमने लगते हैं। मन कहता है इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, मन कहता है इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, अब उनसे मुलाकात होगी। हम दिल की हर बात ज़माने को बताना चाहते हैं, अपने दिल में छुपे हर राज पर्दा उठाना चाहते हैं। ये कैसा मंज़र है, ये कैसा है ख्वाब, ये कैसा मंज़र है, ये कैसा है ख्वाब, क्या यही प्यार है? दिल कहता है हाँ, यही प्यार है।

तुम आए तो सही, लेकिन कुछ ही पलों में जाने की बात करने लगे। मैं तुम्हें जाने न दूंगी, अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगी। वो दिन नहीं, वो रात नहीं, वो दिन नहीं, वो रात नहीं, वो पल पल नहीं जिस पल में आपकी बात नहीं। आपकी यादों से अब हमें मौत भी अलग नहीं कर सकती। तुम बहुत याद आते हो हमें।

हमारा दर्द गम है ये, इसे क्यों आप सहते हैं। हमारा दर्द गम है ये, इसे क्यों आप सहते हैं। ये क्यों आंसू हमारे आपकी आंखों से बहते हैं। गमों की आग हमने खुद लगाई, आप क्यों रोए। गमों की आग हमने खुद लगाई, आप क्यों रोए। जो हमने दास्ता अपनी सुनाई, आप क्यों रोए।

0: कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा अंतराल, फिर हाजिर होते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
4: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
3: मतलब?
4: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
5: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया।

0: दिल की तन्हाई में खो गई हूँ मैं, हर खुशी से दूर हो गई हूँ मैं। तेरी यादों का साया हमेशा साथ है मेरे, इस दर्द के सिवा अब कुछ बाकी नहीं है मुझ में। एहसास मिटा, तलाश खत्म हुई, जो न मिट सका था वो थी बस तेरी याद।
1: वो जब याद आए बहुत

आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी, जब हम न होंगे तब भी हमारी यादें होंगी। कभी पलटोगे जिंदगी के ये पन्ने, तब शायद आपकी आंखों में भी बरसात

0: तेरी यादों को पसंद है मेरी आँखों की नमी, हंसना भी चाहूँ तो रुला देती है तेरी कमी। इसी वादे के साथ फिर मुलाकात होगी, अब इजाज़त दीजिए पद्मश्री तपस्वी को, नमस्कार। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, समाचार संध्या कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता, केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली डीपीआर और अपर्याप्त भू वैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
3: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल, अभी बहुत कठिन है ये जो

0: में काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जाँच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जाँच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से

0: 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
2: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 1 डॉलर की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority, says centre will review subcontracting norms. US Ambassador Sergio Gore hails steps taken by Centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating US military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India seal a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul. The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
5: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं.
6: 5 major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
5: A total 13,041 crore rupees ke projects aaj cabinet ne approve kiye.
4: The proposed projects will enhance connectivity to approximately 6,448 villages with a population of about 60 lakhs, improve rail access to major tourist destinations and strengthen the transport of key commodities including coal and iron. Mr. Vaishnav informed that the Cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard.
6: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbarsa on the Nepal border and passes through Sitamarhi and Muzaffarpur. It will create a complete transport artery which will benefit Bihar for many years. It is an 83-kilometer brownfield project under which the existing road will be upgraded into a 4-lane highway with an investment of 3,591 crore rupees.
4: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor.
7: We need fixed policy for the different type of tunnels, bridges and road projects, which is a permanent policy for technical and financial qualification is very, very important. Other important thing is we are very much interested in the government about financial audit. But now after 12 years of my experience in this ministry, I am coming to conclusion that the performance audit is more important than financial audit. If you have a contractorship, you don't need to earn 2 paise, but the quality of construction is good.
4: Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has said the government aims to triple the country's air cargo volume by 2030. Mr. Naidu was speaking at the inauguration of new sectors under the Transcargo Security Hold Area to enhance air cargo connectivity from Delhi Airport today.
8: India is strategically located in such a

अनोखा दान इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश का लिखा गीत था, सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम घर संसार, आशा भोसले मन्नाडे की आवाज है। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, रवि का संगीत।

0: कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: हेलो
0: हेलो,
3: आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। यदि खुलवाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भेजा गया ओटीपी बताएं।
4: ओटीपी? बैंक तो ओटीपी नहीं मांगता, लगता है ये फ्रॉड है।
5: श्रोताओं, विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हर शुक्रवार सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच लेकर आता है साइबर जागरूकता पर केंद्रित विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 बजे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ेंगे इंदौर कमिश्नरेट से DCP सुनील मेहता जी और स्टेट साइबर सेल इंदौर से DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी। तो आप इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलें और आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी जिज्ञासाएं और आपकी समस्याएं आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो सुनना ना भूले, शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच हमारा विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। और विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हो रहे हैं DCP इंदौर सुनील मेहता जी और DSP स्टेट साइबर सेल नरेंद्र सिंह रघुवंशी।
6: जब भी आपको करे जो कोई परेशान, हो जाओ खबरदार होशियार, सोच समझ और देखो।

हमारे फ़ोन नंबर 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूले। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 सुबह 10:32 से 11:02 तक कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। और अब चित्रगीत में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम संग दिल, तलत महमूद की आवाज़। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा, सज्जाद हुसैन का संगीत।

चित्रगीत में आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से

0: दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं, जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
1: नमस्कार। सो बेसिकली जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है, एंड 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो top 5 ग्लोबल में आए, तो उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाए, जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना इम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है, कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% यूपीआई ट्रांजेक्शन जो 18 से 29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
0: बिल्कुल। अश्विनी राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
2: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। तो मशीनें काम नहीं कर सकती, और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी के हैं या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझे और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि, और अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चा उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगा कि पहली बार लोन रहा, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है। और जैसे जसवीर सर ने बोला कि अब कस्टमर आता ही नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर है, दोनों ह्यूमन बींग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधारम मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके।
0: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में कोशिश की जाएगी। अश्विन जी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पर नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है, और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा, तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की एड आती है क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इश्यू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की एड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं, तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं, उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के, ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे एप्स को बैन किया है और इस तरह के एड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
1: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है, तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम्प करके नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम का भी था, कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खुले। और जैसा अश्विन ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिए जाए, ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दीज पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए FDs वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाए।

0: तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए वो हमारे लिए भी फायदा और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई और साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
0: तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजोल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होने चाहिए ताकि जिस पर्पज और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीके हो जाता है कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें, तो सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी न रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भाई हाँ भाई ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे वो एक बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचेस और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज को अचीव करना चाहते, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा आज जैसे डिपॉजिट की बात मोबिलाइजेशन की गई, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते
1: हैं। जी, और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई, एक थीम थी उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं? अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई

0: वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है।
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काबू
0: हाँ
1: पाया
0: भाई,
1: जा
0: सिर्फ
1: सकता
0: ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो
0: जी
1: ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
2: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपके पास है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीआई बढ़ रहा है, बट उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी, बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया, आईबीएम में हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर की, टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट की कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट, डिजिटल रिस्क जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है I4C इंटरनेशनल, अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है 1930 पे कॉल करके, बट वही है कि जितना अवेयरनेस लाएंगे, जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ, तो अब लोगों को ओटीपी समझ गया कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फोरम में, इवन बैंक्स अपनी मीटिंग्स में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बुलाएगी, हर तरह के अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में, तो इसलिए काफी बैंक, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन में साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी की 1930 और ये www. ये साइबर, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर लोड कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है, तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और यही कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिल रहा है।
1: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
0: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, वे किस तरह के, अब जैसे SMS है, तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो, या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं, कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें RBI कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रिक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजैक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल इम्प्लाई की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके, उनको जनरल बैंकर इम्प्लाई मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा एक सुझाव है, हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
2: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हुआ उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही। तो कोलोबरेशन मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज की IT और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन तो जैसे अश्विनी सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर। और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए ऐसा मटेरियल बनेगा। और जैसे अश्विन सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोरस्टेप बैंकिंग है, तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
2: हाँ देखिए दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
2: बदलाव देखिए अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो CBDT है या डिजिटल करेंसी या RTGS, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्विन जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
0: देखिए सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वही प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदन जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
2: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर एज पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। बट अभी जो यूथ

0: अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है एक यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं। तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, और बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब SIPs सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप हजार हजार करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली। तो यही है कि अब जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जैसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1 लाख रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है, यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो, या जिनको उनको लगे कि यस उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए कि अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का कि ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2027 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिलेंगे?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि अगर हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है, और थ्रू डाटा एनालिटिक हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे, तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे, और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: कृष्ण जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो, जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, MSME है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है
5: ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रस्तुत है रामायण कालीन प्रसंग पर केंद्रित नाटक, जो रावण के अहंकार को प्रदर्शित करता है। इस नाटक में बालीपुत्र अंगद और रावण के बीच संवादों का युद्ध है, जो श्री राम द्वारा युद्ध टालने के अंतिम प्रयास के रूप में भेजे गए दूत अंगद द्वारा किए जाते हैं। तो आइए सुनते हैं नाटक राजदूत। आलेख पंडित विश्वास शर्मा का है, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता हैं संजीव मालवीय।

0: स्वामी, तो क्या सोचा है आपने?
1: किस विषय में?
0: सीता को लौटाने के विषय में।
1: अब तो सारे निर्णय हो चुके हैं।
0: सुना है राम सैन्य लंका में प्रविष्ट हो चुके हैं।
1: तो अब महारानी भी गुप्तचरों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करने लगी हैं। और क्या क्या सुना है आपने?
0: गुप्तचर तो आपके भी हैं महाराज, पर आप किसी की सुनते कहाँ हैं?
1: अरे हम लंकेश हैं, लंकेश। लंका में कहाँ क्या हो रहा है ज्ञात है हमें।
0: ज्ञात है? नहीं नहीं, आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि आप कटु सत्य सुन ही नहीं सकते, इसीलिए आपके गुप्तचर भी आपको वही सूचनाएं देते हैं जो आपके अहम को तुष्ट करती हैं।
1: महारानी,
0: आपके क्रोध से बचने के लिए ही वो ऐसा करते हैं।
1: ठीक है, तो आप चाहती क्या हैं?
0: मैं युद्ध की विभीषिका से लंका को बचाना चाहती हूँ, और इसका एक ही उपाय है महाराज, सीता को लौटाना।
1: क्या?
0: राजधर्म का पालन करो लंकेश, सीता राम को सौंप दो और राज्य पुत्रों को। आओ हम चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करें।
1: महारानी, आप चाहती हैं कि वनवासी राम से क्षमा की याचना करूं?
0: महाराज, आप इसे अन्यथा न ले। राम बड़े कृपालु हैं, रक्षा करते हैं वे शरणागत की। एक बार अपने अहम को त्याग कर सोचे, परिणाम सुखद ही होगा।
1: शरणागत, लंकेश शरणागत। लंकेश की पत्नी को इस प्रकार प्रलाप करना शोभा नहीं देता। महारानी, क्या तुम मेरे पराक्रम से परिचित नहीं हो?
0: लंकेश, जिस राजा की शक्ति लगातार क्षीण होती जा रही हो, या बल और पराक्रम में जो राजा समतुल्य हो, तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमान राजा को अपने शत्रु से संधि कर ही लेना चाहिए, और यही राजधर्म है।
1: मंदोदरी, अपनी जिह्वा को नियंत्रण में रखो, कहीं ऐसा न हो कि हमारे हाथों कुछ अनर्थ हो जाए।
0: महाराज, राज राजेश्वर रक्षेश की जय हो। दरबार में आपकी प्रतीक्षा हो रही है नाथ।
1: तुम चलो, हम आते हैं। महारानी, हमारे प्रस्थान की तैयारी करो।
0: जो
2: विश्व के सर्वोत्तम शिल्पियों द्वारा निर्मित अमूल्य व मनोहारी रत्नों से अलंकृत विद्वत्तर रसिक हृदय विश्व विख्यात पराक्रमी राज राजेश्वर महाराजाधिराज लंकापति रावण की राज्यसभा का वर्तमान अधिवेशन एक गंभीर विषय के विचारार्थ बुलाया गया है। सावधान, सावधान, सावधान।
3: विश्व विजेता महाराजाधिराज लंकापति की
4: जय हो, जय हो।
2: राजाओं के महाराज चक्रवर्ती शीश मुकुट विश्व विजित सार्वभौम सत्ता नृपेश की द्विती दमदमाती रहे, ज्योति जगमगाती रहे, छाई रहे विश्व में कीर्ति लंकेश की
4: जय लंकेश, जय लंकेश।
5: महाराज की जय हो।
6: शत्रु सेना का समाचार सुनाओ गुप्तचर।
5: अन्नदाता की जय हो। मैंने अपने सरल उपाय द्वारा शत्रु सेना का हर प्रकार से निरीक्षण किया महाराज। हे पृथ्वीनाथ, वही महाबली भयंकर भीमकाय लंका जलाने वाला वानर राम लक्ष्मण का देह रक्षक बना हुआ एक विशाल गदा हाथ में लिए हुए हर समय युद्ध को तत्पर है।
6: आगे कहो।
5: अब आगे क्या कहूँ महामंत्री, अभी अभी महाबाहु पराक्रमी रामचंद्र ने एक महाबली वानर इधर भेजा है, इतना ही समाचार ज्ञात हुआ है महाराज। यदि यदि अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूं?
6: हाँ हाँ कहो।
5: भला अब तो इसी में है सिया ढिंग राम पहुंचा दो। प्रलय आई है लंका में, जो लौटानी है लौटा दो।
1: ठहर गुप्तचर। महामंत्री।
6: आज्ञा महाराज।
1: इस जाति द्रोही गुप्तचर को प्राण दंड दिया जाए।
6: जो आज्ञा महाराज। वज्र मुष्टि, गुप्तचर को वधागार में ले जाओ।
5: नहीं महाराज, क्षमा कीजिए महाराज।
1: त्रिभुवन में अजय लंकापुरी के मंत्रियों और सभासदों, अब समय आ गया है कि विश्व में विध्वंस मचाने वाले तुम्हारे शस्त्रास्त्रों को युद्ध भूमि फिर से पुकार रही है। इसलिए अपनी जाति व देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ।
4: जय लंकेश, जय लंकेश।
2: अन्नदाता, तपसी सेना से अंगद नामक एक वानर आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है, है बुद्धिमान, बलवान भी है। यदि आज्ञा हो महाराज तो आने दो उसे राजसभा में।
7: पिताश्री, ये वही वानर होगा जिसने भ्राता का वध किया है, इसलिए हमारी राय यही, बंधवा कर बंदी करा लीजिए। कल भ्राता का आल चौराहे पर मस्तक छिन्न करा दीजिए।
1: पुत्र मेघनाद, हमें आपकी बात सुनकर बहुत दुख होता है कि जिसने रावण के राजकुमार को लंका में ही मार डाला वो वानर नहीं नाहर है। हाँ, है उचित करें स्वागत, उसका आदर से उसे बुला लेवे, उस योद्धा को चतुराई से हम अपनी ओर मिला लेवे। वध राजदूत का अनुचित है, इसलिए राय यह उचित है, राज्यसभा में उसको आने दें, हर तरह ये बात उचित ही है।
6: जो आज्ञा महाराज।
8: जय श्री राम।
1: जय शंकर।
8: जय श्री राम।
1: अरे निर्भीक वानर, ये किसके नाम की जय बोल रहा है? नाम किसका लेके तू जिह्वा को दूषित कर रहा? व्यर्थ अमृत स्थान में तू विष अचानक भर रहा। मूर्ख, जब तू नाम मेरा तो हो सफल रसना तेरी, देख ले ऐश्वर्यमय है स्वर्ण नगरी ये मेरी। निपट वानर निरक्षर तू, तुझे सुध है न तन मन की, झुका कर शीश जय जय बोल वसुधा नाथ रावण की।
2: अरे वानर, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि ये विश्व विजेता महाराज रावण की राज्यसभा है? ये राजसभा है लंका की, कुछ सोच समझ मुख खोल, यहाँ भाषण करने से पहले शब्दों को मन में कुछ तू तोल। यहाँ
8: सभ्यता का ढोल पीटने वाले पशु, तो राज पुरुषों के बीच तीसरे का बोलना सभ्यता के विरुद्ध है। यदि तू श्री रामचंद्र की सभा में इस प्रकार अनाधिकार बोलने की चेष्टा करता तो ज्ञात है क्या होता?
2: क्या होता?
8: चीर कर महोदर तेरा कृशोदर मैं बना देता, अग्नि में तप्त कर लोहा तेरी जिह्वा जला देता। अगर हो बुद्धि कुछ तुझ में तो सभ्यता का नाम मत लेना, कहीं लेने के बदले में तुझे पड़ जाए ना देना।
1: तुम मौन रहो राजभट, प्रसिद्ध अखिल विश्व में लंका की सुंदरता प्रति विश्वकर्मा की अनुपम मनोहारी है। स्वच्छ सकल अति उत्तम मार्ग तथा महामार्ग, दीखत मुख प्रतिबिंब ऐसी सुखारी है। मुक्ता अरुहीर कादि जड़े स्वर्ण भवनों में, शिल्प कला चित्र कला उच्चतम सारी है। इच्छा हो देखने की तजकर संकोच कहो, घूमो निर्भीक आज्ञा हमारी है। मंत्री जी।
9: महाराज।
1: आगंतुक युवक लंका के रमणीय स्थल देखना चाहता है।
8: नहीं, ऐसा नहीं है लंकेश।
1: तो क्या माता पिता या किसी और के शब्द बाण से घायल होकर त्याग दिया हो यदि ग्रह, अपना हृदय धैर्य आवेश में खोकर?
8: नहीं, ऐसा भी नहीं है महाराज। है अंगद नाम मेरा और रामदूत कहलाता हूँ, युवराज हूँ वानर देशों का। महाराज, बाली में और तुम में मित्रता थी भरपूर, कुछ उचित मंत्रणा दूं तुमको, तभी तो आया इतनी दूर।
1: क्या कहा? बाली?

0: कौन बाली, कौन राम?
1: हो सकता है स्मरण न हो, उस समय आपको मूर्छा थी, जिस समय बाली की कांख में थे अत्यंत अचेत अवस्था थी। भगिनी शूर्पनखा जी को तुम घर में नित्य देखते हो, इसीलिए अचंभा तो ये है, श्री राम को कैसे भूलते हो?
0: बस ओ दुष्ट, शांत हो, ये ध्यान रख कि राजदूत की क्या मर्यादा है, अन्यथा हम भी तुझे दंड देने को विवश हो जाएंगे। मूर्ख, भला रावण से लड़ने की शक्ति किस में है? कुल कलंकी, पितृ घातक, नीच बुद्धि और अधम, मर गया क्यों ना जगत में जन्म लेने से प्रथम। व्यर्थ में अज्ञानतावश कर्म तूने क्या किया, राज्य लिप्सा के लिए जो बाप को मरवा दिया। किस लिए आया यहाँ रे पितृदोही पातकी, लाभ तुझसे क्या जो निज घर में ही तूने घात की।
1: महाराज, आप मेरे पिता के मित्र हैं, अतः आपने मुझे जो भी अपशब्द कहे मैं उनका विस्मरण करता हुआ आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तुम्हारा श्रेष्ठ कुल है और हो वेदों के तुम ज्ञाता, तुम्हारा तप प्रशंसनीय है संसार सब गाता, स्वयंभू से किए वर प्राप्त तो अभिमान कर बैठे, जगत जननी सीता को तुम मूर्खतावश हाय हर बैठे। जो जीवन सुख प्रतिष्ठा चाहते हो लोक में रावण, तो जगत जननी महामाया करो श्री राम को अर्पण।
0: अर्पण? तू सत्य कहता है रे वानर, वो महामाया क्या, वो तो मोह मूर्ति है, विश्व सुंदरी है। महामाया है यदि वो, तो उसे माया से ही हर लाया, किसी की है ना वो माया, हमारी है महामाया। हाँ।
1: महामाया को क्या जाने वो, जगत जननी महामाया संग लाई है लंका में तुम्हारे काल की छाया।
0: क्या छाया? छाया? अरे अधम, जहाँ वो है मेरा मन बनकर रहता वहीं छाया, जिसके रूप का मेरे हृदय उन्माद सा छाया।
1: छी, नाथ सिंहासन पर बैठकर क्यों पागलों सी बातें कर रहे हो लंकेश? है भला अब तो कि तुम अपराध अपना मानकर सोचकर अपनी बुराई दूर सब अभिमान कर जान की राम के अर्पण करो, करबद्ध हो सर झुकाकर श्री चरणों में पूज्य उनको जानकर। कहा मानोगे यदि मेरा तो होगी तुम्हारी सद्गति, न माना तो याद रखो हर तरह से होगी दुर्गति।
0: बस, अरे निरंकुश वानर, तुझे मेरे पराक्रम का ज्ञान नहीं जो इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें बना रहा है? काट काट कर ललाट कीने हैं तप विराट, खान पान त्याग दीने चिंता तज प्राण की, सुरगण भयभीत किए तीन लोक जीत लिए, मुझ में वो शक्ति है शिव के वरदान की, त्रिया के शोक में निर्धन बलहीन जो समता बतावे दुष्ट बालक नादान की, सोने की लंक में बैठा निशंक मैं, चाहूं तो गति रोक दूं विश्व के विधान की।
1: गोप है कराल काल जगति के रक्षपाल, अवतरित हुए हैं जो हेतु धर्म त्राण की, दुस्तर समुद्र का आए है बांध सेतु, देख लो पौलस्त्य केतु शक्ति विज्ञान की, वो करके बुद्धि भ्रष्ट पाओगे घोर कष्ट, जगा लो जो जगानी है ज्योति सत ज्ञान की, जोड़ हाथ झुका मान मुख से करो नम्र बात, सात दंड द्रव्य ले अर्पित करो जान की।
0: रे अल्प बुद्धि, कहते हैं दश वदन मुझको सब देवगण, चार वेद छह शास्त्र सिद्धियां सब ज्ञान की, कह दे जा

0: कह दे जा राम से, सोए आराम से, रावण की जान में अब रम चुकी है जानकी।
1: आती है विनाश की घड़ियां जब जीवन में, नष्ट सब शक्ति हो जाती है ज्ञान की। होना है वंश का तेरे विध्वंस अब, जानकी को दे दे यदि रक्षा चाहे जानकी।
0: रे मूर्ख वानर, अधिक बढ़ चढ़ कर बातें मत बना, तू दूत है मेरा गुरु नहीं।
1: ठीक है महाराज, किंतु एक बात पर विचार करना आवश्यक है। यदि दोनों पक्षों में लड़ाई हुई तो लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों घर नष्ट हो जाएंगे, लाखों माताओं की गोद सूनी हो जाएगी। और इन सब के साथ साथ एक बात और भी है।
0: बोल।
1: जब तक दशानन राजा की ये सुंदर मूर्ति है जी रही, तब तलक बाली राजा की भी कीर्ति सर्वत्र है जीवित ही। अर्थात आपके दर्शन कर ये स्मरण हो ही जाता है, जो रहा बाली की काख में वो ही रावण राजा है। इसीलिए जियो और अनंत जियो, तुम बाली राज के स्मारक हो, और जीने का है लाभ यही, श्री राघवेंद्र के सेवक हो।
0: मूर्ख, क्या इस छोटे से मुंह से बड़ी बड़ी बातें बना रहा है नादान? मैंने दिक्पालों तक से पानी भरवाया है, और तू मुझसे सेवा करने को कहता है? मैं वो विषधर मत वाला हूँ जिसके काटे की दवा नहीं। तू दूत है, इससे सभा में मैं दे सकता तुझको दंड नहीं, पर अब मैंने ये ठान लिया, इन सब बातों का बदला लूंगा। सभा से जब तू बाहर होगा मैं तुझको मरवा डालूंगा। हाँ।
1: महाराज, जब प्राण दंड का आदेश हो ही चुका तो मैं भी क्यों ना अपने मन की निकाल लूं?
0: बोल रे अधम।
1: पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। दो चार दिनों में रावण तू संसार से जाने वाला है। लंका का राज विभीषण को चलते हाथों देते जाओ, कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ साथ लेते जाओ। निर्णय कर लो रानियों से, हे लंका के नाथ, कौन कौन सी होएंगी सती तुम्हारे साथ।
0: कतरनी सी जो चलाता है, कुचल दूंगा ये फन तेरा, यहीं पर छटपटाएगा पल भर में ये सर तेरा। दुष्ट दुष्ट सावधान हो, क्या सपोलिये की तरह फन फनाने लगा जिसके बल पर तूने ये तीखी तीखी बात कही? उस तपसी में, उस बच्चे में कुछ भी बल बुद्धि ज्ञान नहीं। गुणहीन बाप ने जब जाना तो देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी के विरह में, इस दुख ने शव सा किया उसे।
1: ओह, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, उसको गोहत्या का भारी अपराध वहीं पर लगता है। क्या करूं, स्वामी की आज्ञा नहीं, अन्यथा इसका प्रतिफल तुझे अभी दे देता। अभिमानी, जिसके बल पर तू फुला हुआ है वो एक भी तेरे काम नहीं आएंगे।
0: रे मंद बुद्धि, वारे बंदर के बच्चे, धन्य है तू और तेरी स्वामी भक्ति। ठीक ही तो है, वानर का तो स्वभाव ही होता है कि अपने स्वामी की हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता है। जो उसे टुकड़ डालता है, रात दिन उसी के संकेत पर नाच नाच कर पैसे इकट्ठे करता है। मूर्ख, कहां मैं लंकेश और कहां राम?
1: जिन निश्चरों के गुण तू गाता है वो तेरा दर्प है, छल है। अच्छा, लेता हूँ परीक्षा, देखूं किसमें कितना बल है।
0: परीक्षा? सुन लिया सभासदों, परीक्षा।

0: अरे कोई है, सर पृथक कर दो अभी इस दुष्ट का तलवार से, भेज दो परलोक इसको कर विदा संसार से। आंख गिद्धों को खिला दो, श्वान चाबे हड्डियां, कर रहा बातें अधिक ये दूत के अधिकार से। या हम कर रहे इस पर, ये सर पर चढ़ता ही जाता है, दीपक सा भड़कता है, कालवश बुझना ही चाहता है।
1: ओ जीवन से दूर मदांध वानर, बता प्राणदान चाहता है या मृत्युदंड? चलेगा खड्ग मेरा, तेरा मुखमुंड तड़पड़ाएगा, उधर सुग्रीव हो निश्चिंत, सुन ले खुशियां मनाएगा।
2: मेघनाथ, मुझे मालूम है कि तूने देवराज इंद्र को परास्त किया है, इसीलिए तू अपने बलाभिमान में फूला हुआ बातें कर रहा है। सुन ले और ध्यान से सुन ले कि ये दुष्कृत्य वो तूने, निकट है अब काल तेरा, अपनी संपूर्ण शक्ति से भी हिला नहीं सकता पद मेरा।
0: क्या कह रहा है मतिमंद?
2: सत्य कह रहा हूँ दशकंद, प्रतिज्ञा आज करता हूँ, ये पहली बार जीवन में लगाकर ध्यान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलन में। ऐ साक्षी पवन दिनकर, चंद्रमा नक्षत्र नभ सब ही, उठाए पांव कोई वीर यदि शक्ति हो जरा तन में, उठाया पांव यदि मेरा मैं हारा लंकापति जीता, श्री रघुनाथ लौटेंगे समर से हार कर सीता।
0: हार कर सीता? देख रहे सब लोग, आप फंसी मछली स्वयं ही मृत्यु रूपी जाल में, आ गया निर्बुद्धि अपनी ही भयंकर चाल में, उठा कर पग तेरा आघात से अब चूर्ण कर देंगे, तुझे और तेरे उस स्वामी को अभी संपूर्ण कर देंगे। सैनिकों क्या देखते हो, तैयार हो जाओ, उठो वीर सुख, उठो, पांव पकड़ कर झटका देकर दे मारो पाषाण शिला पर, रामा दल में गिरे फेंक दो शब इसका चहु और घुमा कर।
3: महाराज अब आज्ञा हो गई, इस पांव के टुकड़े बनाता हूँ, समझ जा इस समहेरे नीच, मैं तेरे पास आता हूँ।
0: और शक्ति का प्रदर्शन करो, आओ। ये क्या हुआ, क्या हुआ ये?
2: रही हो मेरे तन मन में यदि स्वामी की सद्भक्ति, तो आ जाए मेरे इस पांव में संसार भर की शक्ति। शपथ रघुनाथ की तुमको, ऐ पृथ्वी धारने वाले, उठा पाए न मेरा पग ये जितने शक्ति बल वाले।
0: ये क्या सुख, नहीं उठा सका ये पग। महाबली महोदर, तुम उठो, उठो, उठो।
3: अरे वानर, उठाया पांव जब मैंने, पांव इसका उठाने को न पाएगा जगह कहीं भी, अपना मुंह छिपाने को। उठा कर फेंक दूंगा इसको समुंदर में खिलौनों सा।
0: लगा शक्ति,
3: संभल जा अब मैं, ये आता हूँ तेरा बल आजमाने को।
0: ये क्या देख रहा हूँ मैं,
2: और कोई है?
0: क्या देख रहा हूँ मैं बेटा मेघनाथ?
1: आज क्या करें पिताश्री,
0: मेरी इच्छा है अब ये तू उठे और इसको दे मारे।

0: तरफ।
1: लंकेश खड़ा है सामने अंगद, नाम अपना मिटा ले तू, रहा हो और कोई तो उसे भी बुला ले तू, क्या हुआ लंकेश?
2: अधम, अभी तेरे सामने लंकेश खड़ा है, मैं बताता हूँ तुझे किस तरह हटता है ये पांव यहाँ से।
1: नहीं नहीं रावण, हट दूत के पांव न पड़, क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, इससे क्यों लजाता है, क्यों मेरे पैर पड़ता है, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ, मैं तो सेवक हूँ, दूत हूँ, कैसे रक्षा कर सकता हूँ।
2: चला जा चला जा चला जा, भाग जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, मैं अब तलवार चलाऊंगा यदि तू जीभ चलाएगा। जा जा जा, तपसी बच्चों से कह दे तैयार हूं मैं लड़ने के लिए, वे उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आए हैं यहां मरने के लिए।
1: महाराज क्रोधित ना हो, मैं रामादल को जाता हूं, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ, यदि रघुराय से मेल हुआ तो जीते जी तरोगे तुम महाराज, नहीं तो धरा पर ही अकाल मृत्यु मरोगे तुम, इसीलिए छोड़कर राज लोग आनंद धाम में आ जा रावण, यदि सच्चा आनंद चाहता है तो रामादल में आ जा रावण, जान ले करुणा प्रभु की तो तुझको संतोष होगा, अन्यथा हमारी तरफ से युद्ध का उद्घोष होगा।
2: क्या कहा क्या कहा, युद्ध का उद्घोष?
1: हाँ हाँ, युद्ध का उद्घोष, युद्ध का उद्घोष, युद्ध का उद्घोष, युद्ध का उद्घोष,
2: युद्ध का उद्घोष, लंकेश से युद्ध, लंकेश से युद्ध, मृत्यु को दे रहे हैं दावत।
3: अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्वास शर्मा द्वारा लिखा नाटक राजदूत। प्रतिभागी कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है: रावण संतोष जोशी, अंगद तपन मुखर्जी, मंदोदरी संगीता परमार, राजभट्ट दिलीप लोकरे, मेघनाद आदिल कुरैशी, सुख और महोदर संजीव मालवीय, गुप्तचर क्षितिज प्रांजल, प्रहस्त मनीन्द्र दुबे, प्रतिहारी संस्कृति पुरे। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे संजीव मालवीय।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवा रहे हैं ब्रजमोहन बामरेले का वायलिन पर बजाया राग पूरिया कल्याण। तबले पर आपके साथ हैं संजय राठौर।

शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे ब्रजमोहन बामरेले का वायलिन पर बजाया राग पूरिया कल्याण। तबले पर आपके साथ थे संजय राठौर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में बच्चों में होने वाली बीमारियां और बचाव। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अजय दोषी शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर 2710223 और 2710224 इंदौर का STD कोड है 0731। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Union Cabinet today approved five projects worth over 13,000 crore rupees, including four railway and one highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has cleared four multi-tracking projects of railway covering eight districts across four states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन. और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का. टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए.
2: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the fourth edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gore today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. India's young sensation Ayush Shetty has expressed happiness after securing a second round victory in the men's singles event at the BWF Badminton World Championships in New Delhi. Talking to media, Shetty said it was a comfortable victory and he is happy to move forward in the tournament. The 21-year-old shuttler is the only Indian remaining in the men's singles draw. India's Unnati Huda today described her match against Canada's Michelle Lee as a good contest and praised her opponent for playing really well. Talking to media, the Indian prodigy said she was happy with the way she played but felt unfortunate that she could not convert her performance into a win. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his two-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia, Karin Brutyon, and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia, Edward Azrian. The Defence Ministry said that the discussions covered the entire gamut of ongoing defence and military technical cooperation, with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation and defence research and development. It added that the two sides also exchanged the terms of reference for institutionalizing joint services staff talks between the Indian and Armenian armed forces. In hockey, India registered a comprehensive 5-3 victory over arch-rivals Pakistan in the final Pool D encounter of Men's FIH World Cup at Amstelveen in the Netherlands today to qualify for the second round. The defeat ended Pakistan's campaign in the group stage. India registered a commanding 165-run victory over host Sri Lanka in the first test in Galle today to take a 1-0 lead in the two-match series. Sri Lanka, chasing a target of 372 runs for victory, were bowled out for 206 during the post-lunch session on the fifth and final day. Indian left-arm spinner Manav Sutar was the architect of India's victory, taking 6 wickets in the second innings to finish with a maiden 10-wicket match haul in only his second test. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर प्रातःकालीन सभा में इसी मीटर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।